0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
1: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 14 अगस्त 2026 सुबह के 5:53 और 32 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है और आइए अब हम आपको बता दें आज एफएम रेनबो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही पलों में यानी सुबह 6:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात, जिसमें आपके साथ रहेंगी नुपुर कुलश्रेष्ठ। सुबह 7:02 पर कंचन कनन आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, जिसमें आप दिल्ली जगत की कुछ जानकारियां सुन सकते हैं और साथ ही साथ गीतों का आनंद ले सकते हैं। सुबह 8:02 पर नुपुर कुलश्रेष्ठ आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। सुबह 9:02 पर कंचन कनन आपके लिए लेकर आएंगी कार्यक्रम दिल के तराने, गाने नए पुराने, जिसमें आप नॉन स्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं, साथ ही साथ कुछ पुराने क्लासिक गीतों का भी मजा ले सकते हैं। सुबह 10:02 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी कार्यक्रम अदिति बिष्ट के साथ, जिसका नाम है वेस्टर्न म्यूजिक मैचलेस म्यूजिक आवर। सुबह 11:02 पर रंजन अरनेजा आपके लिए लेकर आएंगे बॉलीवुड जगत का कार्यक्रम बॉलीवुड ट्रेल्स, जिसमें आप बॉलीवुड की न्यूज सुन सकते हैं, साथ ही साथ गीतों का भी आनंद ले सकते हैं और आज आपको पेट्रियोटिक गाने भी सुनवाए जाएंगे। दोपहर 12:02 पर अदिति बिष्ट आपके लिए लेकर आएंगे अंग्रेजी कार्यक्रम वेस्टर्न म्यूजिक, जिसका नाम है प्ले इट कूल। 1:02 पर दोपहर को आप रंजन अरनेजा के साथ सुनेंगे मेरा वाला सॉन्ग, ये रिक्वेस्ट बेस्ड कार्यक्रम है, इसमें आप अपनी पसंद के गीत सुन सकते हैं। दोपहर 2:02 पर प्रियंका मामगिन आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम आशियाना। दोपहर 3:00 रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम आप सुनेंगे, ये लाइव फोन इन कार्यक्रम होता है, जिसमें आज का विषय रहेगा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स और होम्योपैथी, जिसमें एक्सपर्ट होंगे डॉक्टर चित्रा वासु। शाम 4:02 पर प्रियंका मामगिन आपके लिए लेकर आएंगी अल्फा जैन कार्यक्रम। शाम 5:02 पर सिटी लाइट्स आपके लिए लेकर आएंगे निखिल वर्मा, जिसमें दिल्ली जगत की शहर की आप जानकारी सुन सकते हैं। शाम 6:02 पर सुनीता शताब्दी आपके लिए लेकर आएंगी कार्यक्रम मैसेज मसाला मिक्स। शाम 7:07 सुनीता शताब्दी आपके लिए लेकर आएंगी कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश। रात्रि 8:02 पर म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम आप सुनेंगे सुनीता शताब्दी के साथ। रात्रि 9:02 पर आप सुनेंगे रेखा चौधरी के साथ कार्यक्रम आपकी याद आती रही। रात्रि 10:02 पर लिपिका दास आपके लिए लेकर आएंगे वेस्टर्न म्यूजिक कार्यक्रम और रात्रि 11:02 का समय रहेगा गजलों का कार्यक्रम, जिसका नाम है रंगे महफिल। आज इसमें आपके साथ रहेंगी रेखा चौधरी और इस कार्यक्रम में आप गजलों का आनंद ले सकते हैं। ये थे एफएम रेनबो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो पर सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। संसद का मॉनसून सत्र कल संपन्न हुआ। 12 विधेयक पारित हुए। सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी हुई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव नयांती के बीच कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता हुई। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा हाट हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की संभावना। नेपाल के रोल्पा जिले में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में करीब 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग लापता हैं। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। ये थे आकाशवाणी रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का इस सफर में। मैं हूं आपके साथ नुपुर कुलश्रेष्ठ और बिल्कुल नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला। और आप उठ जाइए क्योंकि सुबह का ये जो वक्त है बहुत ही खूबसूरत है और नैनो की बातें और बहुत सारी बातें हम आपसे बिल्कुल इस सफर में करते रहेंगे। लेकिन आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ सुप्रभात के इस सफर में। अभी आप सुनेंगे आकाशवाणी रेनबो पर स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सत्य वचन। और सुप्रभात में जल्द आपसे जुड़ी रहूंगी मैं। जुड़ रही है आप हमारे साथ इसी सफर में।
1: दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय SR मीडिया Academy।
2: जी हाँ, अपने वादे के अनुसार फिर हाजिर है आपका दोस्त SR यानी संतोष राव आकाशवाणी FM रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन। करिए स्वीकार हमारी नमस्ते सलाम और प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि अपनी जन्मभूमि और वो देश जहां तुम रहते हो उस देश के प्रति हमेशा वफादार बने रहना और अपने सारे कर्तव्यों का निर्वाह संपूर्ण मन से किया करना, तभी परमेश्वर की आशीष तुम पर और तुम्हारे खानदान पर सदा सदा बनी रहेगी।

अपने पिता परमेश्वर से अमन, चैन और खुशहाली के लिए दुआएं मांगते हैं, तो हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, वो प्रार्थनाओं को सुनकर नफरत और द्वेष से भरे दिलों को प्यार और मोहब्बत से भर देता है। इसीलिए दोस्तों, हम प्रभु के लोगों को प्रतिदिन अपने देश और देश के राजनेताओं, अधिकारियों और सभी देशवासियों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए।

जी हाँ, आकाशवाणी FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन मेरे यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि जो व्यक्ति अपने परिवार और अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है, उस पर प्रभु की विशेष कृपा बनी रहती है, समाज में उसका मान सम्मान भी बना रहता है।

दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें मैसेज करके जरूर बताएं। मैसेज भेजने के लिए हमारा नंबर है 9693644242। जी हाँ, 9693644242। और हमारा दूसरा नंबर है 7678438471। जी हाँ, 7678438471। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब अगले हफ्ते यानी गुरुवार सुबह 6:05 पर हम फिर हाजिर होंगे एक नए सत्य वचन के साथ आकाशवाणी FM रेनबो पर। तो इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो और सुप्रभात। सफर की शुरुआत हो चुकी है, नुपुर आपके साथ है और ये साथ बिल्कुल आपके साथ बना तो हुआ है 7 बजे तक, और उसके बाद भी एक और बार फिर से मुलाकात होगी और ये जो मुलाकातों का सिलसिला है ना, वो यूं ही जारी रहेगा। आज मिले हैं, फिर दोबारा मिलेंगे और इस तरह आपसे हम यूं ही मिलते रहेंगे, और मिलते रहना और ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ते रहना ज़रूरी है। रुक जाते हैं कई बार कदम, लेकिन फिर थोड़ा सा सोच विचार करके ठीक है, लग रहा है वक्त किसी बात पर आप अटक गए हैं, जैसे मैं अटक गई हूँ, तो कितनी देर तक अटके रहना है, निकलना है। लीजिए अपना वक्त और बाहर निकलिए उस विचार से जो आपको परेशान करते हैं, उन बातों से जो आपको घेरे हुए हैं। बस एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत होती है और फिर सब कुछ अच्छा, सुंदर और बहुत सुंदर हो जाता है। आप भी ना इस सफ़र में यूं ही मुस्कुराते हुए, गाते हुए, प्रकृति के करीब रहते हुए और उसके बेहद नज़ारे देखते हुए, खूबसूरत नज़ारे देखते हुए, खुद से थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारा प्रेम दिखाते हुए बस आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि खुद से प्रेम करने का आपको सबसे अधिक अधिकार है, जिसको आप भूल चुके हैं। और ज़रूरी है कि आप खुद को प्रेम का हकदार मानें।

कुछ फुर्सत के पल निकालिए, कभी खुद से भी मिला कीजिए। और खुद से मिले हुए, खुद से बातें किए हुए कितना वक्त हो गया, और कैसी बातें आप खुद से करते हैं ये भी तो मायने रखता है, क्योंकि आपका हर विचार सच के बेहद करीब है। तो किस तरह के विचार आप रखते हैं, क्या सोच पूरे दिन आपकी चलती रहती है, ये काफ़ी मायने रखता है। तो फिर सोच समझ कर सोचिएगा कि आप क्या सोच रहे हैं, और जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही हो रहा है। तो इसलिए चाहते हैं कि कुछ बेहतर हो, तो कर्म के साथ साथ सोच को भी बेहतर बनाएं, सही बनाएं, और फिर जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं उस दिशा में कदम रखते हुए

आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि ज़िंदगी का ये जो सफ़र है ना, वो बहुत खूबसूरत है। इसे खूबसूरत ही बना कर चलें। बहुत सारे विचार हैं, बातें हैं जो यहाँ वहाँ की बहुत परेशान करती हैं, और कई बार उन बातों के चक्कर में आप चले जाते हैं एक अलग ही गिल्ट में, है ना। और वो जो सैड वाले सारे विचार आपको आने लग जाते हैं, लेकिन आप जानते हैं ये जो गिल्ट है, ये जो खेद है कि हाँ ऐसा हो गया, आप हमेशा सॉरी फील कर रहे हो, सबके लिए ब्लेम कर रहे हैं किसी भी बात के लिए अपने आप को, और कुछ ऐसे विचार हैं जो आपको आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे हैं ना, तो उन विचारों को ज़रा जीवन से हटा दीजिए। क्योंकि ये जो गिल्ट है, ये जो सैड थॉट्स हैं, ये हमारे जीवन से बहुत कुछ ले जाते हैं, नहीं पता चलता, और जब चला जाता है तब फिर संभाले नहीं संभलता। तो ये वो ऊर्जाएं हैं जो जीवन में कष्ट बढ़ाती हैं। इसलिए कहाँ ऊर्जा लगानी है, किस चीज़ में ऊर्जा देनी है, ये तय आपको करना है। अभी भी वक्त है खुद को संभालने का, संभाल लीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ सुप्रभात के इस सफर में। जरा बाहर निकलिए, देखिए इन पेड़ पौधों को, देखिए इन पक्षियों को, इनकी चहचहाहट को जरा सुनिए, आनंद देते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। आप जुड़े हैं हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के सफर में। मैं हूं आपके साथ नुपुर कुलश्रेष्ठ।

आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, ऐसे खुद के लिए कब ऐसा फील किया था? छोटे छोटे जो काम करते हैं ना आप, और उसके बाद सोचते हैं कि मंजिल तक पहुंचेंगे तभी खुलकर जिएंगे, मुस्कुराएंगे, गुनगुनाएंगे, नहीं, जो छोटी छोटी जो हासिल होती है ना चीज़ें, उनके लिए भी खुद को शाबाशी देना ज़रूरी है, ये मत भूल जाए कीजिए, तभी आगे जो बढ़ते कदम हैं उनको उत्साह मिलेगा। तो ये ज़रूरी है कि आगे बढ़ते हुए यूं ही गाते मुस्कुराते हुए ऐसे फील करते हुए आगे बढ़ना है। और बहुत कुछ कहे जाते हैं जो गाने के बोल हैं हमसे, है ना, कि यूं ही बिन बात के झलके जाए हंसी, बिन बात के भी हंस लिया कीजिए, यूं ही बेवजह, हर बार ज़रूरी है कोई वजह ढूंढना मुस्कुराने के लिए, खुश रहने के लिए। आप है, ये नई सुबह है, इसका स्वागत आप कर रहे हैं, और ये जो सांसें हैं आप ले रहे हैं, और जीवन में जो ज़रूरी है वो आप तक पहुंच रहा है, उसके लिए धन्यवाद देते हुए मुस्कुराते हुए आगे तो बढ़ सकते हैं, यूं ही बेवजह ज़रूरी है।

और किस बात का डर है आपको? कहते हैं ना कि अपने दिमाग पर नियंत्रण ना रख पाने का जो दूसरा नाम है वो डर है। कोई तो ऐसी बात होती है कि आप कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, कुछ हुआ हो गया, लेकिन उसके साथ एक डर है कि आगे क्या होगा, कैसे कर पाएंगे, ये नहीं है, ये दोस्त नहीं है, इससे बात नहीं हो रही। तो ये जो सारे डर है ना, इनको निकाल दीजिए, इनका आपके अंदर आपके साथ जुड़े रहने का कोई भी काम नहीं है। सिर्फ काम है आपका कि आप मुस्कुराएं, खुद से प्रेम करें और खुद को अपने प्रेम का हकदार मानें। ये बहुत ज़रूरी है, और ज़रूरी है खुद से प्रेम करना। अपने साथ जो किए हैं ना वादे, उनको भी तो थोड़ा सा निभा लीजिए। कितने सारे वादे हम सबसे करते हैं, लेकिन खुद का ख्याल रखने का जो वादा है उसका क्या? ये जो आपके अंदर है, ये प्यारे से आप है ना, जिसे चेहरा जब आप देखते हैं तो दिखता है ना, और फिर

बहुत कुछ दिखता है जब आईने में चेहरा देखते हैं, फिर याद आता है ये क्या कर लिया है अपने साथ, है ना? कैसे लग रहे हैं आप, है ना? और फिर बहुत सारे प्रॉमिसेस भी करते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं ज़्यादा नहीं सोचूंगा या सोचूंगी, किसी बात का कोई डर है ही नहीं, डर के थोड़ी ना जीवन जिया जाता है ना? जीवन तो साहस के साथ, चुनौतियों का सामना करते हुए, प्यारी सी मुस्कान के साथ आगे बढ़ते हुए जिया जाता है। और कभी भी थोड़ा सा डाउन भी फील कर रहे हैं तो दोस्तों की मदद ले सकते हैं, आपके आसपास कितने सारे लोग हैं, आपका परिवार है, उन सब की मदद आप ले सकते हैं। लेकिन निराश नहीं होना, परेशान नहीं होना, हताश नहीं होना है। जिंदगी के सफर में खुद से प्यार करते हुए, मुस्कुराते हुए बस यूं ही आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि है एक ऐसी शक्ति जो हम सबको समझ देती है, चलाती है। उस पर विश्वास रखिए, खुद पर विश्वास रखिए, और खुद पर विश्वास करने से ही आप सब कुछ जीत जाते हैं। जरा खुद से बात तो कीजिए, बात करना शुरू करिए, फिर देखिए किस तरीके से आप खुद से मोहब्बत करते हैं।

झील मिलाती जुगनू की बारा। सबके होठों पे ठहरी थी आके कोई बात, ढोल मंजीरे बजने लगे, बड़ी डफली पर था।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

जी हाँ, ये है आकाशवाणी रेनबो और आकाशवाणी रेनबो का ये सफर तो जारी रहेगा ही, लेकिन सुप्रभात में बस इतना ही। आपसे मैं कुछ ही देर में जुड़ूंगी और ज़रूर आपको बताऊंगी गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के दूसरे सेगमेंट में कि क्या क्या है खास आपके शहर में। लेकिन उससे पहले आपके साथ जुड़ेंगी कंचन कानन, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर सुनेंगे आप उनके साथ, जो कि उसका पहला सेगमेंट है, और उसके बाद एक बार फिर आपसे जुड़ेंगे कंचन कानन दिल के तराने गाने नए पुराने इस कार्यक्रम के साथ। उसके बाद आप सुनेंगे मैचलेस म्यूजिकार, इसमें आपके साथ होंगी अदिति बिष्ट। और उसके बाद कौन सा प्रोग्राम है जो आप तक पहुंचेगा तो बिल्कुल आपको बता देते हैं, बॉलीवुड ट्रेल्स में आप जुड़ेंगे बॉलीवुड की खबरों के साथ, आपके साथ जुड़ेंगे रंजन अरनेजा। और उसके बाद समय है प्लेट कूल का, जिसमें भी आपके साथ शामिल होंगी अदिति। उसके बाद समय है

बजे तक, और उसके बाद सुनीता शाहबादी आपके साथ जुड़ेंगी एक दूसरे कार्यक्रम में। और जो कार्यक्रम है वो है मैसेज मसाला मिक्स। आप किसी विषय पर जुड़ते हैं उनके साथ और अपने मैसेज के जरिए अपनी बात उन तक पहुंचाते हैं। उसके बाद आप सुनेंगे म्यूजिक मस्ती। सुनीता शाहबादी ही बनी रहेंगे आपके साथ इस कार्यक्रम में। आपकी याद आती रही, मैं आपके साथ रहेंगी रेखा चौधरी। 9 बजे से लेकर 10 बजे तक ये कार्यक्रम आप सुनेंगे। विगेंटर में आपके साथ होंगी लिपिका दास, और उसके बाद रंगे महफिल में भी एक बार आपके साथ फिर जुड़ेंगी रेखा चौधरी। तो बिल्कुल आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए सफर में। आकाशवाणी रेनबो का ये सफर है, और आप बिल्कुल खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। साहस और हिम्मत के बारे में सोचेंगे तो ये आपकी ओर खींचे चले आएंगे, क्योंकि जिस बारे में भी आप विचार करते हैं वैसी ही चीजें रूप लेती हैं। तो साहस हिम्मत अगर आप हार रहे हैं तो इनको हासिल कर सकते हैं, बस खींच लीजिए इनको चुंबक की तरह। जुड़े रहिए हमारे साथ इसी सफर में, जैसे चुंबक की तरह आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं लेकिन साथ तो होता ही है। मैं नूपुर कुलश्रेष्ठ आपसे कुछ ही देर में जुड़ती हूँ। नमस्कार।

नमस्कार, सुबह के 7 बज चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी की सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। संसद का मॉनसून सत्र कल संपन्न हुआ। 12 विधेयक पारित हुए। सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी हुई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री बेसो लोव न्यांती के बीच कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता हुई। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मनोहर नायडू ने विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा हाट हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 6 लोगों की मौत हो गई और 14 घायल हुए। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की संभावना। नेपाल के रोल्पा जिले में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में करीब 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग लापता हैं। और अंत में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, हर सुबह एक सकारात्मक सोच के साथ, ताकि हर दिन पिछले दिन से बेहतर हो। इस प्यारी सी सुबह में हमारा आपका साथ आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर दिल से दिल तक। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपके साथ कंचन। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे अपने पूरे परिवार के साथ, और दिल से जुड़े होंगे एफएम रेनबो के साथ, दिल से दिल तक।

नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू

दोस्तों आज है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। देश के इतिहास में आज की तारीख आंसुओं से लिखी जाएगी। ये वही दिन था जब देश का विभाजन हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया। कहने को आज के दिन देश का विभाजन हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिलों का, परिवारों का, रिश्तों और भावनाओं का बंटवारा था। भारत माता के सीने पर बंटवारे का ये जख्म सदियों तक दर्द रहेगा और ये दर्द रिश्ता रहेगा। विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को FM रेनबो पर हम श्रद्धांजलि देते हैं।

दोस्तों, कोई भी जो दिन होता है ना, वो इतिहास में दर्ज कई घटनाओं को समेटे हुए होता है। और आज है 14 अगस्त और आज के दिन की अगर बात करें तो आज के दिन इंग्लैंड में पहली बार 1908 में सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था और 14 अगस्त 1917 को चीन ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा भी की थी। 1924 में आज के दिन प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक कुलदीप नैयर जी का जन्म हुआ था और बीबीसी की पहली फीचर फिल्म 1938 में स्टूडेंट ऑफ प्राग टीवी पर प्रसारित हुई थी और 1971 में आज के ही दिन यानी 14 अगस्त को बहरीन को 110 सालों के बाद ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
3: वंदे मातरम। प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम वन की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
4: NCR EPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
5: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
6: हिमालय की गोद से लेकर
7: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
6: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
7: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
6: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
7: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
6: तो सुनना ना भूलें
7: रेनबो डेस्टिनेशंस
6: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

आकाशवाणी का एफएम रेनबो आपका साथी, आपका हमसफर जो हरदम आपके साथ रहता है। और प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में, आपके साथ कंचन हूँ। दोस्तों, एक बहुत ही छोटी सी बच्ची, नन्ही सी बच्ची जो टीवी पर रियलिटी शो के जरिए घर घर की चहेती बन गई थी और जिनकी गायकी को लता जी और संगीत जगत के दिग्गज कलाकारों ने सराहा था और वो बन गई एक बेहतरीन प्लेबैक सिंगर। अपनी बेहतरीन गायकी की वजह से प्लेबैक सिंगिंग में वो खास मुकाम पर पहुंच गई हैं। जी, हम बात कर रहे हैं सुनिधि चौहान की, जो किसी परिचय की मोहताज बिल्कुल नहीं है। और हम सबकी चहेती सुनिधि चौहान का आज है हैप्पी वाला बर्थडे, यानी कि जन्मदिन है। तो एफएम रेनबो पर हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। हैप्पी बर्थडे सुनिधि चौहान, एक बहुत ही प्यारा सा गीत।

आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर आज हम ऐसे लोगों को याद कर रहे हैं जो आज के ही दिन दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। भारत के पहले कुश्ती खिलाड़ी खाशाबा जाधव, जिन्होंने हेलसिंकी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, आज के ही दिन 1984 में उनका निधन हो गया था। साथ ही देश के 10वें चीफ जस्टिस कैलाश नाथ वांचू की आज पुण्यतिथि है, जिन्होंने 1988 में दुनिया को अलविदा कहा। प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंधकार, समीक्षक, अनुवादक अमृत राय का 1996 में देहांत हो गया था। और साथ ही देश के सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाजों में से एक हवा सिंह जी का भी आज के ही दिन सन 2000 में निधन हो गया था। आज इन सभी विभूतियों को एफएम रेनबो पर हम याद कर रहे हैं। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: बिल्कुल, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR और मैं आपके साथ कंचन। दोस्तों, अपने अलग अंदाज और एनर्जेटिक डांस के जरिए सबके दिलों पर राज करते थे शम्मी कपूर। और आज पुण्यतिथि है शम्मी कपूर की, पृथ्वीराज कपूर के बेटे शम्मी कपूर। उनका मूल नाम शमशेर राज था। एक बहुत बड़े फिल्मी परिवार में उनका जन्म हुआ था और मुंबई में जन्म हुआ। फिल्म जीवन ज्योति से फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। उसके बाद तुमसा नहीं देखा, जंगली, कश्मीर की कली, तीसरी मंजिल, प्रोफेसर ब्रह्मचारी, विधाता जैसी फिल्मों के जरिए दिलों पर राज करते थे शम्मी कपूर। आज FM रेनबो पर हम याद कर रहे हैं शम्मी कपूर को।

जमी थम जाए, आसमान थम जाए, लेकिन दिल्ली की लाइफलाइन जो दिल्ली मेट्रो है ना, वो कभी नहीं थमती। 15 अगस्त यानी कल हम सभी आज़ादी का पर्व मना रहे हैं और कल दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की सभी लाइंस के टर्मिनल स्टेशन से मेट्रो सेवाएं जो है ना, वो सुबह 4 बजे से ही शुरू हो जाएंगी। सुबह 4 बजे से 6 बजे तक हर आधे आधे घंटे के अंतराल पर ट्रेन्स चलेंगी और 6 बजे के बाद मेट्रो सेवाएं सामान्य समय से चलेंगी और 14 अगस्त यानी आज सुबह 6 बजे से 15 अगस्त तक दोपहर 2 बजे तक सभी मेट्रो स्टेशंस पर पार्किंग की सुविधा जो है वो बंद रहेगी। सुरक्षा कारणों से बहुत गहन सुरक्षा जांच होगी, इसलिए समय लेकर घर से निकलें, तभी आप समय पर आज़ादी के पर्व में हिस्सा लेने के लिए पहुंच सकते हैं। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR और मैं कंचन।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

हमारे हृदय के भाव जुड़ें प्रभु से और हम सब करें आराधन। आपके लिए आकाशवाणी ला रहा है आराधना चैनल। शीघ्र ही होगा डिजिटल प्लेटफॉर्म और आकाशवाणी ऐप पर आराधना चैनल।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR खर्च है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपको बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

आकाशवाणी का एफएम रेनबो आपके साथ है और प्रोग्राम क्या चल रहा है, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। अब देखिए, कई बार क्या होता है ना कि झमाझम बारिश तो हो रही है लेकिन उमस बहुत अधिक है और ऐसे में थोड़ी सी घबराहट होती है, परेशानी होती है, काम करते करते पसीने से तर पत्तर हो जाना बहुत ही आम सी बात है। तो ऐसे में क्या करें, सेहत का बहुत अधिक ध्यान रखें, अपने बुजुर्गों का, अपने बच्चों का, तरल पदार्थ लेते रहें, फल और सब्जियों का सेवन करें ताकि आपको बिल्कुल सुकून मिल सके। और एफएम रेनबो तो आपके साथ है ना, तो दिल से जुड़े रहिए एफएम रेनबो के साथ, दिल से दिल तक। मैं आपके साथ कंचन हूँ और प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। मैं कंचन यहीं पर लेती हूँ विदा, जुड़े रहिए एफएम रेनबो के साथ, दिल से दिल तक। और इसके बाद मेरे बाद नुपुर आएंगी प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर लेकर। दीजिए विदा मुझे, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो पर सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन

के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। संसद का मॉनसून सत्र कल संपन्न हुआ, 12 विधेयक पारित हुए। सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी हुई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव नयाती के बीच कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता हुई। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा हाट हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 6 लोगों की मौत हो गई और 14 लोग घायल हुए। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की संभावना। नेपाल के रोल्पा जिले में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में करीब 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग लापता हैं। पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कैनेडियन ओपन टेनिस में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। स्वियाटेक ने 6-2, 6-3 की जीत के साथ इस सीजन का अपना पहला खिताब जीता और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। ये थे आकाशवाणी रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आह बेलिसिमो,
2: Boops up.

तेकुड़ी जानी पहचानी है और शहर भी कहाँ अनजाने रह जाते हैं जब हम और आप मिलते हैं आकाशवाणी रेनबो के इस सफर में। तो जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? फिट एंड फाइन, हेल्थी एंड स्मार्ट। और जरूरी है रहना आपका स्मार्ट, क्योंकि आप ही तो हैं हमारे स्टार्स और हमारे ये स्टार्स फिट एंड फाइन, हेल्थी एंड स्मार्ट रहें, बस यही दुआ रहती है। इसी दुआ के साथ मैं नूपुर कुलश्रेष्ठ स्वागत कर रही हूँ आप सभी का प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में। तो गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के सफर में आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जुड़े रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करनी है। और ये जो रंग है ना केसरिया, ये शांति के जो रंग है, ये हरा रंग, ये सफ़ेद रंग और ये रंग बहुत कुछ कहते हैं। ये ताकत है हमारे देश की, देश की ताकत, शांति, विकास और बलिदान का एक गहरा संदेश देते हैं ये जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। और केसरिया रंग साहस और बलिदान का, सफ़ेद रंग सत्य और शांति का, और हरा रंग समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है। और हर घर तिरंगा जो स्वतंत्रता दिवस, ये जो अभियान, इस अवसर पर हमारा ये जो आज़ादी का जश्न है, इस

पर हम मना रहे हैं, तो हर घर तिरंगा जो हमें याद दिलाता है कि देश के लिए जान देने वाले वीरों की, और ये राष्ट्रीय त्यौहार हमें हर पल याद दिलाता है कि किस तरीके से उन्होंने बलिदान दिया तो हमें ये स्वतंत्रता आज़ादी मिली। देश की आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले सभी वीर जवानों को हम शत शत नमन करते हैं, और साथ ही हर घर तिरंगा ये जो अभियान है इसकी शुरुआत हुई है, और अगर आप भी इसे अभियान में जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़िए, और बच्चों के अंदर, हर किसी के अंदर इस भावना को जागृत कीजिए। अपने देश के प्रति लगाव, सम्मान, प्रेम और साथ ही साथ अपने देश की रक्षा की भी, बिल्कुल उनके अंदर ये भाव लाइए कि देश के लिए अगर आपको खड़ा होना पड़े तो बिल्कुल आप पीछे नहीं हटेंगे। ये देशभक्ति का जो जज्बा है वो हम सब के अंदर रहना चाहिए। तो आप भी अपने घर पर तिरंगा ज़रूर लहराएं, फहराएं, और बहुत ध्यान रखें कि कुछ नियम हैं कि जो तिरंगा है वो फटा नहीं होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। तिरंगे को ऊंचाई पर ही फहराएं, तिरंगा ज़मीन से बिल्कुल भी टच ना हो, और तिरंगा जब आप फहराएं तो रोशनी अवश्य होनी चाहिए, अशोक चक्र चिन्ह दिखाई देना चाहिए, और केसरिया सफ़ेद और फिर हरा रंग होना चाहिए, इस बात का ख़ास ध्यान रखें। और अगर आप भी इस अभियान में अगर भाग लेना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट हरघरतिरंगा.com पर विजिट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं सेल्फी, और इस अभियान में आप शामिल हो सकते हैं। लेकिन ज़रूर याद रखिएगा कि जो अभियान है वो बिल्कुल इस भावना को आपके अंदर रखना चाहता है कि देश के लिए आप हमेशा तैयार हैं। और जब भी देश की बात आती है तो छोटे छोटे जो नियम है ना, कानून है और जो व्यवस्था है, उसका सम्मान करके भी आप देश के प्रति अपने लगाव, सम्मान को दिखा सकते हैं। आप जुड़ रही हमारे साथ, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

जी हाँ, ये दिल है हिंदुस्तानी और आज़ादी का ये जो जश्न है, पर्व है, वो आप भी खूब धूमधाम से मनाइए। बिल्कुल। और ये जो जश्न है, ये जो पर्व है, इस पे मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, बिल्कुल आपको बता देते हैं। पहले आज की बात करते हैं, तो हल्की बारिश होने की संभावना है, आसमान में बादल छाए रहेंगे और दोपहर तक कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है और कुछ कुछ जगहों पर दोपहर के बाद भी हो सकती है, तो इसलिए आप पूरी तैयारी के साथ निकलेगा। और साथ ही साथ 15 अगस्त को भी दिल्ली में मौसम सुहावना रह सकता है, बादलों से घिरा भी रह सकता है। और मौसम विभाग के अनुसार अगर बात करें तो सुबह 4 से 6 बजे के बीच भी थोड़ी सी बारिश होने की संभावना है, 70% ये संभावना है। और इसके बाद 6 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच भी बारिश की जो संभावना है वो 60% तक बताई गई है। तो ऐसे में आप अपनी पूरी तैयारी के साथ निकले, जब भी किसी भी सफर पर निकले तो तैयारी के साथ निकलते हैं ना, तो सफर का आनंद आप ले पाते हैं अच्छे से। तो तैयार रहिएगा और बिल्कुल आज भी पूरा ख्याल रखिएगा, अगर कल आपको पहुंचना है, और बिल्कुल आप ज़रूर पहुंचे स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर और आनंद लें। और कैसे भी आप पहुंच सकते हैं और मेट्रो की क्या सुविधा रहेगी वो भी आपको बताएंगे। बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के इस सफ़र में। झमाझम बारिश आज भी हो सकती है, तो अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि हल्की हल्की बारिश में भी आपको याद तो आ जाते हैं वो पकौड़े, चाय, और पता नहीं कितने इस महीने में, बारिश के, सावन के इस महीने में आपने बारिश के इस बहाने से ही सही कितनी बार चाय और पकौड़ों का आनंद लिया है, और कुल्हड़ की वो चाय और अपने अपनों का साथ, और फिर जीवन में आनंद ही आनंद। तो जितने भी ये जो बातें होती है ना, बहाने होते हैं ना, इनको शामिल कर लिया कीजिए। प्यारी सी छोटी सी ये जिंदगी है, खुश होके जिए, बिंदास जिए, जो हो रहा है होता रहे, लेकिन आप जो करना चाहते हैं उसको ज़रूर करें, कल पे कुछ भी मत छोड़ें।

और आप भी शामिल होना चाहते हैं स्वतंत्रता दिवस के इस जश्न में, पर्व में, और लाल किला आप के समारोह में शामिल होने की सोच रहे हैं, तो आप अगर जाना चाहते हैं, आम जो लोग हैं, जनता है, उनको किसी भी तरह की समस्या ना हो, तो उसके लिए मेट्रो सेवा जो है वो सुबह 4 बजे से शुरू हो जाएगी। अगर आप मेट्रो से ट्रेवल करना चाहते हैं और वहाँ पहुँचना चाहते हैं तो आप सुबह 4 बजे इस मेट्रो सेवा को ले सकते हैं और 30 मिनट के अंतराल में जो मेट्रो है वो चलेगी। तो आप अपने समय के साथ, किस समय आपको पहुंचना है, क्या आपने प्लानिंग कर रखी है, उस हिसाब से निकल लीजिएगा। और उसके बाद जिस तरीके से मेट्रो सामान्य दिनों में चलती है वैसे ही चलेगी। तो किसी भी तरह की आपको कोई भी समस्या कभी ना हो, इसका बिल्कुल ध्यान रखती है हमारी ये जो दिल्ली मेट्रो है, और सुबह 4 बजे आपको ये सेवा मिल जाएगी। आप जुड़ रही हैं हमारे साथ, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

आई लव माई इंडिया. स्वतंत्रता दिवस का जश्न और ये आज़ादी हमें बहुत कुछ खोकर मिली है. जी हाँ, कल आज़ादी का उत्सव होगा, लेकिन आज उस रात को हम कैसे भूल सकते हैं. आज हम उस सबसे बड़ी कीमत को याद करते हैं जो एक सीमा रेखा खींचने के लिए चुकाई गई थी. स्वतंत्रता की पूर्व संध्या और देश के विभाजन की दर्दनाक सच्चाई, विभाजन की पीड़ा. आज है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस. ये केवल इतिहास का एक पीड़ादायक अध्याय नहीं है, बल्कि उन अनगिनत लोगों के संघर्ष, साहस, त्याग और धैर्य की स्मृति भी है जिन्होंने अपना घर, परिवार, संपत्ति और स्वजनों को खोने के बावजूद जीवन को फिर से संवारने का संकल्प लिया. आज इस दिन हम याद करते हैं उन सभी को जिन्होंने अपनी जान गंवाई और असहनीय पीड़ा झेलने का ये जो दुख है वो लिया विभाजन के दौरान. देश उन अनगिनत परिवारों को, उन परिवारों के लोगों को विनम्र श्रद्धांजलि देता है.

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
3: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
4: मम्मी, बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
5: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
4: अरे मम्मी, 1 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
5: हैं? इतनी जल्दी?
4: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर 7 के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
6: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुर होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
7: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
8: वंदे मातरम, प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम 1 की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा, हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
9: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
10: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।

जी हाँ, जिंदगी के इस सफर में चलते रहना चाहिए और तब तक चलते रहना चाहिए, कदम नहीं बिल्कुल डगमगाने चाहिए जब तक मंजिल आपको नहीं मिल जाती है। और मंजिल से अगर आप कुछ ही कदम दूर हैं और तो फिर अगर ये आपको अपनी मंजिल तक ले जाता है तो फिर आप यहाँ पर भी ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ, आपके पास एक मौका है, चलते चलते आप वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, आज नहीं, अभी इंतज़ार है और वक्त है आपके पास ताकि आप पूरी प्रिपरेशन कर सकें। तो ये जो वॉक इन इंटरव्यू है ये होंगे 8 और 9 सितंबर 2026। लेकिन किस बारे में बात कर रही हूँ, बिल्कुल आपको बता देती हूँ, रेलवे फूड और टूरिज्म कंपनी IRTC, जी हाँ IRCTC को टूरिज्म मॉनिटर की आवश्यकता है और 2 पदों के लिए जो है वो विज्ञापन जारी किया गया है। तो आप आधिकारिक जो वेबसाइट है, ऑफिशियल जो वेबसाइट है, आप वहां पर जा सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। www.irctc.com पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं और सारी जानकारी आपको बिल्कुल वहां मिल जाएगी। तो डेट मैंने आपको बता दी है कि वॉक इन इंटरव्यू है 8 और 9 सितंबर को, जी हाँ। तो आप ज़रूर जाइए, वेबसाइट चेक कीजिए और देखिए अगर आपके लिए ये जमता है कि नहीं। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए आकाशवाणी रेनबो के इसी सफर में। मैं हूँ आपके साथ नुपुर कुलश्रेष्ठ और साथ ही साथ और भी बहुत सारी बातें होंगी इसी सफर में, लेकिन ये गाना अभी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
3: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
4: हिमालय की गोद से लेकर
5: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
4: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
5: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
4: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
5: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
4: तो सुनना ना भूलें
5: रेनबो डेस्टिनेशंस
4: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
6: तो पार्टी शुरू हुई है।
7: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
8: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
7: म्यूजिक मस्ती।
9: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
7: म्यूजिक मस्ती।
10: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

जी हाँ, ये है आकाशवाणी रेनबो, और आकाशवाणी रेनबो पर कुछ ही देर में आप सुनेंगे दिल के तराने गाने, नए पुराने। कंचन कानन होंगे आपके साथ, और उसके बाद मैचलेस म्यूजिक आर में आपके साथ अदिति बिष्ट होंगे, और उसके बाद आप जुड़ेंगे रंजन अरनेजा आपके साथ होंगे। प्रोग्राम आप सुनेंगे बॉलीवुड ट्रेल्स, और इसी तरह कार्यक्रमों का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन मैं आपसे अभी इजाज़त लूंगी और आपको ज़रूर कहूंगी कि अपना भरपूर ख्याल रखें, पानी पीते रहें, कैसा भी मौसम हो हाइड्रेटेड रहें, और साथ ही साथ अपने पोस्चर का बहुत ख्याल रखें, और ज़्यादा देर तक ना बैठे रहें। 30 मिनट के बाद उठकर थोड़ा सा वॉक कर कर आएँ, और पानी का जो घूंट है वो लेते रहें, सिप सिप करके पीते रहें। और छोटी छोटी ये जो बातें आप याद रखेंगे ना, कि किस तरीके से बैठना है, पूरा 90 डिग्री वाला पोस्चर होना चाहिए, दोनों पैरों पर जो है सामान, जो वेट है, वजन आना चाहिए, तो इस तरीके से हम अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बना लेते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों के साथ अब मैं नूपुर कुलश्रेष्ठ आपसे लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।

नमस्कार, 9 बज चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली में अग्निशमन और कारागार विभाग में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20

0: प्रतिशत आरक्षण को उपराज्यपाल की मंजूरी, आयु सीमा में भी मिलेगी छूट। संसद का मॉनसून सत्र कल संपन्न हुआ, 12 विधेयक पारित हुए। सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों और नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी हुई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव न्यांती के बीच कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता हुई। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा हाट हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 6 लोगों की मौत हो गई और 14 लोग घायल हुए। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की संभावना। नेपाल के रोल्पा जिले में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में करीब 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग लापता हैं। पोलैंड की ईगा स्वियाटेक ने कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना को हराकर कनेडियन ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब जीता। और अंत में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आपने ट्यून कर लिया है आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल दिल से दिल तक प्रोग्राम दिल के तराने, गाने नए पुराने। इस प्रोग्राम के साथ मैं कंचन। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो मीठे मीठे गीतों का आनंद लीजिए एफएम रेनबो पर दिल से दिल तक।

0: सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
1: वंदे मातरम प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम 1 की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर
7: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
8: पता का चाय, गजब का स्वाद।

एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल के तराने, गाने नए पुराने। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि गीत पसंद आ रहे होंगे। 11:02 पर आप सुनेंगे रंजन के साथ प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स और 1:02 पर प्रोग्राम होगा मेरा वाला सॉन्ग, जिसमें आपकी पसंद के गीत शामिल किए जाएंगे। फिलहाल आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल के तराने, गाने नए पुराने।

जी जाने की बात तो होगी क्योंकि 10 बजे होगा प्रोग्राम मैचलेस म्यूजिक आवर और इस प्रोग्राम में आपके साथ रहेंगी अदिति।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मैचलेस म्यूजिक आवर ऑन 102.6 एफएम रेनबो। आई एम अदिति एंड टुमारो इज आवर 80th इंडिपेंडेंस डे। सो टुडे ऑन द ईव ऑफ अगस्त 15 वी आर गोइंग टू स्पेंड दिस आवर विद अ फ्यू स्टोरीज फ्रॉम अ टाइम व्हेन म्यूजिक, वर्ड्स एंड इवन द रेडियो इटसेल्फ played a very different role. We will talk about the kites in our skies and our beloved tricolour, and also about what was happening in Delhi on this very day in 1947. And yes, we've got plenty of music to get through. So let's begin with the song that says exactly what the title promises. Four Tops with Reach Out, I'll Be There.

0: it's hard to follow up after that song, which is why we would be slipping into a very short break here. But in case if you are in Delhi, out on the roads and facing any traffic, do let us know about that and help a fellow traveller. 9868107070. You could WhatsApp it to us on this number. Now we'll see you after a very short break.
1: Namaskar, main Delhi ki Mukhyamantri Rekha Gupta bol rahi hu. दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
4: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सरायकाले खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में।
3: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में। आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
4: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
5: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य

ये पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।

0: एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
3: वंदे मातरम। प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम 1 की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा, हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

FM स्टूडियो घड़ी में समय 11 बज चुके हैं सुबह के और लीजिए पेश हैं आकाशवाणी FM रेनबो मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर विभाजन में जान गंवाने वाले सभी लोगों और अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू होंगी। दिल्ली में अग्निशमन और कारागार विभाग में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को उपराज्यपाल की मंजूरी, आयु सीमा में भी मिलेगी छूट। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो NCB ने संयुक्त अरब अमीरात UAE से भगोड़े ड्रग सरगना वीरेंद्र सिंह बसोया की वापसी सुनिश्चित कर ली है। संसद का मानसून सत्र कल संपन्न हुआ। 12 विधेयक पारित हुए। सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों और नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज

दिल्ली में हथकरघा हाट हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपल कोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 6 लोगों की मौत हो गई और 14 लोग घायल हुए। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की संभावना। नेपाल के रोल्पा जिले में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में करीब 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग लापता हैं। पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना को हराकर कैनेडियन ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब जीता और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। तो ये थे आकाशवाणी पर मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी और कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम की, जिसका नाम है बॉलीवुड ट्रेल्स। और आज फ्राइडे मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ रंजन। आपके पसंदीदा सितारे क्या कर रहे हैं, कौन से नए प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी आम जिंदगी में क्या चल रहा है, दिस एंड लॉट्स मोर। बॉलीवुड सरताज का सवाल, और कैसे मिजाज हैं आज, ये भी बताएंगे आप। सुनते रहे आकाशवाणी का बॉलीवुड ट्रेल्स।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल, कार्यक्रम का नाम है बॉलीवुड ट्रेल्स। मैं हूं आपके साथ रंजन और हमें आप दिल्ली और आसपास सुन सकते हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा पूरे देश में ढेरों फ्रिक्वेंसीज पर हम हाजिर हैं और अगर फिर भी आपका मन नहीं भर रहा और किसी कारण से हम आपको रेडियो पे नहीं कहीं मिल पा रहे हैं तो हमारे मोबाइल ऐप के द्वारा आप हमें सुन सकते हैं। फिर बात देश की नहीं, फिर दुनिया भर में आप हमें सुन सकते हैं और बहुत ईजी है। न्यूज़ ऑन एयर ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, थोड़ा डेटा चार्ज लगता है लेकिन दैट इज द वे द लाइफ इज गोइंग दीज डेज, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना अगर आपको हमें अपने साथ पूरी दुनिया में कहीं भी ले जाना है। और जब देश और दुनिया की बात होती है तो आज खास तौर से 15 अगस्त की बात क्यों नहीं होगी। इतना प्यारा हमारा इंडिपेंडेंस डे हम मनाते हैं, कल हमारा इतना खास दिन है और ये जो 15 अगस्त की तैयारियां हैं ये काफी समय से पहले से चलने लगती हैं। कल तो खास 13 तारीख को बाकायदा कुछ ट्रैफिक के डाइवर्जन्स थे बिकॉज ऑफ द यू नो रिहर्सल्स एंड एवरीथिंग। लेकिन मैं आपको यहां ये कहना चाहता हूं कि हम 15 अगस्त के आसपास आके देशभक्ति का जो जज्बा है क्या उसमें कुछ प्रतिशत का उछाल आता है या 100% का उछाल आता है, और उसके 15 अगस्त बीत जाने के बाद क्या वो खुमार या वो जोश आप में कम हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो नहीं होना चाहिए। साल भर आपके दिल में वो उमंग, वो लौ, तिरंगे के प्रति सम्मान,
1: कंधों से मिलते
0: ये विश्वास की जो आजादी है ये आसानी से नहीं मिली है,
1: जब ऐसे
0: और जब मिली है तो इसका हम पूरा पूरा सम्मान करेंगे क्योंकि ये खुली फिजाएं हैं और इन्हीं खुली फिजाओं में घूमने फिरने का जो हमें
1: चलते हैं
0: राइट मिला है उसके साथ हमें मिली है कुछ ड्यूटीज, दिस एंड लॉट्स मोर। लेकिन फिलहाल ये प्यारा सकी
1: बढ़ते

0: जी हाँ, कंधों से मिलते हैं कंधे और कदमों से कदम मिलते हैं तो दिल दुश्मन के हिल जाते हैं। और बिल्कुल ये खौफ उनकी नजर आना चाहिए आंखों में, यही तो जरूरी है। और जहां केयर की बात होती है हमारी आर्म्ड फोर्सेस, वहां जहां कहीं पे जरूरत होती है विद केयर काम करते हैं अपने नागरिकों के लिए। और उसी तरह से हम अपने तिरंगे का सम्मान करते हैं, हमें ध्यान रखना है। अगर आपने घर पे ऑफिस में कहीं भी तिरंगे को फहराया हुआ है तो मोस्टली 15 अगस्त के आसपास लोग ज्यादा फहराते हैं। पहले ही कानून था कि सिर्फ कुछ एक जगह पे आप लगा सकते थे, घरों में अलाउड नहीं था, जो अब अलाउड है। लेकिन साथ ही साथ हमें ध्यान रखना है कि तिरंगा अगर किसी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, कुछ उस पर फट गया है कपड़ा, या तो आप उसे नहीं फहरा सकते, उसे आपने सम्मानपूर्वक उतारना है और सम्मानपूर्वक ही उसका, जिसे कहते हैं ग्राउंड में, आप उसे एक तरह से समाधि दे सकते हैं और नया तिरंगा वहां लगाइए। बाकायदा भी मैं बात ही कर रहा था, हमारे पहले जो आरजे थी वो तिरंगा लेने गई हैं अभी प्रोग्राम के बाद। तो सभी को मैं एक चाहूंगा कि 15 अगस्त की आपको एडवांस में मैं देना चाहता हूं शुभकामनाएं। एंड हमारे साथ बस यूं ही जुड़े रहें, थोड़ी देर में आपसे सवाल पूछेंगे कौन सा, मैं बताता हूं। जो बना सकता है आपको बॉलीवुड सरताज, आजकल अजय देवगन है न्यूज में, किस वजह से हैं बताएंगे, पर उससे पहले उन्हीं की फिल्म से आपको गाना सुना रहे हैं, ओमकारा फिल्म से।
1: धड़म धड़ यार सबसे बड़े लड़ैयार ओमकारा,
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल, प्रोग्राम का नाम बॉलीवुड ट्रेल्स।

जी हम तो बात करने जा रहे हैं अजय देवगन की, और आपको जैसे मैंने इशारा किया था, अजय देवगन आपको बड़ी बड़ी फिल्मों में दिखाई देते हैं, उनका अपना प्रोडक्शन हाउस है, खूब उन्होंने पैसे कमाए हैं फिल्म से, शोहरत दौलत, आज मेरे पास सब कुछ है, ऐसा वो कह सकते हैं, मतलब बच्चन स्टाइल बच्चन साहब के स्टाइल में ऐसा वो कहते नहीं है, लेकिन वो इसलिए खबरों में है कि अब वो फिल्मों के साथ साथ टेलीविजन पर आने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा ये प्रमोशन हो रहा है कि डिमोशन हो रहा है। बट क्राइम पेट्रोल करके कार्यक्रम बड़ा ही फेमस रहा है, अनूप सोनी उसे काफी लंबे समय तक होस्ट करते रहे, जो टेलीविजन के एक बड़े सितारे हैं, बालिका वधू सीरियल वगैरह में उन्होंने काफी ख्याति प्राप्त की थी, एंड ही वाज फिटिंग द बिल, यानी वो जो कर रहे थे अच्छा कर रहे थे, लेकिन अजय देवगन भी उससे एक हाथ आगे बढ़ के, दो कदम आगे बढ़ के और भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं सोच ये रहा हूं कि वाई AJ, why? I don't really... ठीक है, आप लोगों के घर तक पहुंच जाएंगे उनके ड्राइंग रूम्स तक उनके टेलीविजन के माध्यम से, बट देन यार कौन देखता है यार आजकल इस तरह, लोग मतलब देखते हैं, लोग मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ, लोग ऐसे क्राइम स्टोरीज देखते हैं? चलो भाई जो देखते हैं उनको मुबारक, और अजय इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब, बिकॉज मैंने उनका प्रोमो देखा है, हो सकता है कोई बड़ा मोटा ही अमाउंट मिला होगा, या दैट मीन्स टीवी में भी फिल्मों जितना पैसा है।

जी हाँ, खैर कुड़े अगर हम बात करें, हमारी दिल्ली की एक कुड़ी है, दिल्ली की लड़की है सुनिधि चौहान, जिनका आज जन्मदिन है. साथ ही है आई थिंक जॉनी लीवर साहब के. अभी आई मस्ट से कि ये मैं स्किप कर गया था आज सुनिधि का बर्थडे. आई एम सो सॉरी, मुझे समझ नहीं आया. मैंने अपना जब रिसर्च कर रहा था, मैं सितारों में ही खोया रहा, एक्टर्स एक्ट्रेसेस उनको ढूंढ रहा था. बट मोस्टली जहां मैं देखता हूं, जिस माध्यम से मैं देखता हूं, वहां पे सिंगर्स को भी वहां पे जरूर शामिल किया जाता है. और बट आप लोग जो हमारे इतने प्यारे प्यारे दोस्त हैं, राजकुमार संतानी, फॉर सम रीजन उन्होंने खुद ही मुझे मैसेज कर दिया, उनकी दोनों की फोटोज भेजी. एंड आई वाज लाइक, व्हाट्स हैपनिंग, क्यों भेज रहे हैं? तो उनका आज दोनों का ही बर्थडे है, तो दोनों को ढेर सारी मुबारकबाद. सुनिधि के लिए तो हम ये कहना चाहेंगे, आप जानते हैं 4 साल की छोटी सी नन्ही सी उम्र से इस नन्ही परी ने गाना शुरू किया और आज तक स्टेज पे कमाल धमाल मचा रही हैं. अब चाहे वो मतलब बेशुमार गाने हैं जो उन्होंने गाए हैं, जैसे कि ये ऐसे ही बैकग्राउंड में आपको इनके 2-3 फिल्मों के गाने जरूर सुनाऊंगा, साथ साथ आपसे बात भी करता रहूंगा. आपने ये गाना सुना होगा, महबूब मेरे, फिजा मूवी का, धूम मचा ले धूम 2004 में आई, 10 मूवी 2005 में आई, ओमकारा, अक्सर, 36 चाइना टाउन, आजा नचले, बेशुमार लंबी लिस्ट है, लव आजकल. दिल्ली में ये काफी समय रही, यहीं से इन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त की, पढ़ाई की और देन शी मूव टू बॉम्बे.

जी हम आपको बताना चाहते हैं कि सुनिधि ना सिर्फ एक प्लेबैक सिंगर हैं, बल्कि वो जो उनका जो नया अवतार है आजकल आप उन्हें देखते हैं स्टेज पे, शी इज मोर लाइक डीवा, मोर लाइक अ परफॉर्मर। जैसे पॉप आर्टिस्ट होते हैं विदेश में, कुछ वैसी सी उन्होंने छवि बना ली है और बहुत उसमें एनर्जी लगती है, बिकॉज आप सिर्फ गाएं खड़े होके वो एक अलग चीज है, और आप डांस के साथ परफॉर्म करें वो एक अलग चीज है। हम यहाँ पर मुबारकबाद देते हैं सुनिधि चौहान को उनके बर्थडे पर, उनके जन्मदिन पर, आकाशवाणी रेनबो की पूरी टीम की तरफ से और सुनिधि के करोड़ों बेशुमार फैंस की तरफ से।

0: जी आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स और अब समय है आपसे पूछने का बॉलीवुड सरताज का सवाल। तो आप हमें बताइएगा गदर एक प्रेम कथा 2001 में जो आई थी उसमें सनी देओल साहब ने जो किरदार निभाया था उस किरदार का नाम लिख के भेजना है आपको। हमें व्हाट्सएप करना है 9868107070 पर। तो फिर किस चीज की आप वेट कर रहे हैं, क्या है इंतजार? अगर जवाब आपको आता है तो हमें बताइए ना सरकार। 9868107070 पर कीजिए हमें व्हाट्सएप। गदर एक प्रेम कथा 2001 में आई इस मूवी के अंदर सनी देओल ने जो किरदार निभाया था उसका नाम क्या था? यहाँ पे लेके हम छोटा सा ब्रेक, लौट के आते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
5: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
6: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगम पुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
5: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
7: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
8: NCERTPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।

0: शिक्षा यूनिट बाल विवाह मुक्ति के लिए नालसा की पहल। अब हर जिले में मौजूद विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़िए, हेल्पलाइन नंबर 1500 पर कॉल करें।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
5: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स और मैं हूं आपके साथ रंजन. और मैं एक खबर लेके आया हूं. स्पेशली देखिए, जिस तरह से टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है इंटरनेट के ऊपर, फैन पेज बनाए जाते हैं सोशल मीडिया पर, तो ऐसे में हमारे जो बड़े बड़े सितारे हैं इनको कई दफा कुछ एक परेशानी होती है, क्योंकि कुछ फैन पेजेस के ऊपर कुछ ऐसी AI से बनाई हुई पिक्चर्स या फिर वीडियोज डाल दिए जाते हैं जो एक्चुअली में हकीकत नहीं है. और इसके खिलाफ खुशी कपूर और जानवी कपूर पहले भी कोर्ट जाती रही हैं. अभी हाल ही में आई थिंक खुशी कपूर के मामले में कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है जिसे कहते हैं जॉन डो ऑर्डर, और ये इस ऑर्डर में इनके फेवर में पास किया है. उसमें ऐसा होता है कि जो व्यक्ति या जो फैन पेज पे कुछ कोई व्यक्ति जो सामने नहीं आ रहा है छद्म तरीके से आपके लिए कुछ ऐसी बातें लिख रहा है या आपकी ऐसी पिक्चर्स डाल रहा है, उसे बाकायदा कानून की हद में लाने के लिए ये ऑर्डर पास किया जाता है, विच इज़ अ गुड थिंग. आई थिंक ऐसे हमने पहले भी किस्से देखे. इनफैक्ट कुछ लोग क्लिक बेट जिसे कहते हैं कुछ ऐसा लिख देते हैं जिससे कि आप मजबूर हो जाएं उनकी स्टोरी देखने के लिए, उन्हें क्लिक मिल जाए और उनकी रादर उनको ना व्यूज चाहिए. तो आई थिंक यहां लोगों को, कंटेंट क्रिएटर्स को यह समझना चाहिए कि क्या हद है, उसे पार करने से पहले सोचिए, क्योंकि देर सवेर किसी को पता लगाना इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है आजकल टेक्नोलॉजी के दौर में. सो फिर स्पेशली दोस्त टीनेजर्स

आपके बड़े प्यारे प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं। शालू का शादीपुर से मैसेज आया है हमारे पास, जो हमने सवाल पूछा था। उसके अलावा गिद्दर बहा पंजाब से मैसेज है, साडे कोल ना तुसी नहीं लिख दे, इस तरह क्यों कर दियो। हां जी सतपाल वर्मा जी, तुहाडे पिछले मैसेज जो मैं तुहाडा नाम पढ़दा पिया हां जी। सो कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। अपना नाम लेते हुए मुझे खुद कई बार ही पड़ी, यू नो क्या कहते हैं, बड़ापन सा लगता है। मतलब यू नो अपना नाम खुद जुबान पे लाओ तो फिर क्या है, तो मजा तो तब आए जब दुनिया आपका नाम ले, आप आगे आगे दौड़े और पूरी भीड़ आपके पीछे दौड़ रही हो आपका ऑटोग्राफ लेने के लिए। डोंट गेट मी रॉन्ग। यहाँ पे मैं एक बार सवाल फिर से दोहरा दूं। गदर एक प्रेम कथा 2001 में जो आई थी, सनी पाजी दी साड़ी अपनी मूवी जी, उहदे च जिहड़ा करैक्टर उन्होंने प्ले किया सी, जिहड़ा किरदार निभाया सी, उहदे च किरदार दा नाम सानूं लिख के भेजो जी, हमको लिख के भेजिए 9868107070 पर और हमारे साथ जुड़ जाइए। बहुत जल्द हम किसी को लेंगे ऑन एयर और बना देंगे आज बॉलीवुड सरताज, जैसा कि ये परंपरा है भाई। फिलहाल आपके लिए एक गीत और बस यूं ही जुड़े रहें, और उसी मूवी से गाना हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं।

0: ले जा तू संदेशा मेरा, मैं सदके जावां। आज 14 अगस्त है, ये हम मनाते हैं आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर। और ये इसलिए बहुत जरूरी है, हमें याद रखना है कि देखिए बंटवारा कभी भी सुखद नहीं होता है। और जब बात हो देश के बंटवारे की, इसी पे आधारित ये फिल्म थी गदर। और ऐसी एक फिल्म आज भी रिलीज हो रही है, 14 अगस्त को ही एक फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम ही है बंटवारा 1947। इसमें भी स्टार कर रहे हैं साढ़े अपने सनी देओल जी, और इसमें करण देओल भी है उनके सुपुत्र, और बड़ी सारी कास्ट है। और जाहिर सी बात है, जब पूछा गया कि क्या ये मूवी गदर से मिलती जुलती है, तो जवाब ये है कि नहीं। स्टोरी लाइन बिकॉज दोनों ही बंटवारे बनी है, बट उनके ऐसा कहा गया कि इससे अलग है। तो राजकुमार संतोषी इसके डायरेक्टर हैं, स्क्रिप्ट भी उन्होंने की है, और एक ये नॉवल पे बेस्ड है, एक कहानी पे बेस्ड है। तो खैर, आज मूवी अगर देखना चाहें तो यू मोस्ट वेलकम, एंड आप फ्री हैं, आप जाके देख सकते हैं और अपनी आज़ादी को अनुभव कीजिए। 15 अगस्त को याद रखिए कि कल जो हम बड़े धूमधाम से मनाने जा रहे हैं, तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमें आज़ादी मिलती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आज़ादी हम दूसरे की आज़ादी का हनन करने लगे। सो वी हैव टू बी लिटिल केयरफुल। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लौट के आते हैं थोड़ी देर में बॉलीवुड सरताज बनाएंगे। सो सवाल एक बार फिर से दोहराएंगे, बट आफ्टर द ब्रेक।
1: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, न हमसे मिलता है न साथ खाना खाने आता है, तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
2: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
1: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
3: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
4: इग्नोर नहीं, याद करो।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
6: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
7: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
8: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
9: अरे सर फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
8: इम्पॉसिबल
9: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
10: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
11: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन का विशेष संदेश।
12: वंदे मातरम, प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम 1 की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
13: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
14: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: वेलकम बैक ऑफ द ब्रेक. आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स. मैं हूं आपके साथ रंजन. और अब बहुत ज्यादा समय नहीं है क्योंकि नेक्स्ट एंकर ऑलरेडी हमारे साथ स्टूडियो में है. 12:02-03 के करीब आप सुनना चालू करेंगे फ्लाइट कूल विद आदिति. एंड मैं आपसे बस यही कहना चाह रहा था कि बॉलीवुड सरदार को खोजने चलते और एक बार लास्ट टाइम एक बार फिर से पूछ लो. हो सकता है किसी ने नहीं सुना हो. तो गदर एक प्रेम कथा 2001 में जो आई थी उसमें सनी देओल ने जो किरदार निभाया था उनका आपने नाम बताना है. लेट्स सी आज हमारे साथ कौन बनते हैं. बहुत सारे लोगों ने सही मैसेज किया है, सही जवाब दिया है हमारे सवाल का. जैसे कि इमरान अली ने चंडीगढ़ से दिया है, जयनंद त्यागी ने मोदी नगर से दिया है, और दिनेश कुमार भंडारी ने तुलसीपुर नेपाल से हमें पूछा है. कह रहे हैं थोड़ा धीरे पूछिए. उन्होंने कितना धीरे पूछा, कह रहे हैं पाजी थोड़ा धीरे सवाल थोड़ा मैंने बहुत बार पूछ लिया. आप देखते हैं हमारे साथ शायद मुझे कोशिश कर रहा हूँ कि लाइन पे हमारे साथ हैं. हेलो,
1: गुड मॉर्निंग.
0: जी जी मिल गए. गुड मॉर्निंग जी, अपना नाम बताएं.
1: सतपाल वर्मा गिदड़वा पंजाब से बोल रहा
0: हूँ सर. ये तो कमाल हो गया सतपाल जी. मैं अभी थोड़ा मैं मैसेज लिखता सी यार.
1: जी सर,
0: आप ये बताओ आपने आज अपना सवाल का जो जवाब दिया है पहले तो जवाब बता दीजिए क्या है.
1: अपने सनी देओल का नाम है तारा सिंह जी.
0: आहा, मजा आ गया. तारा सिंह, तारा तेज सितारा. एक मूवी एक हाँ एक मूवी आई थी जिसमें कौन थे अपने
1: गोविंदा और अपना संजय दत्त.
0: बड़ी मूवीज देखते हो. पक्की बात है स्कूल में तो अच्छा पढ़ाई नंबर अच्छे ले आते थे कि नहीं. हेलो वही आवाज ही गायब हो गई. तारा जी, ओहो सितारा पाजी, सतपाल जी. ओके, there's some problem with the line. खैर जो भी हो, आपसे जितनी बात हुई बहुत अच्छा लगा. हम ये कहेंगे आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आज के लिए शुभकामनाएं. आज आप बनते हैं सतपाल वर्मा गिदड़बहा से हमारे आज के बने हैं बॉलीवुड सरताज. मानुषी चिल्लर बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाई और बड़ा प्यारा नाम है मानुषी चिल्लर, जस्ट लाइक चिल कीजिए, है ना. तो इन्होंने ब्यूटी पेजेंट जीता. उसके अलावा आई थिंक ये डॉक्टर हैं, पढ़ाई इन्होंने की है डॉक्टरी, लेकिन मूवीज में आ गई और आजकल फिल्मों में बहुत अधिक काम ना मिलने की वजह से कह लीजिए या अपने डांस प्रेम की वजह से काफी सारी एल्बम्स के लिए वो डांस नंबर्स के अंदर आ रही हैं. और जब उनसे पूछा गया आप ऐसा क्यों कर रही हैं तो उन्होंने कहा बिकॉज आई लव डांसिंग. अगर आपको भी पसंद है नाचना तो मत रोकिए इन थिरकते कदमों को. सुनते रहें आकाशवाणी रेनबो और थिरकते रहें हमारे साथ.

जी हाँ, धूमधाम जारी रहेगी। फिलहाल रंजन कहता है टेक केयर गुड बाय, मैं नहीं हूँ घबराए, वापस आऊंगा, इतनी आसानी से थोड़ा छोड़ के चला जाऊंगा। मैं मिलूंगा आपसे 1 बजे के बाद, कार्यक्रम रहेगा मेरे वाला सॉन्ग, तो अपनी रिक्वेस्ट रखिए तैयार। अगले वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम को कीजिए एंजॉय, आपको छोड़ के जाते हैं रेखा भारद्वाज की आवाज में। ये बहुत दिनों बाद गाना मेरी नजर में आया, मुझे पसंद आया, मैंने कहा आपको भी सुनवाएं। टेक केयर गुड बाय।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
3: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
4: मम्मी, बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
5: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
4: अरे मम्मी, 1 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
5: हैं? इतनी जल्दी?
4: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर 7 के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
6: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुर होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
7: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
8: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
9: हर घर

0: नालसा का जागृति यूनिट मुफ्त कानूनी सेवाओं के बारे में कानूनी सहायता के लिए कॉल करें 1500 पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, न हमसे मिलता है न साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
3: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
2: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
4: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
5: इग्नोर नहीं, याद करो।
6: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
7: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
8: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सरायकाले खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में।
7: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में। आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
8: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
7: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
9: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
10: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: Well, we are back on Play It Cool after a very short break. But this is all the time that we had on this hour. Thank you so much for spending it with us. And thank you so much for sending in your replies to the question about the historical moment that you would like to witness if you can go back in time. We had a lot of fun reading all of your answers. And well, Ranjan is here with Mera Wala Song. We've already started getting messages for their show. So this is my cue to say bye-bye to you. I wish all of you a very happy Independence Day in advance for tomorrow. Have a great time, everybody. And here for the grand finale is Ariana Grande with Big Feelings from her latest album, Petal. Here it comes. Bye-bye.

एफएम स्टूडियो घड़ी में दोपहर के 1:01 लीजिए पेश है आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 5:10 पर सैनिकों को संबोधित करेंगे। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्र वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर विभाजन के दौरान अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सरकार ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के 100 लाभार्थियों को दिल्ली के लाल किले में होने वाले 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखने के लिए विशेष मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया है। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू होंगी। दिल्ली में अग्निशमन और कारागार विभाग में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को उपराज्यपाल की मंजूरी, आयु सीमा में भी मिलेगी छूट। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो NCB ने संयुक्त अरब अमीरात UAE से भगोड़े ड्रग सरगना वीरेंद्र सिंह बसोया की वापसी सुनिश्चित कर ली है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों और नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 7 लोगों की मौत हो गई और 18 लोग घायल हुए। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की संभावना। नेपाल के रोल्पा जिले में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में करीब 7 लोगों की मौत हो गई है जबकि 5 लोग लापता हैं। और पोलैंड के इगा स्वियाटेक ने कजाकिस्तान की एलेना रायबिकाना को हराकर कैनेडियन ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब जीता। तो ये थे आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी और कार्यक्रम शुरू होने वाला है मेरा वाला सॉन्ग। किसी को अगर मेरा कह के संबोधित करें तो उसमें एक अपनापन होता है, एक जुड़ाव होता है, एक एहसास होता है, कुछ इमोशंस होती हैं, कुछ भावनाएं होती हैं। इमोशंस होते हैं और भावनाएं मैं तो इमोशंस में बह गया। देखिए, अभी थोड़ी देर में हम शुरू करने वाले हैं क्योंकि अभी थोड़ा सा वक्फा है जहां बीच में हम आपको एक स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम भी सुनाएंगे जिसमें आपका ज्ञान भी वर्धन होगा और आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत सी जानकारियां आपको मिलेंगी। उसके तुरंत बाद आप हमारे पास व्हाट्सएप के माध्यम से अपने रिक्वेस्ट सकते हैं, फिल्म का नाम लिखेंगे, गाने के बोल लिखेंगे और अपना नाम लिख के भेजेंगे 9868 10 70 70 पर और हम इस इस कार्यक्रम की शुरुआत कर देंगे। लेकिन फिलहाल जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, सुनते हैं ये प्रायोजित कार्यक्रम।
2: इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ, इंडियन कैंसर सोसाइटी।
3: नमस्कार श्रोताओं, मैं अनुभा मित्तल एक कैंसर सर्वाइवर और इंडियन कैंसर सोसाइटी की वॉलंटियर हूं। हमारी संस्था पिछले लगभग 40 वर्षों से कैंसर के क्षेत्र में जागरूकता के लिए काम कर रही है। ये न केवल समाज में कैंसर को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करती है बल्कि कैंसर पीड़ितों को भावनात्मक और आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। आज की हमारी बातचीत का शीर्षक है द कफ दैट रिफ्यूज टू लीव, लंग कैंसर। एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही शायद हमारे मन में सबसे पहले एक ही बात आती है, बहुत ज्यादा धूम्रपान करने वालों को ही लंग यानी फेफड़ों का कैंसर होता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? तो शुरुआत करते हैं एक छोटे से किस्से कहानी से। एक 58 साल के व्यक्ति, उनको पिछले कुछ समय से खांसी थी। शुरुआत में उन्होंने सोचा मौसम बदल रहा है इसलिए खांसी है, लेकिन फिर उन्होंने घर पर दवाई ली, कुछ दिन आराम मिला लेकिन खांसी पूरी तरह गई नहीं, पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद खांसी फिर बढ़ने लगी, उन्होंने सोचा शायद कोई पुराना इन्फेक्शन होगा। कुछ घरेलू नुस्खे किए, कुछ दवाइयां और की, लेकिन इस बार खांसी के साथ सांस फूलने लगी और वजन भी कम होने लगा। डॉक्टर से मिलने पर कुछ जांचें कराई गईं और आगे की जांच में पता चला कि फेफड़ों में एक गांठ है। जांच के बाद वह गांठ लंग कैंसर निकली। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? क्या हर लंबे समय तक रहने वाली खांसी कैंसर होती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खांसी के बहुत से सामान्य कारण हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ लगातार बनी रहने वाली, बढ़ती जाने वाली या बार बार लौटने वाली खांसी को सिर्फ सामान्य खांसी मानकर लंबे समय तक टालना भी सही नहीं है। और एक और महत्वपूर्ण बात, फेफड़ों का कैंसर हमेशा खांसी के साथ ही सामने आए यह जरूरी नहीं है। कभी कभी ये काफी समय तक बिना किसी स्पष्ट लक्षण के भी मौजूद रह सकता है। यही इसकी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। वैसे लंग कैंसर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? फ्रेंड्स, इसके लिए हमें कुछ नंबर्स, कुछ आंकड़ों पर नजर डालनी होगी। दुनिया भर में 2022 में लगभग 25 लाख नए लंग कैंसर के मामले सामने आए और लगभग 18 लाख लोगों की मृत्यु हुई। भारत की बात करें तो नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम NCRP के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2025 में लगभग 1,11,000 नए लंग कैंसर के मामलों का अनुमान लगाया गया था। इसलिए लंग कैंसर केवल एक इंडिविजुअल बीमारी नहीं है, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ कंसर्न भी है। तो अब सवाल उठता है, आखिर लंग कैंसर इतना गंभीर क्यों है? इसका जवाब केवल ये नहीं है कि ये फेफड़ों में होता है, समस्या ये है कि ये कई बार देर से पता चलता है और शरीर के दूसरे हिस्सों तक फैल चुका होता है। हमारे फेफड़े हमारे शरीर के अंदर हैं और उनमें होने

0: वाले बदलाव हमें शुरुआत में हमेशा महसूस नहीं होते। जब ट्यूमर या गांठ बढ़ती है या आसपास की संरचनाओं को, आसपास के ऑर्गन्स को प्रभावित करने लगती है, तब लक्षण सामने आते हैं। और तब तक कैंसर आसपास के लिम्फ नोड्स या दूसरे ऑर्गन्स तक फैल चुका होता है। यही वजह है कि लंग कैंसर में स्टेज एट डायग्नोसिस बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कैंसर जितना जल्दी पकड़ा जाए, इलाज के विकल्प और परिणाम उतने ही बेहतर हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एडवांस लंग कैंसर का इलाज संभव ही नहीं है। आज जेनेटिक टेस्टिंग, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, बेहतर कीमोथेरेपी जैसे ट्रीटमेंट्स और क्लिनिकल ट्रायल्स ने कई पेशेंट्स के लिए विकल्प और सर्वाइवल दोनों बेहतर किए हैं। अभी तक हमने ये तो डिस्कस किया कि लंग कैंसर कितना गंभीर हो सकता है, लेकिन अब हम इसके बेसिक्स पर भी आते हैं। लंग कैंसर आखिर होता क्या है? तो लंग कैंसर यानी फेफड़ों का कैंसर, हमारे फेफड़ों में कई प्रकार की सेल्स यानी कोशिकाएं होती हैं। जब इनमें से कुछ कोशिकाएं असामान्य तरीके से बढ़ने लगती हैं और उनका नियंत्रण खत्म हो जाता है, तो बनता है ट्यूमर। ट्यूमर यानी एक गांठ। अगर यह ट्यूमर कैंसरस है तो कैंसर सेल्स आसपास के टिश्यूज में फैलने लगती हैं और फिर वहां से शरीर के दूसरे हिस्सों तक भी पहुंचती हैं। लंग कैंसर को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर एंड स्मॉल सेल लंग कैंसर। अब नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर सबसे सामान्य प्रकार का लंग कैंसर है और लगभग 85% लंग कैंसर इसी कैटेगरी में आते हैं। इसके मुख्य प्रकारों में है एडिनोकार्सिनोमा, जो कि सबसे कॉमन है और आमतौर पर फेफड़ों के बाहरी हिस्सों में पाया जाता है। यह अक्सर धूम्रपान ना करने वालों में और महिलाओं में अधिक देखा जाता है। फिर है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। यह फेफड़ों के वायु मार्ग में शुरू होता है। इसका संबंध सीधे तौर पर धूम्रपान से होता है। लेकिन एक और है लार्ज सेल कार्सिनोमा। ये फेफड़ों के किसी भी हिस्से में हो सकता है और बहुत तेजी से बढ़ता हुआ फैलता है। अब है दूसरा स्मॉल सेल लंग कैंसर, जो कि कंपैरेटिवली रेयर है, कम कॉमन है, लेकिन अक्सर बहुत तेजी से बढ़ता है और फैलता है। यही कारण है कि इसे अधिक अग्रेसिव लंग कैंसर माना जाता है। लंग कैंसर में स्टेजेस बहुत जरूरी हैं। ये हमें ये समझने में मदद करती हैं कि कैंसर शरीर में कितना फैल चुका है। नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर को स्टेज जीरो से स्टेज फोर तक बांटा जाता है। जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ती हैं, कैंसर के फैलाव का स्तर बढ़ता जाता है। स्टेज फोर को ही मेटास्टैटिक लंग कैंसर भी कहते हैं, जिसमें कैंसर फेफड़ों से दूर ब्रेन, लिवर या बोन्स जैसे अंगों तक फैल चुका होता है। लेकिन स्मॉल सेल लंग कैंसर थोड़ा अलग है। ये बहुत तेजी से फैलता है और इसे अक्सर लिमिटेड स्टेज और एक्सटेंसिव स्टेज में बांटा जाता है। लिमिटेड स्टेज का मीनिंग है कि कैंसर एक सीमित क्षेत्र में है, जहां रेडिएशन जैसे ट्रीटमेंट को एक फील्ड में दिया जा सकता है। एक्सटेंसिव स्टेज में कैंसर ज्यादा दूर तक फैल चुका होता है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। तो लंग कैंसर के सिम्टम्स हर व्यक्ति में एक जैसे नहीं होते। कुछ कॉमन सिम्टम्स जैसे लगातार रहने वाली या बढ़ती हुई खांसी, खांसते समय खून आना, सांस फूलना या सांस लेने में परेशानी होना, सीने में दर्द या डिस्कम्फर्ट, आवाज में बदलाव या लगातार भारीपन, बार बार चेस्ट इन्फेक्शन का होना, बिना किसी स्पष्ट कारण के वजन कम होना, भूख कम लगना और लगातार थकान महसूस होना। लेकिन यहाँ एक और जरूरी बात है, इनमें से कोई भी सिम्टम अकेले ये साबित नहीं कर सकता कि व्यक्ति को लंग कैंसर है। इसलिए लक्षण को देखकर खुद डायग्नोसिस करने के बजाय डॉक्टर से संपर्क करें और जांच करवाएं। और कभी कभी लंग कैंसर चुपचाप भी बढ़ता है। ये शायद आज की बात की सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है। हम अक्सर सोचते हैं अगर मुझे कैंसर होगा तो मुझे जरूर कोई सिम्टम महसूस होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ लोगों में लंग कैंसर शुरुआत में कोई स्पष्ट सिम्टम नहीं देता और कभी कभी किसी दूसरी वजह से कराई गई जांचों या इमेजिंग टेस्टिंग में संयोग से इसका पता चलता है। इसलिए केवल सिम्टम्स का इंतजार करना हमेशा पर्याप्त नहीं होता, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हर स्वस्थ व्यक्ति को बार बार सीटी स्कैन करवाना चाहिए। लंबे समय तक स्मोकिंग करने वाले कुछ हाई रिस्क लोगों में लो डोज सीटी से लंग कैंसर की स्क्रीनिंग की जाती है। इसका उद्देश्य कैंसर को उसके शुरुआती स्टेज में पकड़ना है, जब व्यक्ति को शायद कोई सिम्टम भी महसूस ना हो रहा हो। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को लगातार या बढ़ती हुई खांसी है, खांसी में खून आ रहा है, बिना कारण वजन कम हो रहा है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो डॉक्टर इन लक्षणों का कारण पता लगाने के लिए जांच करते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या केवल स्मोकर्स को ही लंग कैंसर होता है? ये एक बहुत बड़ा मिथ है। स्मोकिंग लंग कैंसर का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, लेकिन केवल स्मोकर्स यानी धूम्रपान करने वालों को ही लंग कैंसर हो ऐसा जरूरी नहीं। टोबैको स्मोकिंग लंग कैंसर के लगभग 85% मामलों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसके अलावा सेकेंड हैंड स्मोकिंग, जिसमें कि व्यक्ति खुद स्मोकिंग नहीं करता लेकिन लंबे समय तक दूसरों के धुएं के संपर्क में रहता है, तो वो एक रिस्क बढ़ाते हैं लंग कैंसर का। एयर पॉल्यूशन, बाहर का एयर पॉल्यूशन और कुछ केसेस में इंडोर एयर पॉल्यूशन भी लंग कैंसर के रिस्क फैक्टर में माना जाता है। अब है आपके कार्यस्थल पर कुछ केमिकल का एक्सपोजर, जैसे एबिस्टॉस, सिलिका, डीजल एग्जॉस्ट या कुछ ऑक्यूपेशनल केमिकल्स भी आपके लंग कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। कुछ लोगों में फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी भी भूमिका निभा सकती है, और उम्र बढ़ना भी एक महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर है जो कि हम में से किसी के बस में नहीं है। अब सवाल आता है, क्या हम लंग कैंसर की स्क्रीनिंग करवा सकते हैं? हाँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझना जरूरी है। लंग कैंसर स्क्रीनिंग सामान्य पॉपुलेशन के हर व्यक्ति के लिए केवल डर की वजह से सीटी स्कैन करवाना सही अप्रोच नहीं है। अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, स्मोकिंग हिस्ट्री है, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है या कोई कंसर्निंग सिम्टम है, तो आप अपने डॉक्टर से बात करें और अपने लिए उचित जांच के बारे में निर्णय लें। तो श्रोताओं, आज की बात को कुछ आसान बातों में याद रखते हैं। पहली बात, हर खांसी लंग कैंसर नहीं होती। दूसरी बात, लंग कैंसर हमेशा सिम्टम्स के साथ सामने नहीं आता, कभी कभी ये शुरुआत में काफी शांत भी रह सकता है। तीसरी बात, सिर्फ धूम्रपान करने वालों को ही फेफड़ों का कैंसर नहीं होता। चौथी बात, धूम्रपान लंग कैंसर का सबसे बड़ा प्रिवेंटेबल रिस्क फैक्टर है, इसलिए तंबाकू छोड़ना लंग कैंसर के रिस्क को कम करने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। और पांचवी सबसे महत्वपूर्ण बात, लंग कैंसर जितनी जल्दी पहचाना जाए, ट्रीटमेंट के ऑप्शंस और परिणाम उतने ही बेहतर हो सकते हैं। इसलिए अपने शरीर के संकेतों को सुनिए, खांसी को देखकर घबराइए नहीं, लेकिन उसे नजरअंदाज भी मत कीजिए। कैंसर पे अधिक जानकारी के लिए आप हमारी मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है राइज अगेंस्ट कैंसर। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9910516562 पर भी कॉल कर सकते हैं, 9910516562। यदि आप अपने स्वास्थ्य संबंधित जांच कम कीमतों पर करवाना चाहते हैं, तो इंडियन कैंसर सोसाइटी का एक डिटेक्शन सेंटर है जो 42 बाबर रोड बंगाली मार्केट के पास न्यू दिल्ली में स्थित है। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो और सब्सक्राइब करें और हमारा हिस्सा बनें। जाते जाते इंडियन कैंसर सोसाइटी की ओर से आप सभी से यही कहना चाहूंगी, तंबाकू से दूर रहें, धुएं से बचें, अपने कार्यस्थल पर सुरक्षा का ध्यान रखें, लगातार बने रहने वाले लक्षणों को नजरअंदाज ना करें और जरूरत पड़ने पर समय पर डॉक्टर की सलाह लें। जागरूक रहें, सजग रहें और स्वस्थ रहें। नमस्कार।
1: इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ, इंडियन कैंसर सोसाइटी।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: भाई जैसा कि हम बतिया रहे थे आपसे, ये कहलवा रहे थे कि आपके दिल में क्या है, तो वो प्यारा वाला सॉन्ग जिससे आप अपनापन महसूस करते हैं उसके बारे में लिख के बताइए। अब देखिए, जैसे बड़े सारे मैसेजेस आए हैं, एक मैसेज हमारे पास आया है जयराम खोरवाल, सचिन, अमन एंड दीपांशु खोरवाल का, उत्तम नगर दिल्ली से। एक से एक नगीना आपने आज नो रिक्वेस्ट किया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा गाना इसमें छोड़ूं और कौन सा प्ले करूं, मतलब ऐसे भी कंफ्यूज कर सकते हैं आप। मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूं नहीं नहीं ठीक है, आपकी इन पसंद में से कोई एक गीत जरूर बजाऊंगा, बट क्या होता है ना, उस पसोपेश में आपने डाल दिया कि इफ आई प्ले दिस सॉन्ग देन आई विल बी मिसिंग ऑन द अदर वन। अगर वो वाला बजा दिया तो ये पहले वाला ही बढ़िया था यार आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। इसे कहते हैं अपनापन, हर गाने से एक जुड़ाव, और अगर कोई स्टोरी है उसके साथ, कोई खास बात बताना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। नंबर रहेगा हमारा 9868107070, 9868107070, 9868107070। इस पे कर दीजिए व्हाट्सएप। सुखविंदर सिंह की आवाज से शुरुआत कर रहे हैं इस प्यारे से कार्यक्रम की, जिसे हम कहते हैं प्यार से मेरा वाला सॉन्ग। और मैं हूं आपका अपना प्यारा सा आरजे रंजन।

सुन रहे कार्यक्रम मेरा वाला सॉन्ग। आपके ढेर सारे मैसेज आए हैं, अगला जो हम गाना प्ले करने जा रहे हैं आज, देखिए मुझे आपने रिमाइंड कराया है उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अकोला से आपने मैसेज भेजा है, नाम कहाँ चला गया, प्रमोद चिंचोलकर। प्रमोद साहब आप लिखते हैं कि आज शम्मी कपूर साहब की पुण्यतिथि है, एंड यस यू आर राइट। जैसे हमने कहा हम जन्मदिन पे याद करते हैं, और जब कोई इतना बड़ा सितारा हमें छोड़ के चला जाता है तो उस दिन उसे भी याद करते हैं। आंखें ज़रूर नम होती हैं, लेकिन उनकी वो अदा, उनका वो बागपन, उनका वो डांसिंग स्टाइल, वो एक दौर था जो अपने ज़माने में एक वेस्टर्न कल्चर को किस तरह से हिंदी गानों में वो डांस में लेके आए। आपने जो गाना लव इन टोक्यो मूवी से मांगा है, स्पेशली वो गाना नहीं मेरा कंप्यूटर शो कर रहा, लेकिन उसी मूवी से, डोंट लूज हार्ट। देखिए क्या होता है ना, हम जो सेकंड बेस्ट है फिर वो आपके लिए लेके आते हैं, ये भी आपको पसंद आएगा। मोहम्मद रफी साहब की आवाज में टाइटल सॉन्ग लव इन टोक्यो।

रिया स्टैंड करेक्टेड, आपने यही गाना रिक्वेस्ट किया था, हुआ क्या मैं बताता हूँ। गाना जो है ये इसी मूवी के नाम से है, जो पहला गाने की लाइन है आपने वो लिख के भेज दी थी, ले गई दिल गुड़िया जापान की। अब मैं उस हिसाब से ढूंढ रहा था तो कंप्यूटर में कहाँ मिलना था, तो टाइटल के हिसाब से था। सो जो आपने रिक्वेस्ट किया वो हमने बचाया, आपकी पसंद का गीत। और अब देखिए, जैसे ही मैंने आपसे कहा कि हम आपकी पसंद को मद्देनजर रखते हुए आपके इतने प्यारे प्यारे नगीने

जो आपने भेजे हैं उसमें से एक गाना बजाने की कोशिश करेंगे। अब आप कह रहे हैं भी क्या हुआ, वादा करके तोड़ रहे हो प्रतीक्षा कर रहे हैं, बड़े ही पेशेंस रखिए थोड़ी सी, बहुत जल्दबाजी में आप रहते हैं। क्यों, खोरवाल परिवार है ना, खोरवाल साहब कहूं क्योंकि तीन चार नाम है तो सभी। अच्छा बताइए, आप चारों में से सबसे ज्यादा इम्पेशेंट कौन है, आज लिख के भेज ही दीजिए मुझे मैंने यही कहा, देखिए अपनापन है ये, उसकी तड़प है उस गाने से मिलने की, तो आप ही की पसंद का एक गीत मैं आगे बजाने जा रहा हूं, और वो गीत मैं बता देता हूं, केसरी मूवी से तेरी मिट्टी में। राइट, आपने इसके अलावा भी बहुत सारे आज देशभक्ति गीतों का ही रंग जला हुआ चढ़ा हुआ है सब पर, और जाहिर सी बात है आज के प्रोग्राम में बहुत सारे ऐसे गीत की रिक्वेस्ट आ रही है, तो जैसे जैसे रिक्वेस्ट आ रही है वैसे वैसे हम उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे। कुछ एक नाम यहाँ पे मैं साथ के साथ ले लेता हूँ। कंचन सोनिया बिहार से हमारे पास एक रिक्वेस्ट भेज रही है, बॉर्डर फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं। इसके अलावा पूरा बासी परिवार, बड़े सारे नाम है, नाम मैं ले दूँ, क्या कहते हैं आप? अबान, अरजान, सुहान, फरदीन, सरफराज, शाहनवाज, निगहत, परवीन, मोहम्मद, सईद, अब्बासी, ऊपरकोट बुलंदशहर से इन्होंने मैसेज भेजा है। तो आपकी पसंद भी हम देखते हैं कि हम प्ले कर पाए, ऐसा कोशिश करेंगे। फिलहाल जो हमने बताया था वो आप खोरवार परिवार के लिए ये रहा गीत, बी प्राक की आवाज में केसरी मूवी का ये गीत।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मेरा वाला गीत, और यहाँ पे समय है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक लेते हैं, लौट के आएंगे। आपकी बहुत सी रिक्वेस्ट आई हैं, एक रिक्वेस्ट हमने इनफैक्ट क्यू भी कर ली है, तो किशन वनजानी, नीलम स्वाति और किशु, हो सकता है अगला गाना ब्रेक के बाद आपका हो, मतलब प्रॉमिस नहीं करता हूँ क्योंकि वादे अक्सर टूट जाते हैं। चलिए अब इसी बहाने ब्रेक अच्छे से सुनिएगा। छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, लौट के आते हैं और यूं ही सुनते रहें, जुड़े रहें आकाशवाणी रेनबो के संग।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर, दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
3: पता का चाय, गजब का स्वाद।
4: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
5: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
6: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
7: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगमपुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
6: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
8: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
9: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
10: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
11: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। Good morning, Delhi NCR. Always wherever you are. 102.6 आपके लिए।
12: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
13: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
14: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
15: आज की
14: धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
13: म्यूजिक मस्ती।
16: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
17: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
13: म्यूजिक मस्ती।

पुनः स्वागत आपका आपके अपने ही प्यारे से कार्यक्रम में, जिसे आप बड़े प्यार से गले लगाते हुए कहते हैं कि मेरा वाला सॉन्ग। और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, आपकी पसंद ऑन एयर जा रही है। किशन जी, नीलम जी, स्वाति जी एंड खिशु जी, आई एम श्योर यू डोंट हैव एनी इश्यू विद मी नाउ। मतलब ऑब्वियसली आप कंप्लेन नहीं कर रहे। कुछ एक मैसेज आ रहे हैं जहां वो लोग थोड़ा सा कह रहे हैं भाई हमारा भी बजाओ, प्लेन कीजिए, मैसेज कीजिए। देखिए कुछ लोगों के मैं गीत इसलिए नहीं बजा पा रहा हूं क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है। आप एक गीत जब भेजते हैं और अगर थोड़ी देर तक हम नहीं प्ले कर पाते तो हमें भी एक चॉइस और दीजिए। लाइफ में एक मौका और मिलना चाहिए, क्या कहते हैं आप? इतना प्यारा मौसम हो रखा है इस समय दिल्ली के आकाश में। मैं स्टूडियो से बाहर देख रहा हूं खिड़की से, क्या घटा छाई है, जमकर बरसेंगे बादल। ऐसा लगता है लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाऊं और गाड़ी में गाना चल रहा हो। कौन सा? अजी ये वाला।

जी हाँ, कुछ ऐसा ही सवाल पूछा है। अगले हमारे जो श्रोता हैं, उनका जो गाना है वो इस गाने का जवाब देता हुआ लग रहा है। मतलब ये देखिए कुदरत है, देखिए मैं अकेला कार्यक्रम नहीं चला रहा हूँ, ये जो प्रोग्राम है ये तीन तरह से, तीन लोगों की वजह से चलता है, तीन एंटिटीज, एक आप, एक मैं और एक ऊपर वाला। बताता हूँ क्यों, उसके पीछे रीजन ये है कि देखिए मुझे नहीं पता जब मैं स्टूडियो में आके बैठता हूँ कि आज कौन मुझसे कौन सा गाना रिक्वेस्ट करेगा। उसके बाद मैसेजेस आने लगते हैं और कोई गाने मेरी नज़र के सामने जो मैसेज आएगा ये ऊपर वाले पे डिपेंड करता है कि किस समय कौन सा मैसेज मैं पढ़ूंगा और वो कंप्यूटर में गाना होगा कि नहीं होगा ये हमारे कंप्यूटर पे डिपेंड करता है। तो खैर, मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा दर्द मूवी का गाना सुनना चाहते हैं। पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से गाने के बोल हैं, ना जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया। आप भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, नंबर दोहरा देता हूं, 9868 10 70 70। कीजिए व्हाट्सएप, पाइए अपनी पसंद का गाना। रिक्वेस्ट करने में आपको थोड़ा सा संकोच होता है तो डिमांड भी कर सकते हैं।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरा वाला सॉन्ग और मैं हूं आपके साथ रंजन। यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लौट के आते हैं, आप कहीं मत जाइएगा।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
4: अरे सर, फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
3: इम्पॉसिबल
4: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
5: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
6: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है, तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
7: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे, मुझे HIV है।
6: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
8: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं,
9: इग्नोर नहीं, याद करो।
10: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: से मुक्ति पाएं, नालसा का साथ अपनाएं। नालसा की डॉन यूनिट से संबंधित जानकारी के लिए कॉल कीजिए 1500 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेकअप। समय बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन बहुत सारी चॉइसेस हमें लेना, हमारा ऐसा मन करता है कि बस ये कार्यक्रम यूं ही चलता रहे और कोशिश रहती है ज्यादा से ज्यादा लोगों की रिक्वेस्ट लेने की। जैसे गिद्दर बाहर से सतपाल जी की तीन चार गानों की रिक्वेस्ट की, उसमें से एक गाना हमें आपका क्यों कर दिया हमने, हमें मिल गया है और फिल्म है तेरे नाम। तुमसे मिलना बातें करना अच्छा लगता है।

जी हाँ, आपसे मिलना, बातें करना हमें बहुत अच्छा लगता है। और आपके साथ मिलके जब हम कुछ रंग जमाते हैं महफिल में, आपकी पसंद के गाने हम प्ले कर पाते हैं, तो हमें बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है। यकीन माने मोहम्मद रफ़ी साहब की मखमली आवाज़, बेहतरीन अंदाज, फिल्म का नाम है लोफर, आज मौसम बड़ा बेईमान है। उत्तम नगर से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और कीतिका खोरवाल की पसंद पर ये गाना आप तक पहुंच रहा है।

अगला कार्यक्रम आपके साथ पेश करेंगी प्रियंका मामगेन और यहाँ रंजन को दीजिए इजाजत। देखिए आपके बड़े सारे मैसेज हैं, मैं पहले तो क्षमा प्रार्थी हूँ कि सबके मैसेजेस नहीं ले सकता, समय की यू नो बात देता है। और एक मैसेज मुझे बार बार, आप बड़े सारे मैसेज आपने लिखे हैं, पिछले दो हफ्ते से मेरा आप कोई गाना नहीं बजा रहे हैं, तो ऐसे निराश भी मत होए कीजिए ना, ओए हाँ दिल छोटा नहीं कर दे। चलिए आप, मैं आपका नाम पढ़ देता हूँ। इतने देखिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा मैसेज भी मत लिख के भेजा करें, आपका नाम गुम जाता है, मेरा काम बढ़ जाता है। और आपके जो गाना प्ले करना है वो हमें नहीं मिलता है, अब देखो आपका नाम ही नहीं मिल रहा है। सो आप सोनू उगाले, ठीक है जी सर, ये रहा इस गाने से मैं अपने इस कार्यक्रम को आराम देता हूँ, अपनी जुबान को भी आराम देता हूँ। महेंद्र कपूर साहब जी की आवाज़ में, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे की आपको ढेरों शुभकामनाएं, टेक केयर, बाय बाय।

एफएम रेनबो पर अब वक्त है मुख्य समाचारों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेनावा पदक देने की घोषणा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 5:10 पर सैनिकों को संबोधित करेंगे। सरकार ने दिल्ली एनसीआर से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के 100 लाभार्थियों को लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया है। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू होंगी। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्र वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने जनगणना 2027 के लिए परिवार अनुसूची से संबंधित प्रश्नावली अधिसूचित कर दी है। इसमें 40 सवाल हैं। गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा है कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भगोड़े ड्रग सरगना वीरेंद्र सिंह बसोया को संयुक्त अरब अमीरात से वापस लाने में सफलता हासिल की है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने अपने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए कल तिरंगा यात्रा की घोषणा की है। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन सुरंग में मलबा और पानी भरने से करीब 22 लोगों में से 19 को बाहर निकाला गया है। हादसे में कल 7 लोगों की मौत हो गई थी। और अंत में मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो ये थे एफएम रेनबो पर अभी तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी
1: 2:03 और पूरे 37 सेकंड आकाशवाणी रेनबो आपके साथ मैं प्रियंका मामगन प्रोग्राम आशियाना और दिन फ्राइडे और इस दिन बात होती है उन जगहों की जहां हम घूमने जाते हैं रेनबो डेस्टिनेशन सेगमेंट के तहत। जी हां, और हम सभी जानते हैं कि अगस्त का पावन महीना है। कल हम सभी राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस पावन अवसर पर आज हम उन जगहों पर जाएंगे, उस मिट्टी को नमन करेंगे, उस मिट्टी को माथे पर सजाएंगे जो स्वतंत्रता संग्राम के लंबे और संघर्षपूर्ण इतिहास से हमें रूबरू कराती है, हमें हमारे उन वीरों से जोड़ती है जिन वीरों के त्याग, संघर्ष और बलिदान से हमें आजादी मिली।

15 अगस्त 1947 हमारा देश आज़ाद हुआ, हम आज़ाद हुए। ये आज़ादी हमें अनेक वीरों के त्याग, संघर्ष और बलिदान से मिली। 1857 की क्रांति से लेकर 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति तक लाखों भारतीयों ने देश की आज़ादी के लिए यातनाएं सही, त्याग बलिदान दिए, अपने प्राणों की आहुति दी। सन 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना रही। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ में हुई और फिर इसके बाद दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बिहार और फिर देश के अन्य राज्यों में, अन्य जगहों में फैलती चली गई। 1857 की क्रांति की याद दिलाने वाला महत्वपूर्ण स्थान है शहीद स्मारक, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। ये स्मारक उन वीर शहीदों के साहस और बलिदान को सम्मान देता है, नमन करता है, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, बलिदान दिए। दिल्ली से महज 1 से 2 घंटे की दूरी पर है, जी हाँ, मेरठ, और मेरठ में स्थित है शहीद स्मारक, 1857 की क्रांति के वीरों की स्मरण स्थली।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
3: पता का चाय, गजब का स्वाद।
4: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
5: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
4: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
6: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं,
7: इग्नोर नहीं, याद करो।
8: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
9: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, अब एक नए समय पर, हर गुरुवार शाम 4-5 FM रेनबो पर।
10: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
11: वंदे मातरम। प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम 1 की लॉन्चिंग, $5 trillion की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा, हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
12: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
13: आकाशवाणी रेनबो, आपके साथ मैं प्रियंका मामगन, और आज रेनबो डेस्टिनेशन के तहत हम विजिट कर रहे हैं उन खूबसूरत जगहों को जो हमें याद दिलाती है स्वतंत्रता संग्राम की, जो हमें जोड़ती हैं हमारे उन शूरवीरों से जिन्होंने स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए, देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, बहुत सारे बलिदान दिए, संघर्ष किया, यातनाएं सही, और आज हम नमन कर रहे हैं उन सभी शूरवीरों को। देखा जाए तो भारत का जर्रा जर्रा, पवित्र मिट्टी का हर कण स्वतंत्रता संग्राम के वीर शूरों बलिदानियों की गाथा कहता है और कह रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस महान स्वतंत्रता सेनानी और अमर नायकों में से एक रहे। देश की आजादी के लिए उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जैसे ओजस्वी नारे दिए, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्वतंत्रता संग्राम की यात्रा को दर्शाता है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित नेताजी भवन संग्रहालय। ये एक ऐतिहासिक संग्रहालय है, स्मारक है, जिसमें नेताजी के जीवन से जुड़ी अनेक वस्तुएं, तस्वीरें, दस्तावेज और ऐतिहासिक सामग्री सुरक्षित है, संजोकर रखी गई है। कोलकाता का नेताजी भवन संग्रहालय नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साहस, राष्ट्रभक्ति और त्याग को आज भी जीवंत किए हुए है। पश्चिम बंगाल की बात निकली है तो पश्चिम बंगाल में एक और शूरवीर का जन्म हुआ, मेदिनीपुर जिले के मोहबनी गांव में 3 दिसंबर 1889 को। नाम था खुदीराम बोस। जी हाँ, खुदीराम बोस देश की आजादी के लिए सबसे कम उम्र के सेनानियों में से रहे, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों में से रहे, जिन्होंने महज 18 साल की छोटी सी उम्र में अपने प्राणों की आहुति दी देश को आजादी दिलाने में। 11 अगस्त 1908 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस को 18 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर में स्थित है खुदीराम बोस संग्रहालय। ये संग्रहालय स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के जीवन, स्वतंत्रता आंदोलन, संघर्ष, उनके बलिदान की स्मृतियों को संजोए हुए है और युवाओं को देशभक्ति और साहस की प्रेरणा देता है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर का खुदी बोस संग्रहालय।

पंजाब की बात की जाए तो पंजाब के फिरोजपुर जिले में स्थित है हुसैनीवाला राष्ट्रीय शहीद स्मारक। भारत पाकिस्तान सीमा के पास स्थित ये एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्मारक है और विशेष रूप से शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान की स्मृतियों से जुड़ा हुआ है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु और सुखदेव थापर को ब्रिटिश सरकार ने फांसी दी थी। बाद में उनके पार्थिव शरीरों का अंतिम संस्कार हुसैनीवाला में किया गया और इसीलिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में हुसैनीवाला राष्ट्रीय स्मारक बेहद इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और ये स्मारक देशभक्तों और पर्यटकों के लिए प्रेरणा का केंद्र है और हर वर्ष 23 मार्च को यहाँ पर शहीद दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है हमारे शूरवीरों को, स्वतंत्रता सेनानियों को। और पंजाब में ही स्थित है अमृतसर और अमृतसर में है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग पंजाब में स्थित है और अमृतसर में एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय स्मारक है। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक की साक्षी देता है। और जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन बड़ी संख्या में लोग जो शांतिपूर्ण सभा में एकत्रित हुए थे, उन पर गोलियां चलाई गई जनरल डायर के द्वारा और कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई और उनके बलिदानों को समर्पित है जलियांवाला बाग, अमृतसर पंजाब में स्थित है। मेरा रंग

अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात हो तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है पोर्ट ब्लेयर और यहां पर स्थित है सेलुलर जेल जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण ब्रिटिश शासन ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करने के लिए किया था। यहां स्वतंत्रता सेनानियों को कठोर यातनाएं और कठिन परिस्थितियां सहनी पड़ी। वीर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त और कई सारे स्वतंत्रता सेनानी यहां कैद रहे। सेलुलर जेल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के त्याग, संघर्ष और बलिदान का प्रतीक है। आज ये एक राष्ट्रीय स्मारक है और देशवासियों को स्वतंत्रता सेनानियों के साहस की याद दिलाता है। आइए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम नमन करें स्वतंत्रता सेनानियों को, उनके द्वारा अर्जित स्वतंत्रता को हम सहेज कर रखेंगे, ये प्रण करें, भारत की प्रगति उन्नति में अपना विशेष योगदान देंगे और साथ ही 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना विशेष योगदान देंगे। इस प्रण के साथ आइए आगे बढ़ें भविष्य की ओर।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का आज के विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। कल स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं विमलेश।
3: जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूं अजीत। स्वाधीनता दिवस की आप सबको बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर कविता से।
2: तो शुरू करते हैं कविता। जब भी सर झुके मेरा तब देश को सलाम हो, तमन्ना बस यही है मेरी हर सांस देश के नाम हो।
3: तिरंगे की शान पर ये जीवन कुर्बान हो, हर धड़कन में मेरी भारत ही का नाम हो। श्रोताओं, कैसी लगी कविता जरूर बताइएगा।
2: तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
3: तो पहला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से, ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। लिखते हैं,
2: अनुभव और कर्म ये दो हमारे गुरु हैं, दोनों ही साथ चलते हैं। कर्म परिस्थिति में लड़ना सिखाता है और अनुभव जीत हासिल करना।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और अब बारी है संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश सुनने की।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी, कूट कुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक।
3: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन।
3: और भवरपुर बसना छत्तीसगढ़ से राधेश्याम, चंपा देवांगन।
2: धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए।
3: ये भी जानिए श्रृंखला में एक बार फिर से हम लेकर आए हैं श्रोताओं आपके लिए रोचक जानकारियों का पिटारा। जैसा कि आपको पता है कल हम मनाने जा रहे हैं 15 अगस्त की आजादी का जश्न।
2: श्रोताओं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मानी जाती है 1857 से, जो 1947 तक चली। हम सब जानते हैं कि 10 मई 1857 को ये मेरठ छावनी से शुरू हुआ था, जब जननायक मंगल पांडे ने बगावत का बिगुल बजा दिया था।
3: श्रोताओं, ऐतिहासिक रूप से इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई माना जाता है
2: जी।
3: लेकिन इससे पहले भी स्थानीय रूप से बहुत से जनजातीय और अन्य समूहों ने भी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज उठाई और आजादी का नारा बुलंद करके राष्ट्रीय आंदोलन का मंच तैयार किया।
2: इन जनजातीय समूहों में मुंडा, भील, उरांव, गोंड, संथाल, कड़ावा इत्यादि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन आदिवासी आंदोलनों के नायकों में बिरसा मुंडा, सिद्धो और कानू और अल्लूरी सीताराम राजू जन जन में जाने जाते हैं।
3: तो श्रोताओं, एक लंबे संघर्ष के बाद आजादी मिली
2: जी।
3: तो आज हम विशेष रूप से जानेंगे कि क्या हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो पहली बात आपको बता दें श्रोताओं कि 15 अगस्त 1947 को भारत के पास कोई राष्ट्रीय गान नहीं था, इसीलिए उस दिन कोई गीत नहीं गाया गया था।
2: जी हाँ श्रोताओं, क्योंकि राष्ट्रगान जन गण मन महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 में लिखा था, लेकिन इसे देश का राष्ट्रगान 1950 में ही घोषित किया गया
3: जी। तो अब बात करते हैं तिरंगे की। श्रोताओं, आपको बता दें पहली बार तिरंगा झंडा 6 अगस्त 1947 को फहराया गया था, लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से झंडा 16 अगस्त 1947 को ही फहराया गया था।
2: तो क्या 15 अगस्त के दिन कोई समारोह नहीं हुआ था? श्रोताओं, ऐसा बिल्कुल नहीं है
3: जी। 15 अगस्त 1947 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में तिरंगा फहराया था और 16 अगस्त 1947 को उन्होंने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराया था। आपको बता दें कि उस दिन लाल किले के प्रांगण में लाखों की भीड़ थी।
2: श्रोताओं, एक और रोचक बात आपको बता दें कि 15 अगस्त को अन्य देश भी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। वो देश हैं दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो।
3: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी स्वतंत्रता दिवस के दिन की। अब आज का प्रश्न आज ही की जानकारी से। जन गण मन को भारत का राष्ट्र

0: गान कब घोषित किया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर।
1: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब सुनते हैं आज के विशेष शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है दादा भाई नौरोजी।
1: इस कार्यक्रम में भारत के स्वतंत्रता सेनानी दादा भाई नौरोजी के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके प्रयासों और योगदान की चर्चा की गई है। उन्हें आधुनिक भारत की राजनीति का पितामह भी कहा जाता है।
2: आधुनिक भारत के निर्माताओं में दादा भाई नौरोजी का नाम प्रमुख है। अंग्रेजों को उनके जुल्मों के लिए खरी खोटी सुनाने वाले पहले भारतीय वे ही थे। इंग्लैंड में उन्हीं लोगों के वोटों से वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना जाना भी उनके जैसे महान व्यक्ति का ही काम था। भारतीयों में स्वदेश के प्रति प्रेम और उन्हें स्वराज्य का नारा देने वाले भी दादा भाई नौरोजी ही थे। यही कारण है कि इस देश के लोग अगर गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं तो दादा भाई नौरोजी को राष्ट्र का पितामह। 4 सितंबर 1825 को एक पारसी पुरोहित के घर दादा भाई का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था श्री नौरोजी पालनजी दोरड़ी और माता का नाम श्रीमती मीणकबाई था। पुरोहिती और थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी से ही इनके परिवार का पालन पोषण होता था। 4 वर्ष की कम उम्र में ही दादा भाई के सिर से पिता का साया उठ गया। परिवार आर्थिक कष्ट में डूब गया। दादा भाई के पिता ये चाहते थे कि उनका बेटा भी बड़ा होकर पारिवारिक पुरोहिताई का काम करे, लेकिन उनकी मां ने उन्हें पुरोहित बनाने की बजाय स्कूल भेजना उचित समझा और उनकी पढ़ाई का खर्च जुटाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करने में कोई कसर ना छोड़ी। उन दिनों देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था और विदेशी शासन को इसकी कोई चिंता ना थी कि भारत के लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। बंबई के तत्कालीन गवर्नर श्री माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन कुछ भिन्न विचार के थे। उन्होंने अपनी कोशिशों से नेटिव एजुकेशन सोसाइटी नाम की एक संस्था बनाई जो भारतीय बच्चों को शिक्षा देने का काम करती थी। इस संस्था ने बंबई में 2 स्कूल खोले। उनमें से एक में अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी और दूसरे में देशी भाषा। दादा भाई की मां ने उन्हें देशी भाषा वाले स्कूल में भर्ती करवा दिया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके उन्होंने बंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। कॉलेज में वो न केवल पढ़ने में तेज थे अपितु दूसरे क्षेत्रों में भी वे सबसे आगे थे। उनकी योग्यता को देखकर उनके एक प्राध्यापक ने उन्हें भारत की आशा नाम दिया था। आगे चलकर दादा भाई ने इस विशेषण को सार्थक कर दिखाया। उनकी योग्यता को देखकर बंबई के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अर्सकिन पेरी ने उन्हें सलाह दी।
3: दादा भाई, तुम इंग्लैंड जाकर बैरिस्टरी कर रहे हो।
4: लेकिन सर, इंग्लैंड जाना और वहां रहकर बैरिस्ट्री पढ़ना, इन सब के लिए तो बहुत पैसा चाहिए।
3: इसकी तुम चिंता न करो, तुम्हारी बैरिस्ट्री की पढ़ाई का सारा खर्चा मैं दूंगा। तुम जाने की तैयारी करो।
4: सर, आप मेरी पढ़ाई के लिए खर्चा करेंगे? लेकिन सर, मैं अपनी माँ और घर के अन्य लोगों से पूछकर ही कुछ फैसला कर सकता हूं।
3: जैसे तुम्हारी मर्जी।
2: दादा भाई ने जब अपने घर में इंग्लैंड जाने और वहां बैरिस्ट्री पढ़ने की बात कही तो पारसी समाज के बुजुर्गों ने इसका विरोध किया। उन्हें डर था कि इंग्लैंड जाकर दादा भाई कहीं ईसाई न बन जाएं। परिणाम यह हुआ कि दादा भाई ना इंग्लैंड जा सके और ना ही बैरिस्ट्री पढ़ सके। दादा भाई अपने विद्यार्थी जीवन में ही सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने लगे थे। जनता की भलाई और उन्नति के काम में वो पूरी तरह जुट गए। लड़कियों की शिक्षा को कार्य रूप देने वाले वे पहले व्यक्ति थे। ऐसे समाज में

0: यहाँ लड़कियों को शिक्षा देने के प्रबल समर्थक न थे। दादा भाई ने कुछ विद्यार्थियों को इकट्ठा करके बंबई में एक संस्था बनाई। इस संस्था द्वारा उन्होंने लड़कियों की शिक्षा का कार्यक्रम शुरू कर दिया। अपेक्षा के अनुसार तत्कालीन समाज ने उनका कड़ा विरोध किया।
1: अरे भाई कौन हो तुम? ये घर घर जाकर क्या प्रचार कर रहे हो?
2: जी मैं दादा भाई हूँ।
3: दादा भाई?
2: और हमारी संस्था ये प्रयत्न कर रही है कि लड़कियाँ स्कूल जाएं और शिक्षा प्राप्त करें।
4: अरे लड़कियाँ पढ़ेंगी है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है?
1: अरे लड़कियाँ घर से बाहर जाएंगी? अरे ना भाई ना, ना, ना।
4: अरे जा कुछ और काम करो।
2: सुनिए सुनिए आप लोग मेरी बात तो सुनिए। देखिए लड़कियों का अलग से स्कूल होगा और यदि वो पढ़ लिख जाएंगी तो उनके जीवन में नई रोशनी आएगी, वो परिवार और समाज को बेहतर बनाने में सहायक होंगी।
0: दादा भाई के इस प्रचार का लगातार विरोध होता रहा, किंतु दादा भाई और उनके सहयोगियों ने हिम्मत ना हारी। उन्होंने लड़कियों का एक नियमित स्कूल खोल दिया और उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप कुछ लड़कियां उस स्कूल में आने भी लगीं। कुछ पढ़े लिखे बुजुर्ग लोग दादा भाई की लगन और ईमानदारी से प्रभावित हुए बिना ना रह सके। सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया और देखते ही देखते बंबई में लड़कियों के कई स्कूल खुल गए। 30 वर्ष की आयु में ही दादा भाई को एक व्यापारी कंपनी के सहयोग से इंग्लैंड जाने का मौका मिला। वे जानते थे कि व्यापारिक तिकड़मबाजी में तो वे सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन इंग्लैंड जाने का ये मौका उन्हें फिर नहीं मिलेगा। वे इंग्लैंड जाकर अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता और भारतीयों की उन्नति के लिए सक्रिय कार्य करना चाहते थे। अतः इंग्लैंड पहुंचते ही उन्होंने अपने व्यापारिक कामों के साथ देश सेवा का काम भी शुरू कर दिया। उनका विश्वास था कि यदि इंग्लैंड की आम जनता और सरकार को भारत की दुर्दशा से परिचित कराया जाए तो भारत की हालत में सुधार हो सकता है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की सभाओं में दादा भाई ने अपने राजनीतिक विचारों को अंग्रेजों के सामने रखा।
2: भारत का शासन भारत के हित में होना चाहिए और ये भारत में 1,00,000 सैनिक रखकर नहीं बल्कि वहाँ रहने वाले लाखों भारतीयों की सहमति और विश्वास से हो सकता है।
0: मई 1869 को इंग्लैंड से बंबई आकर उन्होंने भारतीयों की एक सभा बुलाई।
2: मेरे साथियों, हमें भारत में भी ब्रिटिश पार्लियामेंट जैसी जनता की अपनी प्रतिनिधि संस्थाएं बनानी चाहिए।
4: क्या ब्रिटिश सरकार ऐसा होने देगी?
2: ब्रिटिश सरकार के सामने हम अपना प्रस्ताव रखें, उससे पहले हमें इसके योग्य बनना होगा।
5: लेकिन वो कैसे?
2: इसके लिए हमें लोगों को तैयार करना होगा और जनमत को तैयार कर अन्याय व गलत बातों के खिलाफ आवाज उठानी होगी।
5: लेकिन लेकिन हमारी आवाज सुनेगा कौन?
4: और क्या ब्रिटिश सरकार इस जनमत की आवाज को बर्दाश्त करेगी?
5: क्या अंग्रेज सरकार इसे बर्दाश्त करेगी?
2: वो बर्दाश्त ना करे, पर हमारे लिए ये जरूरी है कि हम इंग्लैंड में एक ऐसी संस्था बनाएं जो भारतीयों की मांगों को इंग्लैंड की पार्लियामेंट में उठाए।
0: देखते देखते बंबई के लोगों में नई लहर दौड़ गई और इसके बाद बंबई में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की शाखा कायम हुई। दादा भाई ने सोचा कि यदि इंग्लैंड की लोकसभा में भारत का कोई प्रतिनिधि हो तो भारत की दुर्दशा का हाल वहां की जनता तक पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए वे पुनः इंग्लैंड गए और वहां के लोकसभा चुनाव में खड़े हुए, किंतु इसमें वो हार गए। इस हार से वो जरा भी निराश नहीं हुए। भारत की एक और राष्ट्रीय शख्सियत मदाम भीकाई कामा ने उनके अगले चुनाव के लिए काम आरंभ किया। परिणामतः उन्हें इंग्लैंड की लोकसभा चुनाव में सफलता प्राप्त हुई। इतिहास में ये पहला अवसर था जब ब्रिटेन की लोकसभा में एक साधारण भारतीय चुना गया था। लोकसभा की कार्रवाई में शुरू से ही उन्होंने ये साबित करना शुरू कर दिया कि भारतीय लोग विद्या, बुद्धि और सतर्कता में अंग्रेजों से कम नहीं। उन्होंने अपने प्रयत्नों से लोकसभा में सिविल

सर्विस में भारतीयों को भर्ती करने का प्रस्ताव पास करवाया। भारत के लोगों के लिए उनका ये प्रयास बहुत महत्वपूर्ण था। 81 वर्ष की आयु में भी वो देश के सुधार में दिन रात लगे रहते थे। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। मित्रों के आग्रह पर सन 1907 में वे लंदन से स्वदेश लौट आए। 30 जून 1917 का वो दिन दुर्भाग्यपूर्ण था जब स्वराज्य का सपना अपनी आंखों में लिए देश का ये वयोवृद्ध नेता 92 वर्ष की आयु में इस दुनिया से सदा के लिए विदा हो गया। गोखले और महात्मा गांधी ने दादा भाई की कर्तव्य निष्ठा को आगे बढ़ाया। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की इस मूर्ति के प्रति देश सदैव ऋणी रहेगा।

0: दादा भाई नौरो जी, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है सरदार वल्लभ भाई पटेल।
1: ये कार्यक्रम भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन, स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी अहम भूमिका और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आधुनिक भारत के निर्माण और एकीकरण में उनके विशेष योगदान के बारे में विस्तार से बताता है।
2: मैं कम बोलने वाला आदमी, क्यों? क्यों मैं कम बोलता हूँ? एक सूत्र है कि जो मैंने सीख लिया है कि मौनम मूर्खस्य भूषण, ज्यादा बोलना अच्छा नहीं, वो विद्वानों का काम है। लेकिन जो हम बोले उसी के पर हम न चल सके तो हमारा बोलना नुकसानकारी है, इसलिए भी मैं कम बोलता।
3: भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महात्मा गांधी ने हमें स्वतंत्रता दिलाई, पंडित नेहरू ने भारत के नव निर्माण की नींव रखी, तो सरदार पटेल ने 500 से भी अधिक देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाकर उसे एक स्वतंत्र, एकीकृत और अखंड राष्ट्र की पहचान दी।
4: लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 को गुजरात में हुआ था। वल्लभ भाई की आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। आगे पढ़ने के लिए वे पास के शहर पेतलाड़ चले गए। वहां वे पढ़ाई के साथ साथ ही खेलकूद, कुश्ती और सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहते थे। तभी एक दिन,
5: वल्लभ वल्लभ,
6: हाँ,
5: अरे तुमने कुछ सुना?
6: क्या क्या हुआ घनश्याम?
5: अरे वो अपने देसाई सर है ना,
6: हाँ?
5: उन्होंने राम जी को क्लास से निकाल दिया।
6: क्लास से निकाल दिया?
5: हाँ।
6: मगर क्यों? वो तो बड़ा सीधा साधा लड़का है।
5: राम जी के पास किताब नहीं थी, घर से पैसे नहीं आए, इसलिए वो खरीद नहीं सका। पर देसाई सर भला उसकी क्यों सुनते, उन्होंने राम जी पर 4 आना फाइन कर दिया।
6: किताब न लाने पर 4 आने फाइन? फिर क्या हुआ?
5: फिर क्या, आज क्लास में आते ही देसाई सर ने पूछा,
7: क्यों राम जी फाइन लाए हो?
5: तो बेचारा राम जी बोला, नहीं सर, मेरे पास पैसे नहीं है। तो जानते हो, इस पर सर एकदम भड़क गए और बोले,
7: निकल जाओ मेरी क्लास से, और जब तक फाइन लेकर ना आओ तब तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना।
6: ये तो सरासर अन्याय है। ठीक है, तो कल से सिर्फ राम जी ही नहीं, हम में से कोई भी उन्हें शक्ल नहीं दिखाएगा।
5: क्या कह रहे हो, देसाई सर का गुस्सा नहीं जानते हो तुम?
6: जानता हूं, लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसे अन्याय करना बुरी बात है, वैसे ही अन्याय सहना भी बुरी बात है। हम गरीब घरों के लड़के हैं, हमारे माँ बाप किसी तरह पेट काट कर हमें पढ़ाते हैं। अगर हमें बिना कसूर जुर्माना भरना पड़े तो हमारे माँ बाप इतना पैसा कहाँ से लाएंगे भाई?
5: लेकिन अभी तो सिर्फ राम जी के 4 आने का ही सवाल है।
6: सवाल 4 आने का नहीं है घनश्याम, सवाल है अन्याय के आगे सिर झुकाने का। देसाई सर को गुस्सा कुछ ज्यादा ही आता है, बात बात पर मारपीट, बात बात पर फाइन। इसी तरह वो पारिख सर हैं जो जबरदस्ती लड़कों को अपनी दुकान से कापी कलम खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। सब जानते हैं वो बाजार भर में सबसे

0: महंगा सामान बेचते हैं, फिर भी हमें उनकी दुकान से सामान खरीदना पड़ता है।
1: हाँ, और अगर ना खरीदो तो नंबर कम देते हैं।
0: इसीलिए तो कहता हूँ सब मिलकर एक हो जाओ और इस अन्याय का विरोध करो। चलो सब लड़कों से बात करते हैं।
1: ठीक है,
0: उनसे कहते हैं कल से कोई लड़का उनकी क्लास में न जाए।
1: लेकिन वल्लभ सुनो तो सही, अगर इतने सारे लड़के क्लास में ना जाकर इधर उधर घूमेंगे तो प्रिंसिपल साहब नाराज नहीं होंगे क्या?
0: हाँ ये तो तुम ठीक कहते हो। ठीक है, इसका हल भी मैंने सोच लिया है।
1: क्या?
0: स्कूल के बाहर जो धर्मशाला है उसमें बैठेंगे, न इधर उधर भटकेंगे न शोर करेंगे। तुम जाकर उस धर्मशाला में हमारे बैठने की व्यवस्था करो। और सुनो, बाबू से कहो कहीं से 3-4 घड़ों की व्यवस्था करे।
1: घड़ों की व्यवस्था? पर वो क्यों?
0: अरे भाई इतने लोग दिन भर वहां बैठेंगे तो पीने का पानी भी तो चाहिए। हम लोग वहीं बैठकर अपना काम करेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे।
1: हाँ वल्लभ ये ठीक है।
2: वल्लभ भाई की ये पहली हड़ताल सफल रही। 3 दिन तक सिर्फ उनकी कक्षा के ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल के विद्यार्थियों ने अपनी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार किया। आखिर प्रिंसिपल साहब ने अपने सहयोगियों की ओर से क्षमा मांगी और आश्वासन दिया कि फिर कभी किसी छात्र को बिना अपराध सजा नहीं दी जाएगी।
3: इस घटना से वल्लभ भाई के 2 प्रमुख गुण प्रकाश में आए। एक था उनका कुशल नेतृत्व और दूसरा संगठन की अद्भुत शक्ति। वल्लभ भाई में एक और विशेषता थी और वो थी उनकी शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता। कठिन से कठिन परिस्थिति में वे बड़ी जल्दी सही निर्णय लेते थे और फिर पूरी दृढ़ता और लगन से उसके पालन में लग जाते थे। उनके इन्हीं गुणों को देखकर गांधी जी ने उन्हें अपना विश्वास पात्र सहयोगी बनाया था।
2: मैट्रिक करने के बाद वल्लभ भाई ने डिस्ट्रिक्ट लीडर की परीक्षा पास कर गोधरा में वकालत शुरू की। बाद में उन्होंने लंदन से बैरिस्टर की परीक्षा पास की और अहमदाबाद में प्रैक्टिस करने लगे। जल्दी ही एक कुशल और निर्भीक वकील के रूप में उनकी प्रसिद्धि फैल गई। उन्हें अहमदाबाद नगर पालिका का सदस्य और बाद में उसका अध्यक्ष चुना गया। इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक हित के लिए कई बार अंग्रेज अफसरों से लोहा लिया और विजय प्राप्त की। ऐसी ही एक घटना थी नागपुर के झंडा सत्याग्रह की।
4: ये क्या दिनेश भाई, आज फिर झंडा लेकर जुलूस निकालने का इरादा है क्या?
5: हाँ भाई इरादा तो पक्का है।
4: पर सुना है कल सिविल लाइंस वाले जुलूस में काफी लोग गिरफ्तार हो गए।
5: हाँ काफी स्वयंसेवकों ने गिरफ्तारी दी और जानते हैं उनमें करोड़पति सेठ जमनालाल बजाज भी थे।
4: अच्छा, सेठ जमनालाल को भी नहीं छोड़ा, तो फिर अब जुलूस का नेतृत्व कौन करेगा?
5: सेठ जमनालाल की गिरफ्तारी की खबर सुनकर अहमदाबाद से वल्लभ भाई पटेल आ रहे हैं। वही खेड़ा सत्याग्रह वाले बड़े जीवट वाले व्यक्ति हैं। अब वही इस झंडा सत्याग्रह की बाल रोड संभालेंगे। ये लो वो आ ही गए।
0: क्यों दिनेश भाई कैसे हो, यहाँ का क्या समाचार है?
5: जी मैं अच्छी तरह हूँ, पर आप यात्रा से आए हैं थके होंगे, कुछ देर आराम कर लीजिए, बाकी बातें कल होंगी।
0: नहीं भाई मैं किसान का लड़का हूँ, आज का काम कल पर नहीं छोड़ता। तुम पहले यहाँ का हाल सुनाओ।
5: यहाँ का हाल ठीक नहीं है। सच्ची बात तो यह है कि सेठ जमनालाल की गिरफ्तारी से बहुत से लोगों की हिम्मत टूट गई है। सबसे पहले तो हमें स्वयं सेवकों की आवश्यकता है।
0: मेरा भी यही ख्याल है, पर नागपुर में इतने स्वयं सेवक मिलने कठिन है। ऐसा करें कि सभी प्रांतों के कांग्रेस अध्यक्षों को मेरी ओर से पत्र लिखवाएं।
5: जी,
0: और उनसे अनुरोध करें कि अधिक से अधिक स्वयं सेवक यहां भेजने की व्यवस्था करें।
5: उससे क्या होगा
0: भाई, अंग्रेज सरकार हमें झंडा लेकर चलने नहीं देगी, पकड़कर जेल में डाल देगी। अगले दिन फिर झंडा लेकर जुलूस निकालने के लिए और स्वयंसेवक चाहिए या नहीं?
5: हाँ
0: ऐसा प्रबंध करना है कि हर रोज कम से कम

0: 50 लोग जुलूस निकाले और गिरफ्तारी दे, देखना है अंग्रेज सरकार की जेल में कितनी जगह है।
1: सरदार पटेल की देखरेख में जुलूस निकलने लगे और गिरफ्तारियां होने लगी। नागपुर जेल भर गई तो सत्याग्रहियों को अकोला जेल भेजा गया, लेकिन 110 दिन चले इस सत्याग्रह में किसी दिन स्वयं सेवकों की कमी नहीं हुई। आखिर अंग्रेज सरकार को शांतिपूर्ण जुलूसों और सभाओं पर से पाबंदी हटानी पड़ी।
2: सरदार पटेल की एक ऐसी ही महत्वपूर्ण विजय थी बारदोली के किसान आंदोलन की सफलता। उनकी इसी सफलता पर गांधी जी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। हुआ यूं कि सरकार ने बारदोली जिले के किसानों पर लगने वाले कर में एकदम से 22% की वृद्धि कर दी। गरीब किसानों के लिए इतना कर देना संभव नहीं था। सरदार पटेल ने पहले किसानों की ओर से सरकार से अपील की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तब उन्होंने सत्याग्रह का शंख फूंक दिया। उन्होंने गांव-गांव, घर-घर में जाकर किसानों से कहा कि वे बिल्कुल टैक्स न दें।
0: मैं आप लोगों को यह साफ-साफ बता देना चाहता हूं कि अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने के लिए मैं आपको कोई बड़े बड़े हथियार नहीं दे सकता। बस आपका अपना दृढ़ निश्चय और कष्ट सहने की आपकी सामर्थ्य, यही वो हथियार है जिनसे आपको ये लड़ाई लड़नी है। लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अगर आप कष्ट सहने के लिए तैयार हैं तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी एक दिन आपके आगे घुटने टेकने के लिए विवश हो जाएगी।
3: ठीक है, हम सब तैयार हैं।
0: भाइयों, मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग डरते हैं कि उनकी जमीनें छिन जाएंगी, लेकिन एक बात तो बताइए, क्या अंग्रेज सरकार अपने साथ यह जमीन विलायत ले जाएगी?
3: नहीं।
0: अंग्रेज सरकार के ये आला अफसर क्या खुद आपकी जमीन जोतेंगे?
3: नहीं।
0: तो फिर आप लोग किस लिए डरते हैं? सरकार आपकी जमीन छीनकर दूसरों को दे देगी। अगर आपकी एकता में बल है तो कोई दूसरा आपकी जमीन पर हल नहीं चला सकेगा। सारे गुजरात के किसान आपका साथ देंगे, सारे देश के किसान आपका साथ देंगे। अरे, किसान के लिए कष्ट सहना कोई नई बात है क्या? जाड़े, गर्मी, बरसात में कौन खून पसीना एक करके फसल उगाता है? कीड़े मकौड़ों, सांप बिच्छुओं की परवाह न करके कौन उन फसलों की रखवाली करता है? अंग्रेज सरकार भला इन कष्टों से बढ़कर और क्या कष्ट दे सकती है? आप एक बार इन कष्टों को हंसकर सहने का निश्चय कर लीजिए, आपकी जीत निश्चित है।
3: ठीक है, हम सब तैयार हैं।
2: बारदोली के किसान सत्याग्रह पर सबकी आंखें लगी हुई थीं। ये गांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह के आदर्शों की परीक्षा थी, और इसमें विजय भी अहिंसा और सत्य की ही हुई। असहयोग आंदोलन, खादी प्रचार, चुनावों की व्यवस्था, सूखा, बाढ़, महामारी आदि प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत बचाव कार्य, इन सभी में सरदार पटेल के कुशल नेतृत्व और संगठन कौशल का प्रमाण मिलता रहा। और इसी तरह 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ।
4: जब हिंदवासियों ने त्याग और तप से स्वतंत्रता हासिल कर ली है,
2: सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। उनके सुयोग्य प्रशासन से विभाजन के समय की भीषण स्थिति जल्दी ही काबू में आ गई। 15 दिसंबर 1950 को बंबई में दिल के दौरे से उनका निधन हुआ। 1991 में उन्हें राष्ट्र

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत हमारे इस बेहद खास फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में समाज में अक्सर खुलकर बात नहीं की जाती, यानी व्यक्तित्व विकार या पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। अक्सर हम किसी को या किसी के अजीब से व्यवहार को देखकर या उसका गुस्सा या नखरा देखकर हम कुछ और समझने लगते हैं और ये भी नहीं समझ पाते हैं कि इसका कारण कुछ और भी हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार और हमारे सोचने का तरीका भी एक बीमारी का रूप ले सकता है? लेकिन खबर यह है आपके लिए इस कार्यक्रम में कि इस समस्या का समाधान मुमकिन है और इसमें होम्योपैथी एक बहुत ही अनूठी भूमिका निभा सकती है। होम्योपैथी केवल शारीरिक बीमारियों का इलाज नहीं करती बल्कि ये सीधे हमारे मन, भावनाओं और व्यक्तित्व पर भी काम करती है। आज इस एक घंटे के शो में हम समझेंगे कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स क्या हैं, इनके क्या लक्षण होते हैं और होम्योपैथी इसमें कैसे मदद कर सकती है। अगर आपको या आपके किसी अपने को किसी ऐसी समस्या से आप इस समय रूबरू हो रहे हैं जहां पर आपको ये एडवाइस चाहिए कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर किस तरह से होम्योपैथी से निराकरण इसका आपको मिल सकता है, तो आप इस कार्यक्रम में सही जगह पर जुड़े हैं। आप हैं एफएम रेनबो पर 102.6 पर और साथ ही साथ इस कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग भी आप सुन रहे हैं प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत, स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का नमस्कार। और आज का विषय पुनः आपको एक बार बता दें, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स एंड होम्योपैथी, व्यक्तित्व विकार और होम्योपैथी। और इस विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक हर बार की तरह एक विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर चित्रा वासु। आप एक होम्योपैथी विशेषज्ञ हैं, एमडी इन होम्योपैथिक फिलॉसफी हैं, डायरेक्टरेट ऑफ आयुष डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली में आप कार्यरत हैं। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर चित्रा आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका।
2: गुड आफ्टरनून मैम एंड थैंक यू सो मच।
1: एक बहुत ही संवेदनशील विषय आज हम चुनकर लाए हैं डॉक्टर चित्रा, और चाहते हैं कि हमारे जो श्रोता हैं जो इस तरह की किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं पर कई बार खुलकर बात नहीं कर पाते हैं, झिझकते हैं या किसी और कारण से समय पर डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते हैं किसी कंफ्यूजन के चलते, तो वो जरूर आज के कार्यक्रम से कुछ लाभ ले पाएं, आपसे अपनी समस्याएं बांट पाएं और कुछ ऐसी जानकारियां आप उन तक पहुंचा पाएं जिससे उनका जीवन थोड़ा सरल हो पाए। ये ऐसी कोशिश, ऐसी मंशा के साथ आज का ये कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। अगर आप इस विषय पर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप जुड़िए हमारे साथ, हमारी फोन लाइंस खुली हैं, हमारा व्हाट्सएप बॉक्स खुला है, तो बस इंतजार नहीं करना है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स और होम्योपैथी इस विषय पर कुछ भी जानकारी चाहिए, डॉक्टर चित्रा यहां मौजूद रहेंगी आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए। तो आप हमारे फोन नंबर्स नोट कर लीजिए, 01 1 2 3 4 2 1 0 8 0 2 3 4 2 1 0 8 2। अगर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे 9868107070 पर। तो हमें इंतजार है आपके प्रश्नों का। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम विषय को समझ लें, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की आज हम बात करने वाले हैं। क्या होते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स और कितनी तरीके के, कौन कौन से?
2: एब्सोल्युटली मैम, सो डिसऑर्डर के बारे में पता करने के पहले हमें ये देखना पड़ेगा पर्सनालिटी क्या है
1: जी,
2: फिर पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है, फिर डिसऑर्डर।
1: बिल्कुल।
2: सो पर्सनालिटी क्या है? हर इंसान को एक पर्सनालिटी है, वो बहुत रिलेटिव है। वो एक पैटर्न है, वो एक इंसान कैसी फील करता है, कैसी थिंक करता है, अपनी रिलेशनशिप कैसे बिल्डअप करता है विद अदर्स एंड विद द सोसाइटी, और एक स्टिमुलस आने वक्त कैसे वो मीनिंगफुली अंडरस्टैंड करता है, दैट द करेक्ट वर्ड इज परसेप्शन, हाउ ही

0: perceiving that stimulus, right? Meaningful अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट स्टिमुलस. सो इसके बाद अपनी इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के अनुसार देन आफ्टर दैट वो रिस्पॉन्स देता है दुनिया को या लाइफ को या लाइफ सिचुएशन को. सो दैट इज पर्सनैलिटी. एंड इफ समबडी इज शाई या कोई इंट्रोवर्ट है या स्टबर्न है या कैरिस्मैटिक है या कॉन्फिडेंट है एंड यू कांट लेबल हिम एज हैविंग सम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. These are traits. So traits, we all are having traits. I told you na, personality is something which is shaped by so many factors. क्या क्या हो सकता है? Inheritance, biological inheritance हो सकता है. अपनी temperament, अपनी neurodevelopment, family relationship, attachment, childhood experience, फिर अपनी education, culture, अपने सामाजिक like social environment. Life experience, etc. अब एक कब डिसऑर्डर बन जाते हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आज की प्रोग्राम में वी आर डीलिंग विद दैट. सो डिसऑर्डर कब होता है? वेन ये जो पैटर्न ऑफ इनर एक्सपीरियंस अंदर अंदर चल रहा है ना अपनी दुनिया में जो मैंने बोल दिया थिंकिंग प्रोसेस या फीलिंग इमोशनल रेगुलेशन, इसमें एक पैटर्न चेंज हो जाता है, लाइक
1: डिसबैलेंस समझ सकते हैं क्या?
0: Exactly.
1: कि कुछ बैलेंस बिगड़ जाता है.
0: और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वो एक ही दिन के लिए या एक ही सिचुएशन पर नहीं, इट शुड बी परसिस्टेंट, परवेसिव होना चाहिए. मतलब अक्रॉस ऑल द सिचुएशन, हर सिचुएशन में वो दिखाएंगे एंड मैल अडेप्टिव होना चाहिए. नॉर्मली वी do adapt to the tough situations normally. But वो mal adaptive होकर अपनी अपनी काम पर या अपनी day to day activities में problem create करने वक्त ये personality disorder बन जाता है. So the crucial principle है ये मैम. Personality disorder मतलब ये नहीं है bad personality और difficult character और moral weakness. That's a pattern of psychological functioning. वो ये
1: जी. और कितनी तरह के होते हैं, कि क्या हम इसको टाइप्स में भी कैटेगराइज कर सकते हैं?
0: एग्जैक्टली, एज पर द लिटरेचर वी आर यूजिंग DSM-5-TR डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिक मैनुअल 5th edition टेक्स्ट रिविजन दैट इज पब्लिश बाय अमेरिकन साइकेट्रिक फाउंडेशन. सो सारा मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स आर यूजिंग दैट गाइडलाइंस. एंड उसके अनुसार देर आर तीन क्लस्टर्स हैं. सो मैं इन अ सिंपल वे फॉर आवर पब ऑडियंस आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. सो पहले आता है एक पैरानॉइड पैटर्न. सुना होगा आपने पैरानॉइड. पता है वो कोर थीम क्या है? वो पेशेंट आकर बोलेंगे मैं किसी को विश्वास नहीं करता हूँ.
1: अच्छा,
0: आई कैनॉट ट्रस्ट यू. उनको क्या लगता है जो सामने कोई भी आ रहा है दे विल डिसीव मी, धोखा देंगे. सो दैट इज मैनिपुलेटिव है. ऐसे सोचकर पैरानॉइड पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जाएंगे. और द सेकेंड वन इज दैट स्किट्सॉइड पैटर्न. वो पता है क्या बोलेंगे? आई डोंट नीड क्लोजनेस, मुझे किसी के साथ क्लोज रिलेशनशिप की आवश्यकता नहीं है. बट हमें ये पता करना है उसके पीछे कहानी भी होगा, व्हाई ही हैज और शी हैज बिकम लाइक दैट. सो वो क्या अपने आप को डिटैच करेंगे, एक सोशली विड्रॉ कर अपनी दुनिया चलाता है. दैट इज स्किट्सॉइड. एंड देन स्किट्सोटाइपल है मैम. स्किट्सोटाइपल में क्या होता है, वो बोलता है मेरी दुनिया बिल्कुल अलग है, माई रियलिटी इज क्वाइट डिफरेंट. और मेरे को पता है कुछ चीज़ होने वक्त उसका करेक्ट मीनिंग क्या है, कुछ मैजिकल थिंकिंग होता है. वो परसीव अलग रीदी में करता है अपनी दुनिया को, ऐसे बनाकर रखे हुए. एंड वो सबको जाकर बोलता भी माई एक्सपीरियंस अबाउट दैट थिंग इज क्वाइट डिफरेंट. दैट इज स्किट्सोटाइपल.
1: जी
0: और भी है.
1: जी बताएं.
0: हाँ, अनदर टाइप इज एंटी सोशल.
1: ओके,
0: दैट इज ये जो पहले मैंने तीन बोल दिया ना, पैरानॉइड स्किट्सॉइड एंड स्किट्सोटाइपल, वो क्लस्टर ए में आएंगे, लाइक ऑड और एक्सेंट्रिक पैटर्न में. और द नेक्स्ट फोर टाइप्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन विच विल बी कमिंग अंडर क्लस्टर बी. वो थोड़ी ड्रामेटिक इमोशनल एंड इरेटिक पैटर्न में आएंगे. उसमें फर्स्ट वन इज एंटी सोशल. वो पता है क्या बोलते हैं,

0: आई एम गेटिंग बेनिफिट्स, मुझे फ़ायदा मिलता है रूल्स तोड़ने वक्त, मेरे को कोई टेंशन नहीं दूसरों की रूल्स में वायलेट, राइट्स में वायलेट कर रहा है या नहीं, आई डोंट बोदर, सो दे आर गेटिंग बेनिफिट्स। सो
1: तो दे डोंट फॉलो द सोशल नॉर्म्स।
0: हाँ, दैट इज़ द थिंग, यू शुड डिफ्रेंशिएट वेदर दैट पर्सन इज हैविंग डिसलाइक टुवर्ड्स सोसाइटी। कुछ लोग सामाजिक सिस्टम से डिसलाइक है, इट्स नॉट अबाउट एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, वो उनको अच्छा लगता है इफ़ आई एम ब्रेकिंग द रूल मुझे बेनिफिट मिल रहा है, दैट इज एंटी सोशल। सो मैम द नेक्स्ट टाइप इज बॉर्डर लाइन, उनका कोर थीम यही है मुझे छोड़ना मत क्योंकि मुझे अबैंडनमेंट की इश्यूज है, दैट इज देयर कोर थीम। सो वो क्या करेंगे, उनको बिल्कुल इंटेंस, दिस इज लिटिल बिट डेंजरस ऑल्सो बिकॉज इसमें स्पेक्ट्रम होता है, लाइक एक साइड में क्रॉनिक एम्प्टीनेस है, एक शून्यता है, अदर साइड में एक्सेसिव इम्पल्सिवनेस है, एग्रेशन है, सो दिस इज लिटिल बिट डेंजरस, प्रोवाइडेड यू हैव टू, इतनी अच्छे से साइकेट्रिक असेसमेंट करने की आवश्यकता भी है दिस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में। देन अनदर थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स नार्सिसिस्टिक। आजकल जो सोशल मीडिया में इतनी वो वर्ड इज़ वेरी कॉमन है ना, एवरीबडी इज़ यूजिंग दैट वर्ड वेरी फ्रिक्वेंटली। सो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी पैथोलॉजी में क्या है, वो ऐसे बोलेंगे कोर थीम है ये, दैट पर्सन विल से या बिहेव इन दैट वे, मेरी इम्पॉर्टेंस को रिकग्नाइज कीजिए, मुझे एडमिरेशन चाहिए, if somebody is criticizing me he can't tolerate,
1: okay,
0: that is narcissistic personality pathology, but at the same time main apathetic rahunga, I won't show empathy to others, that is narcissistic personality disorders. Then another cluster b mein aayenge histrionic, core theme hai please notice me, mujhe notice kijiye, I need emotional recognition, that is histrionic, attention seekers, ठीक है। नाउ द लास्ट वेराइटी क्लस्टर सी, उसमें अवॉइडेंट, वो कोर थीम है ये, मुझे क्लोजनेस चाहिए बट आई एम अफ्रेड दैट यू विल रिजेक्ट मी, दैट इज अवॉइडेंट, वो अवॉइड करेंगे हर सिचुएशन को, मगर मैं हमेशा आई मीन आई वॉन्ट टू टेल यू, ये सब प्रोजेक्शन के पीछे कुछ कहानी भी है, दैट विल कम, वी विल कम टू दैट थिंग ब्यूटिफुली। देन द अनदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज डिपेंडेंट, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में वो आकर बोलेंगे आई नीड यू बिकॉज आई डोंट फील केपेबल ऑफ बींग अलोन, मुझे अकेला अच्छा नहीं लगता है, मुझे कुछ डिसीजन अकेले नहीं कर पाएंगे, आई नीड समवन, दैट इज डिपेंडेंट। एंड द लास्ट वन इज OCPD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, नॉट OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नहीं है, दैट इज समथिंग एल्स, दिस इज OCPD। वो ऐसे सोचते हैं आई फॉलो, सिर्फ मैं फॉलो करती हूँ रूल, और मैं कुछ इवेंट कुछ होने वक्त आई माई सेल्फ हैव टू डू इट, अगर दूसरों ने कर दिया तो वो खराब हो जाएंगे या क्या हो जाएंगे।
1: ओके,
0: सो दैट इज द थिंग।
1: तो काफी विस्तार से आपने सारी क्लस्टर्स में जितने पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आते हैं उनको, उनके बारे में बताया। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं इन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बारे में, और आगे हम बात करेंगे मैडम से कि किस तरह से होम्योपैथी इसमें मदद कर सकती है, क्योंकि आप एक होम्योपैथी विशेषज्ञ भी हैं, तो ज़रूर अपने प्रश्न हम तक भेजिए। और आपको फ़ोन नंबर्स हमने बता दिए हैं, पुनः बता देते हैं 2342-1080, 2342-1082 अगर दिल्ली से बाहर से आप हमें फ़ोन लगाएंगे तो 011 ज़रूर लगाइए, और व्हाट्सअप करने के लिए 9868107070 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आते हैं, एक प्यारा सा गीत सुनेंगे, और आज के सारे गीत जो हैं डॉक्टर चित्रा की चॉइस के हैं, तो आप भी इंजॉय करिए, हम भी इंजॉय कर रहे हैं ये गीत, पहला गीत आप सबकी नज़र।

0: आप हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में और आज हम बात कर रहे हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स और होम्योपैथी पर, व्यक्तित्व विकार और होम्योपैथी पर। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर साहब ने बहुत सारे जो अलग अलग इसके क्लस्टर्स हैं या उसमें जो डिसऑर्डर्स आते हैं उनके बारे में आपको जानकारी दी। अब हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं ये किस कारण से हो जाते हैं, क्या इसके पीछे कोई अनुवांशिक या जेनेटिक कॉज होता है या किसी को कोई एक्सपीरियंस बचपन में ऐसा रहा हो जो उसमें एवरलास्टिंग उसने दिमाग में इफेक्ट डाला हो जो इस डिसऑर्डर को जन्म दे जिसने दिया हो, क्या रीजन होता है?
1: यस शालिनी मैम, अगर मैं डेफिनेट आंसर बोलना चाहती तो देयर इज नो सिंगल कॉज, बट आपको पता है पर्सनालिटी हमेशा कैसी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट, पर्सनालिटी की नॉट अबाउट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डेवलपमेंट कैसे होता है, लाइक इट्स अ कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन है क्या क्या चीज की, जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी, अपनी टेम्परमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट, इमोशनल रेगुलेशन, अटैचमेंट एंड रिलेशनशिप, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस एंड एडोलेसेंट एक्सपीरियंस, ट्रॉमा, कुछ अब्यूज है ना, फैमिली एंड सोशल एनवायरमेंट,
0: कल्चर,
1: बिल्कुल बिल्कुल। एंड हम ये नहीं बोल सकते हर ट्रॉमा सर्वाइवर को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, या ऐसे नहीं बोल सकते दैट एवरी टाइम ट्रॉमा होने के पीछे के बाद एज ए कॉन्सिक्वेंस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकते हैं, नहीं, वी कांट से लाइक दैट। एंड हॉर्मोन्स एंड सेक्स स्ट्रेस सिस्टम्स कैन इन्फ्लुएंस योर इमोशनल रेगुलेशन एंड बिहेवियर ऑल्सो, बट ऐसे नहीं बोल सकते एक पर्टिकुलर हॉर्मोन एक्ट कर या उसके इम्बैलेंस से पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आ गया, नो।

0: ऐसी कोई स्टडीज और ऐसी कोई रिजल्ट कुछ नहीं आया है. सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन दिस इज अ बायो साइको सोशल डेवलपमेंटल फैक्टर पर डिपेंड करता है, राइट?
1: तो बहुत सारी चीजें हैं
0: डेफिनेटली
1: जी. तो किस तरह से इसको समझा जाता है और किस तरह से डील किया जाता है और होम्योपैथी किस तरह से उसमें कारगर होती है, ये सारी बातें हम आपसे जरूर जानेंगे. लेकिन एक मैसेज आया है, बहुत सारे मैसेज हैं, उसमें से एक मैसेज हमें देवदत्त पारसोलिया जी ने लिखा है प्रताप विहार गाजियाबाद से. नमस्कार टू आरजे डॉक्टर्स एंड योर होल टीम, वेरी स्वीट वॉइस एंड नाइस टॉपिक, सुपर प्रोग्राम, एक्सलेंट प्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच. और एक ये मैसेज है वसुधा जी का, कहाँ से लिखा ये तो नहीं पता, कि क्या ADHD स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होम्योपैथी से मैनेज हो सकता है, तो ये बताएं.
0: यस, इसके लिए पहले वो पेशेंट से बात करना, आई मीन ऑल द कंडीशंस शुड बी एग्जामिन, अच्छे से केस अटेंड करना पड़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि होम्योपैथी ट्राइज टू हील द पीपल पर्सन. वो अपनी नजरिया बदलने के लिए, लाइक यू कांट चेंज, वैसे तो दिस इज नॉट कमिंग अंडर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बट स्टिल आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन, यू कैन गो टू होम्योपैथिक डॉक्टर.
1: ओके,
0: एंड
1: ठीक है. एक हमारे श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं. हेलो,
2: नमस्कार
1: जी. नमस्कार, अपना नाम बताइए.
2: उत्तराखंड से बोल रहा हूँ.
1: जी जी, बताइए क्या पूछना है.
2: हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, जो डिसऑर्डर है ना
1: जी,
2: इसका कम दिमाग से संबंध है, तो उसके लिए दवाई बताइए होम्योपैथी में. अगर जैसे किसी का दिमाग, जैसे कोई कुछ उच्च लेवल का होता है, किसी का जैसे कोई कंपनी में काम करता है, तो जो कुछ उच्च लेवल का आदमी होता है तो उसको ऊंचा पद दिया जाता है, और जो छोटा लेवल का आदमी होता है या उसका दिमाग से कुछ कम है, उसको कम वाला काम दिया जाता है, जिम्मेदारी से काम दिया जाता है. तो इसके बारे में बताइए कि जो डिसऑर्डर है उसका कम दिमाग से संबंध है, तो उसका दवाई कुछ होता है वो तो बताइए प्लीज.
1: दवाई तो रघुवीर जी हम इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बताते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उनको देखना होता है. और मोर ओवर जैसा डॉक्टर साहब ने पहले भी बताया था कि ये कस्टमाइज्ड होती है मेडिसिन होम्योपैथी की. तो मैम बताएं किस तरह से मेडिसिन दी जाती है, थोड़ा सा रघुवीर जी को भी पता चले कि होम्योपैथी में एक्चुअली मेडिसिन किस तरह से दी जाती है.
0: रघुवीर जी नमस्ते. मैं बोलना चाहती हूँ, मुझे पता है ये बहुत पेनफुल वाला सिचुएशन है, डिस्ट्रेस ज़्यादा है, बट मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ आप एक डॉक्टर के पास, होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाना है, अपने सिम्टम्स, अपने ये सब एक्सपीरियंसेस आपको बोलना है, क्योंकि वो एक्सपीरियंसेस सुनने के बाद आपकी दुनिया से मैं या किसी और डॉक्टर को ट्रैवल करना पड़ेगा आपकी मेडिसिन एक्सप्लोर करने के लिए.
1: जी,
0: सो दैट विजिट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
1: बहुत सारी चीजें कंसीडर की जाती हैं और तब दवाई प्रिस्क्राइब की जाती है. रोहिणी से राज रानी जी हमें लिख रही हैं, इनकी उम्र 68 इयर्स है. इन्होंने लिखा है, वैसे अपनी वाइफ के लिए लिखा है, पता नहीं, लिखा है कि मेरी मिसेस को कई बार हाथ धोने की और उनको ये फील होता है कि उनका हाथ साफ नहीं हुआ है, इस तरह की कोई इनको डिसऑर्डर है, और होम्योपैथी में क्या इसका इलाज है और कैसे कराया जा सकता है. तो ये OCD या कुछ रहता है मैम?
0: यस मैम, दिस कंडीशन इज आज की टॉपिक से कोई रिलेशन आई है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड उसमें OCPD, मैंने पहले भी क्लैरिफाई किया था, इट्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, और अभी ये जो सिम्टम बोल रहे हैं इट्स OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, दैट इज रियली डिफरेंट. वो ऑब्सेशन एंड कंपल्शन, एंड दे विल डू सर्टेन प्रैक्टिसेस आल्सो इन ऑर्डर टू अपनी ऑब्सेशन को वो कंपल्शन रूप में आकर वो करेंगे. डेफिनेटली मेडिसिन है, यू कैन कंसल्ट द डॉक्टर.
1: चलिए, ये अच्छी बात है कि मेडिसिन है होम्योपैथी में, और आप दिखा सकते हैं किसी स्पेशलिस्ट को जाकर. और आपने एक जिक्र किया था जब आप बता रहे थे कि कितनी तरह के डिसऑर्डर्स हैं, उसमें एक बॉर्डर लाइन और एक नार्सिसिस्ट की भी आपने बात की थी. तो ये एक प्रश्न है हमारे पास, लिखने वाले का नाम अभी मुझे दिख नहीं रहा है, पर उन्होंने लिखा है कि इज देयर अ क्योर फॉर नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, हाउ टू हेल्प द पर्सन. तो एक तो हम इसको समझ लें, वो समझा दिया आपने नार्सिसिस्ट क्या पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, पर इसको किस तरह से होम्योपैथी में डील किया जाता है, किस तरह से आप इसमें मेडिसिन तक पहुंचते हैं.
0: यस, अभी ड्यूरिंग आवर प्रीवियस डिस्कशन मैंने ये बोल दिया ना, दिस इज वेरी नाउअडेज वेरी कॉमन है ना. एंड मैं पहले मेरी एक डिस्क्लेमर है मैम, मैं किसी को लेबल करना नहीं चाहती हूँ, किसी को वो पर्टिकुलर पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, बिकॉज है ना, एंड किसी की हार्मफुल बिहेवियर को मैं एक्सक्यूज भी नहीं दे रही हूँ, ठीक है, दैट इज माई डिस्क्लेमर. बट स्टिल कोर थीम नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की यही है, द पेशेंट विल कम एंड से आई डिजर्व स्पेशल ट्रीटमेंट.

0: पर्सन को हर जगह स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए. सो बट इसमें एक यू हैव टू डिस्टिंक्ट वन, यू हैव टू डिफ्रेंशिएट वन थिंग. कुछ लोग बहुत कॉन्फिडेंट होता है, बट दैट इज़ नॉट नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. सो बट द प्रॉब्लम इज दैट द विक्टिम्स है ना, क्योंकि इफ दे आर गेटिंग इनटू सम रिलेशनशिप में विक्टिम्स विल बी सफरिंग. सो पता है कैसे आइडेंटिफाई करना है, दैट इज योर क्वेश्चन, राइट? आई डिजर्व स्पेशल. व्हेन यू टॉक टू द पर्सन, हमें समझ में आता है ही इज मूविंग टुवर्ड्स दैट पर्सनैलिटी पैथोलॉजी. एंड वो पता है आकर हमें बोलेंगे, जो लोग हैं ना हम मेरे बारे में समझते ना ये, दे डोंट अप्रिशिएट मी, मेरी टैलेंट को अप्रिशिएट नहीं करता है, आई एम नॉट गेटिंग वैलिडेशन. एंड मुझे ये क्रिटिसिज्म भी पसंद है, यू नो द बेसिक थिंग वही है, दे कांट टॉलरेट क्रिटिसिज्म. So he feels that particular personality is feeling that my entire self-worth ke upar attack ho raha hai. So naturally this may trigger kya kya ho sakta hai, anger ho sakta hai, shame ho sakta hai, withdrawal hota hai, retaliation ho sakta hai. But isme pata hai ma'am, you can't label a person that you are narcissistic. Instead case attend karne waqt you can collect the symptoms, like what happens इफ somebody आपको क्रिटिसाइज करना है तो आपके अंदर क्या चलता है, व्हाट डू यू थिंक इन दैट वे. और आपको कोई जिंदगी में फेलियर की सिचुएशन आने वक्त व्हाट यू आर थिंकिंग और हाउ यू आर कॉपिंग योरसेल्फ टू दैट सिचुएशन. और आपको रिकग्निशन नहीं मिलने वक्त क्या हो सकता है. एंड आई टोल्ड यू ना द अदर पर्सन, आई एम सेइंग अबाउट द विक्टिम्स ऑफ यू नो
1: जो उनके संपर्क में आते हैं,
0: साइको कम्युनिकेशन इज वेरी मच नीडेड. सेटिंग बाउंड्रीज सेटअप करना है. एंड अगर इवन इफ यू आर लविंग समवन इन दैट वे एंड यू डोंट नीड टू टॉलरेट हार्मफुल बिहेवियर, यू हैव टू सेट द बाउंड्री. एंड दैट डजंट मीन दैट यू आर डिनाइंग कंपैशन, आप डिनाई नहीं कर रहे हैं. सो
1: क्योंकि इसको ये जो आप बता रहे हैं आज वो थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा टिकलिश, थोड़ा सा सेंसिटिव आज का टॉपिक है और इतना आसान नहीं है समझना. कई बार इसके लक्षण भी ऐसे होते हैं जो जैसा आपने बताया है कि जरूरी नहीं है कि ये ओवर, अगर वो कॉन्फिडेंट है तो वो नार्सिसिस्ट है, मतलब डिफरेंस और बॉर्डर लाइन
0: काफी. आईसी वाला पर्सनैलिटी पैथोलॉजी डील करने वक्त ना, यू नो व्हाट शुड बी आवर गोल्स, उनको है ना सेल्फ अंडरस्टैंडिंग करवाना है, इम्प्रूव करना है अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड ऑल. एंड अपनी इमोशनल रेगुलेशन को यू हैव टू यू नो समझाना पड़ेगा. हेल्दियर रिलेशनशिप की उससे क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट मिलेंगे ये सब समझाना पड़ेगा. अपनी सेल्फ एस्टीम को, एस्टीम के बारे में समझाना पड़ेगा. एम्पति शो करना है.
1: बहुत सारी चीजों को अभी हमें समझना बाकी है, लेकिन हमारे एक श्रोता हैं काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उत्तराखंड से रघुवीर ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं. हेलो,
2: नमस्ते
1: जी. नमस्कार जी.
2: और डॉक्टर मैम को भी नमस्ते.
0: नमस्ते जी.
2: मैम मेरे दो सवाल हैं. एक तो मैं ज्यादा सोचता हूँ, मतलब जैसा कोई चीज किसी को कुछ समझाओ या कुछ हमारे मतलब वो ना सुने या कुछ, तो उसमें ज्यादा सोचता हूँ उसके बारे में. कोई किसी को कुछ डांट दिया है जैसे अपने बच्चों को या कुछ ना बोले तो फिर उनका नुकसान होता है, मतलब कुछ भी चीज या कोई चीज के बारे में कोई जिसको कुछ समझाओ या कोई हमारा कोई गलत करे तो मैं अगर उसको वो ना हमारा ना माने या कुछ भी करे तो मेरे को बहुत गुस्सा आ जाता है उसमें. तो मैं सोचता हूँ मैंने उसको तो बेकार ही बोला,
1: बाद में इनको लगता है कि बेकार बोला है ना.
2: हाँ हाँ हाँ.
1: जी, लेकिन जल्दी से गुस्सा आ जाता है.
2: हाँ, और ना बोले तो चुपचाप रहे तो ओ, तो उनका भी नुकसान होगा फिर हमारा भी नुकसान होगा. ये दैनिक जीवन में ना जैसे बच्चों को हुआ या कोई परिवार में या किसी बाहर वाले को हमारे साथ धोखा कर रहा है या हमको उसने नुकसान कर दिया और उसको कुछ समझाओ बोलो और ना माने तो फिर मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है.
1: जी,
2: फिर मैं सोचता हूँ मैंने भी तो बेकार ही बोला, उसको नहीं बोलना था.
1: जी बिल्कुल ऐसा कई बार हम लोगों के सबके साथ होता है. पर क्या ये एक बीमारी की श्रेणी में आता है क्या डॉक्टर चित्रा, या इनको मेडिकेशन की जरूरत है?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं है. इसमें ये होता है, एक स्टिमुलस या एक सिचुएशन आने वक्त दैट पर्सन एक रिएक्शन देता है, तुरंत ऑटोमेटिक रिएक्शन देता है. ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस और क्या मैं सही बोल रहा है. इसलिए आई एम सेइंग ना, दिस इज द स्कोप ऑफ होम्योपैथी. एक स्टिमुलस आने वक्त आपको सोचना है, आपकी अवेयरनेस को एक्टिवेट करना है, आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है, अपनी चॉइसेस बहुत सारा कॉन्सिक्वेंस

0: उसके बारे में सोचकर वेदर में बात करना है इस चीज पर, ये सब पहले विद इन दैट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड या 5 मिनट सबको सोचना है,
1: जी
0: देन यू हैव टू गिव द रिस्पॉन्स।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ पे मुझे भी एक बात तो पूछनी है कि ये दो अलग अलग शब्द होते हैं, एक होता है रिएक्ट करना और एक होता है रिस्पॉन्ड करना, और इन चीजों को बहुत, इन दोनों शब्दों को बहुत बार बोला जाता है कि आपको रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। प्लीज एक्सप्लेन द डिफरेंस।
0: एग्जैक्टली, प्रायर टू दैट आई हैव टू से यू, आई हैव टू एक्सप्लेन यू व्हाट डू यू मीन बाई बिहेवियर साइकोलॉजिकली। एंड बिहेवियर इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस। आई एम रिपीटिंग, बिहेवियर ऑफ द पर्सन टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब एक्सटर्नल स्टिमुलस हो सकता है या इंटरनल स्टिमुलस हो सकता है, कोई भी लाइफ सिचुएशन। आपको पता है जिंदगी में बहुत ऐसी सिचुएशंस आते हैं लाइक दैट कैन, लाइफ कैन थ्रो डिफरेंट सिचुएशंस टू यू, दैट एनीथिंग कैन बिकम स्टिमुलस। सो स्टिमुलस आने वक्त यू हैव टू गिव रिस्पॉन्स, दैट एबिलिटी को हम बोलते हैं बिहेवियर ऑफ ए ह्यूमन बींग। ओके, सो द डेफिनेशन में यू हैव टू रिस्पॉन्ड, यू डोंट नीड टू गिव रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन इज अ नेगेटिव टर्म। रिएक्शन में यू आर नॉट डूइंग रिफ्लेक्शन अपॉन दैट थिंग, आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचता है।
1: जो इमीडिएट अगर आप कुछ चीज पे रिएक्ट करते, दैट इज रिएक्शन, कि आप सोच ही नहीं रहे हो। तो शायद मुझे लगता है रघुवीर जी अगर सुन रहे हो हमारे प्रोग्राम में, तो शायद ये इसी चीज को जानना चाह रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है हम ज्यादा सोचते नहीं है, हम इमीडिएट बोल देते हैं या रिएक्ट करते हैं,
0: ऑटोमेटिक रिएक्शन,
1: और बाद में फील होता है कि ये रिएक्शन थोड़ा ओवर था।
0: हाँ, सो ही शुड अंडरस्टैंड दैट ऐसे हो सकता है दैट आई विल फील बैड लेटर, मुझे ही दुख होगा, इसलिए मैं थोड़ी सी पहले इसके रिफ्लेक्शन कर रही हूँ, मतलब कर रहा हूँ, लाइक सॉरी।
1: चलिए यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, एक प्यारा सा गीत सुनना है हमें जो आपकी पसंद का है, और श्रोताओं से गुजारिश भी करना है कि आप अगर कुछ पूछना चाहें तो फोन कीजिए, रुकिए नहीं, झिझकिए नहीं, क्योंकि डॉक्टर चित्रा हमारे साथ रहेंगी। रेडियो डॉक्टर जब समाप्त हो जाएगा तो आपके प्रश्न हम शामिल नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज आप कॉल करिए हमारे फोन नंबर्स पर या मैसेज करिए हमारे मैसेज बॉक्स पर।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी हाँ, आप हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में विशेष सब्जेक्ट के साथ। आज हम आए हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स एंड होम्योपैथी पर बात हो रही है। काफ़ी सारी बातें डॉक्टर और मैम हमको बता चुकी हैं, लेकिन बहुत सारी बातें अभी जानना बाकी हैं। और एक श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो।
2: हेलो
1: जी, नमस्कार।
2: हाँ, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही बोल रहा हूँ।
1: जी राजेंद्र जी, प्रश्न पूछे।
2: जी, पहले तो शालिनी मैम को शालिनता से ही नमस्कार।
1: जी नमस्कार, स्वागत।
2: और डॉक्टर साहिबा को भी नमस्कार।
3: थैंक यू, नमस्कार।
2: जी, मेरे चार सवाल है मैम, प्लीज वन बाई वन। अब पहला सवाल मेरा ये है कि जब मैं किसी से वफादारी, नमक हलाली, नेकी बेहतरी भलाई से पेश आता हूँ और बदले में मुझे कोई मतलब हर्ट करे या पिंच करे, टॉर्चर करे, तो मैं फौरन हाइपर हो जाता, मुझे गुस्सा आता है, अपना वो कंट्रोल नहीं कर पाता, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। दूसरा सवाल मेरा ये कि जब भी मेरे सामने कोई मेरे से ज्यादा योग्य मतलब हैंडसम या टैलेंटेड इंसान आता है तो उस वक्त मैं थोड़ा हाइटेड हो जाता हूँ, मतलब अपनी बात जो है ना उसके सामने मैं आराम से रख नहीं पाता। जैसे शालिनी मैम, मेरे जैसे डॉक्टर शुरू किया हमने, तो शालिनी मैम की वजह से मेरी हाइड्रेशन दूर हुई, वरना जब मैं फोन कर रहा था मेरे हाथ पैर सब पर कांपते थे, हाथ पैर से पसीने आ जाते थे, तो ये मेरी हाइड्रेशन शालिनी मैम ने ही दूर की। और तीसरा सवाल मेरा ये है कि ये वॉइस जो होती है हमारी, इसको मेलोडियस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और चौथा और आखिरी सवाल जो है वो ये है कि जैसे मैंने कहा कि मुझे गुस्सा आया या मेरे टेंशन परेशानी में हूँ, मुझे किसी ने हर्ट या पिंच किया और मेरे सामने बेचारा कोई भोला भाला सीधा साधा फरियादी भी आ गया या चक भी, तो उस वक्त पता नहीं क्या होता कि मैं कंट्रोल कर नहीं पाता, तो मैं वो गुस्सा मेरा उस पर निकल जाता है, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज गाइड करें।
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो विशेष हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, पर अच्छी बात है कि आप खुल के बोल रहे हैं और बता रहे हैं राजेंद्र जी। यहाँ पर डॉक्टर साहब क्या एडवाइस रहेगी, इनकी सब प्रश्न अलग अलग तरीके के हैं।
3: अब जो राजेंद्र जी ने जो प्रोजेक्ट कर दिया जो सिम्टम्स है ना, आई एम श्योर उसके पीछे कुछ और है। सो अगर सपोज केस टेकिंग में सब खुलकर आएंगे, लाइक फॉर एग्जांपल मैं बोलना चाहती हूँ बिकॉज ही सेड सो, ये जो बात कर रहे गुजार रहे लाइक ऑन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, उसके पीछे कभी ऐसी सिचुएशन हो सकता है, लाइक सी आई एम नॉट श्योर बिकॉज आई हैवंट मेट हिम पर्सनली, आई हैवंट टेकन द केस, सो दैट इज माय डिस्क्लेमर, बट स्टिल ऐसी पेशेंट्स के साथ ऐसी सिचुएशन पर या ऐसी उसमें ये हो सकता है इसके पीछे लाइक कुछ पहले कुछ पास्ट एक्सपीरियंस या क्रॉनिक एम्प्टीनेस हो सकता है, मगर उसके भी पीछे कहानी अलग है, वो पर्टिकुलर पर्सन की दुनिया अलग है मैम। सो उससे तो ट्रैवल करना पड़ेगा ना टू एक्सप्लोर द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन एंड इंडिविजुएशन।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत सारी बातें हमें अभी करनी है क्योंकि कार्यक्रम में बहुत सारी चीज़ों को अभी समेटना है। तो ये मुझे बताइए कि एक बात की जाती है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात होती है, जब हम होम्योपैथी की बात करते हैं और मानसिक रोगों की बात करते हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, ये क्या है और इसका क्या महत्व है, ये बताइए।
3: यस मैम, व्हेन वी स्पीक अबाउट पर्सनालिटी डिसऑर्डर वी शुड रिमेंबर दैट

0: डायग्नोसिस बस अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पैटर्न. इस जो भी कैटेगरीज मैंने बोल दिया वो एक पैटर्न है. इट्स नॉट अबाउट द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ए ह्यूमन बींग. एक इंसान की पूरी डिस्क्रिप्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना. सो हियर इन दिस एस्पेक्ट होम्योपैथी हैज़ रोल. मतलब हमें ये पूछ सकते व्हाट डज रिजेक्शन, आप आपकी लाइफ में इफ समबडी इज रिजेक्टिंग यू हाउ डू यू टेक इट अप, है ना. और कोई अबैंडन करने वक्त आपको क्या लगता है, और कोई आपको इग्नोर करने वक्त आपको क्या लगता है. सो मेनी थिंग्स लाइक यू कैन आस्क. देन आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट एवरी टाइम आई यूज टू स्ट्रेस दिस थिंग, इंडिविजुएशन. इंडिविजुएशन मतलब ए है हाउ अ ह्यूमन बींग इज बिकमिंग डिफरेंट फ्रॉम अनदर ह्यूमन बींग. सो वो इंडिविजुएशन इज द ट्रेट ऑफ ए ह्यूमन बींग. वो अलग कैसे बन जाता है वो पता करने की प्रोसेस है इंडिविजुअलाइजेशन आफ्टर टेकिंग द केस. क्योंकि वो केस अटेंड करने के बाद, केस एनालिसिस करने के बाद हमें पता चल जाता है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ दैट पेशेंट. बेस्ड ऑन दैट थिंग वी कैन प्रिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी विच इज डिपेंडिंग अपॉन द टोटैलिटी ऑफ द सिम्टम्स. उसमें ऐसी नहीं सिर्फ ओनली मेंटल सिम्टम, बिकॉज समटाइम्स इट इज हैविंग एसोसिएशन विद योर फिजिकल सिम्टम्स ऑल्सो, है ना. यू हैव टू कलेक्ट ऑल द सिम्टम्स एंड वही टोटैलिटी के ऊपर आपको प्रिस्क्राइब करना है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. एंड आई ऑलवेज यूज अ स्पेसिफिक टर्म फॉर दैट थिंग, फिनोमिनोलॉजिकली इंट्रिकेट स्पेसिफिक रेमेडी फॉर दैट पर्टिकुलर केस.
1: ओके, तो ये हर केस में अलग होगी.
0: अलग हो सकता है.
1: okay.
0: हो सकता है ना, अलग होगा,
1: अलग ही होगा. अच्छा ये बताइए, जो एलोपैथी की जो हम बात करते हैं, जहाँ पर हम ट्रीटमेंट करते हैं एलोपैथी विधा से, और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो करते हैं, वो किस तरह से अलग अलग है? इसमें अलग दृष्टिकोण क्या है जो होम्योपैथी का है?
0: डेफिनेटली क्राइसिस मैनेजमेंट, लाइक आफ्टर डूइंग द साइकेट्रिक असेसमेंट, इफ इट नीड्स टू बी रेफर्ड वी हैव टू रेफर द केसेस टू द साइकेट्रिस्ट, क्योंकि दे आर हैविंग सो मच साइंटिफिकली है ना प्रूवन एविडेंसेज है और मेथड्स है ना टू मैनेज द क्राइसिस. बिकॉज मैम एट टाइम्स सर्टन सिचुएशंस आर व्हेन इट इज गोइंग बियॉन्ड आवर कंट्रोल, लाइक वायलेंस, सब्सटेंस अब्यूज या सुसाइडल रिस्क. सो एट दैट टाइम इट्स अबाउट द लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बींग, यू हैव टू रेफर टू. बिकॉज होम्योपैथी की स्कोप अलग है इसमें. आई डोंट वॉन्ट टू या एनी अदर होम्योपैथिक डॉक्टर्स आई डोंट थिंक दे आर ट्राइंग टू चेंज द पर्सनैलिटी. नहीं, वी आर ट्राइंग टू इंस्टिल ए क्वालिटेटिव ग्रोथ इन साइड. वो इंसान के अंदर एक क्वालिटेटिव ग्रोथ इंस्टिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, दैट इज हीलिंग एक्चुअली.
1: तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप का जो केस है वो होम्योपैथी डॉक्टर को लगे कि नहीं एलोपैथी से ही ट्रीट किया जा सकता है, तो वो रेफर किया जाता हो.
0: बिल्कुल, डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द सिम्टम. एंड आई वांट टू टेल यू समथिंग. सी एक सपोज एक पर्सन इज हाईली डिपेंडेंट अपॉन वन पर्सन. सो आफ्टर प्रिस्क्राइबिंग द होम्योपैथिक मेडिसिन, आफ्टर कलेक्टिंग द सिम्टम, प्रिस्क्राइब करने के बाद एक हेल्दी और ऑटोनोमी की तरफ ले सकते हैं. लाइक कोई डिस्ट्रक्टिव एंगर बोल रहे थे ना सो मेनी पीपल, फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव एंगर से हम कंस्ट्रक्टिव एक्सप्रेशन की तरफ लेकर जा सकता है. एक्सट्रीम फियर ऑफ रिजेक्शन से आपको ग्रेटर इमोशनल सिक्योरिटी की सिचुएशन तक ले सकता है. दिस इज व्हाट आई मीन एक्चुअली.
1: जी जी, बहुत सारे मैसेज इस बीच हमारे पास आ गए हैं. और ये पूनम जी लिख रही हैं नांगलोई से, गुड आफ्टरनून मैम, नाइस प्रोग्राम ऑन यूजफुल टॉपिक. लाइफ इज फुल ऑफ इमोशंस एंड वी हैव टू फेस मेनी सिचुएशंस, वी मस्ट फेस पॉजिटिवली. थैंक्स अ लॉट. थैंक्स अ लॉट आपको भी पूनम जी कि आप हमारे कार्यक्रम को सुन रही हैं, अप्रिशिएट कर रही हैं. और हमारे एक मैसेज श्याम मित्तल जी ने लिखा है रोहिणी से, उन्होंने लिखा है कि क्वेश्चन ऑफ श्री रघुवीर सिंह जी वॉज वेरी यूजफुल फॉर अदर्स एंड रिप्लाइड वेरी वेल बाय द डॉक्टर. आपकी सॉन्ग चॉइस भी उनको बहुत पसंद आ रही है. और साथ ही साथ एक इनका एक प्रश्न भी है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अननोन भी मेरे सामने से निकल जाए. कई बार होता है हम क्रॉस करते हैं पर वो मुझे ऐसे बिहेव करे मेरे साथ कि जैसे कुछ मतलब ही नहीं है या नॉट स्पीकिंग. जैसे एक होता है ना, आप किसी अननोन के पास भी अगर जा रहे हो तो यू हैव अ प्लीजिंग स्माइल ऑन योर फेस, तो इनको ये भी डिस्टर्ब करता है कि मुझे पसंद नहीं कर रहा है. तो क्या ये भी एक बीमारी की श्रेणी में आएगा क्या?
0: बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसकी एक स्मॉल टिप है. आपको वो दूसरे बंदे की दुनिया में क्या चल रहा है पता नहीं ना
1: जी.
0: सो हाउ कैन यू मेक योर सेल्फ टू लैंड इन ट्रबल, दूसरों
1: जी
0: की जिंदगी में क्या चल, मे भी हमारे से ज्यादा स्ट्रेस में हो सकता है ना। सो

0: these are situations actually. इसलिए हम सिंग ना लर्न टू गिव रेस्पॉन्स नॉट रिएक्शन.
1: जी बिल्कुल सही. और हर बार ओवर थिंकिंग की भी जरूरत नहीं है. चलिए और भी बहुत सारे हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं. मुझे एक मैसेज और ये दिख रहा है. मैं माया हूँ न्यू दिल्ली मिंटो रोड से. मेरी किसी चीज़ को इमेजिन नहीं कर पाती मगर मैं कुछ सुन रही होती हूँ तो उस पॉइंट को सही से कलेक्ट नहीं कर पाती हूँ. तो ये क्या जैसे होता है ना फोकस फोकस नहीं है तो क्या ये भी किसी कंसंट्रेशन एंड फोकस तो ये भी किस तरह का पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है क्या?
0: नो.
1: ओके तो ये किसी प्रैक्टिस से या इनको जरूरत है किसी होम्योपैथी डॉक्टर से मिलने की?
0: डेफिनेटली शी कैन गो टू अ डॉक्टर.
1: इन्होंने लिखा है सौरभ सिंह चौहान जी ने लखनऊ से कि मैम मुझे बहुत टेंशन होती है बार बार पर मुझे गुस्सा आता है. बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी है. मैं शांत रहना चाहता हूँ पर मैं रह नहीं पाता हूँ. दूसरा इन्होंने लिखा है कि मैं चुप चुप रहता हूँ. मुझे बहुत बात करना पसंद नहीं है किसी और मैं अकेले रहने से मुझे अच्छा लगता है. तो ये आपने एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात की थी जहाँ पर लोग अपने में ही रहते हैं लोनलीनेस होती है उन्हें. तो ये भी इस श्रेणी में आएगा क्या?
0: नहीं आई डोंट वॉन्ट टू लेबल एनी वन. डिस्क्लेमर मैंने पहले ही बोल
1: दिया. बिल्कुल.
0: बट आई वॉन्ट टू टेल यू आप ऐसे एक बार आप अच्छे से बैठ कर सोच कीजिए लाइक वाई आई एम बिहेविंग लाइक दिस. मैं दूसरों को क्यों अवॉइड करता है. अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन कीजिए एंड उसमें जरूर आपको आंसर मिलेंगे या गो टू द डॉक्टर. डॉक्टर आपको मदद करेंगे पक्का. आफ्टर गिविंग द मेडिसिन आल्सो ही विल फील बेटर.
1: मोहम्मद इम्तियाज जवाहर कैंप कीर्ति नगर नई दिल्ली से पूछ रहे हैं कि क्या स्ट्रेस को भी दूर किया जा सकता है और स्ट्रेस के कारण भी क्या पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकते हैं.
0: स्ट्रेस इज समथिंग. स्ट्रेस मतलब क्या है?
1: स्ट्रेस के लिए होम्योपैथी में मेडिसिन होती हैं क्या स्ट्रेस मैनेज करने के लिए?
0: डेफिनेटली है. एंड बट 90% द पर्सन शुड वर्क ऑन हिमसेल्फ क्योंकि दुनिया इज रनिंग लाइक एनीथिंग. सो स्ट्रेस प्रेजेंट सिचुएशन को डील करना आपको आना चाहिए. सी व्हाट डू यू मीन बाय एंजाइटी? एंजाइटी इज थिंकिंग अबाउट फ्यूचर. एंड डिप्रेशन क्या है? थिंकिंग अबाउट पास्ट. सो स्ट्रेस यू हैव टू लर्न हाउ टू गिव रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंट सिचुएशन.
1: बिल्कुल. और एक ये है प्रश्न नरदेव सिंह चौहान जी का कोटद्वार उत्तराखंड से कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर की श्रेणी में मेरा प्रश्न आता है कि नहीं ये बताइए कि पहले जो पीढ़ी थी वो बहुत क्लोज थी और एक दूसरे से प्यार करते थे सपोर्ट करते थे और आज की पीढ़ी जो है अपने में होती जा रही है उन्हें दूसरे से कोई मतलब नहीं. तो ये भी डिसऑर्डर है किसी तरह का या ये नेचुरल प्रोसेस है?
0: I can't comment on that thing. Personal है ना something personal.
1: चलिए तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैडम ने बार बार ये डिस्क्लेमर लगाया है कि किसी को लेबल नहीं करना है. लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि हाँ आपका बिहेवियर या आपकी पर्सनालिटी दूसरों से जो आम एक्सेप्टेबल पर्सनालिटीज हैं उससे थोड़ा भिन्न है तो आप कदम बढ़ा सकते हैं डॉक्टर के पास जा सकते हैं मिल सकते हैं डिस्कस कर सकते हैं और वो फिर आपको बता सकते हैं किस तरह की मेडिकेशन की आपको आवश्यकता है. यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आएंगे. आप रहिए रेडियो डॉक्टर के साथ.

0: जी बिल्कुल, घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके साथ है रेडियो डॉक्टर। रेडियो डॉक्टर में हमारे साथ होते हैं बड़े बड़े डॉक्टर्स जो आपकी हर परेशानी का हल लेकर यहाँ पर आते हैं, और आपको सिर्फ अपने प्रश्न ही तो पूछने होते हैं जो आप घर बैठे पूछते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ जाते हैं या फिर व्हाट्सएप के साथ आप जुड़े ही रहते हैं। तो चलिए, आज का जो विषय है, बहुत सारी जानकारी आपको मिली पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की, और होम्योपैथी की जब हम बात करते हैं तो हमने वो भी डॉक्टर साहब से पूछा, पर डॉक्टर साहब ने हमें साफ बताया कि हर केस डिफरेंट होता है और आपको जाना होगा और इसको बाकायदा डिस्कस किया जाता है, काउंसलिंग की जाती है। यहाँ पे मैं एक चीज पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहब, जब घर में किसी को भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है तो सिर्फ वो ही प्रभावित नहीं होता, उसके साथ बहुत सारे और लोग जो रह रहे होते हैं या उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उसके फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे रिलेटिव्स हों, चाहे नेबर्स हों, वो भी इम्पैक्ट होते हैं। तो एक तो ये कि किस तरह से वो मदद कर सकते हैं उसकी, जिसको जो ये पेशेंट है, तो उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए इसमें, उनकी हेल्प करने के लिए किस तरह का व्यवहार उन्हें करना चाहिए उनके साथ।
1: प्रायर टू दैट थिंग मैं ये बोलती हूँ, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में बढ़िया थेरापेटिक रिलेशनशिप बिल्डअप करना है। दैट मीन्स द क्लिनिशियन नीड्स टू मेंटेन दैट एम्पथी, कंसिस्टेंसी, व्हाट शुड आई से, पर्सनल सॉरी प्रोफेशनल बाउंड्रीज एंड ऑल, है ना, नॉन जजमेंट होना चाहिए, क्लियर कम्युनिकेशन। सो उसके साथ है ना, बिकॉज हमें वी आर श्योर दैट दिस पर्सन इज लिविंग विद फैमिली, राइट। सो जो मेम्बर्स को बुलाकर अलग से साइको एजुकेशन, इवन सर्टन वी हैव टू गिव सर्टन स्ट्रैटेजीज हाउ टू कम्युनिकेट विद दिस पर्टिकुलर दिस पर्सन्स, ये भी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। टीच दम हाउ टू सेट बाउंड्रीज, बार बार मैं स्ट्रेस करना चाहती हूँ, सेटिंग बाउंड्रीज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसका मीनिंग यही नहीं है यू आर डिनाइंग कंपैशन, you don't need to tolerate the harmful behavior. So that is very important. And crisis planning bhi karna hai, kuch crisis on hai, how to deal with that thing. And the family members should understand what are all the situations that can trigger points kya kya hai, triggering situations kya kya hai. I think we can support their mental health also, right? And we should understand one thing, that they are supporters. Family members are supporters, not they are not substitutes for professional treatment. And another important thing is that hospitalization is not automatically required if somebody is having personality disorder. But agar somebody is exhibiting significant

0: significant suicide risk, severe self-harm, या substance related risk, है ना. So या violence की risk, या inability to maintain safety, ऐसी सिचुएशन में हॉस्पिटलाइजेशन शुड बी कंसिडर्ड.
1: जी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई है जो कई बार मिस हो जाती है कि कभी कभी सीवियर केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन भी ज़रूरी हो सकता है. अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, समय कम है, लेकिन ये बताएं कि जैसे आपसे कोई मेडिसिन लेता है, अगर आप उसको डिस्कवर कर लेते हैं किस तरह की बीमारी है, कब तक मेडिकेशन चलेगी, तो क्या मेडिकेशन के साथ साथ काउंसलिंग या योग या मेडिटेशन, ध्यान, योग, इन सब का भी महत्व होता है डील करने में?
0: मैम, ये मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ विद द हेल्प ऑफ WHO's डेफिनेशन ऑफ हेल्थ. अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेल बींग एंड देर आर सर्टन अदर फैक्टर्स. इज एन इट्स अ स्टेट ऑफ वेल बींग. क्या क्या एस्पेक्ट पर? इमोशनल, mental and physical well-being hona chahiye. That situation is called, that state is called healthy situation, you know.
1: Healthy person.
0: So apart from that thing, there are certain dimensions behave. Like you have to create a balance, you know. Like there are certain other dimensions, like intellectual wellness hona chahiye, occupational wellness hona chahiye, financial wellness hona chahiye, spiritual wellness hona chahiye. So ye sab aapko maintain, balance karna hi padega. Because ये सब बैलेंस करने की अल्टीमेट प्रोडक्ट है हेल्थ. सो यू हैव टू, यू कैन प्रैक्टिस योगा इफ इट इज गिविंग बेनिफिट्स टू यू. यू कैन ट्रैवल, है ना, यू कैन एक्सप्लोर नेचर, यू हैव टू, है ना, ऑब्जर्व एवरीथिंग, यू हैव टू, देन दिस थिंग्स कैन हेल्प इन द सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड दैट विल इवेंचुअली लीड टू गिव द रिस्पॉन्स रादर देन रिएक्शन टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन.
1: लेकिन फिर वही बात जो आपने शुरू में बोली कि हर पेशेंट को या जिसको भी लगता है कि उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, उसे डॉक्टर के पास जाना होगा और एक डिसाइसिव उस पर आना होगा कि कौन सी चीज उनके लिए वर्क करेगी, बिकॉज इट इज टोटली डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल. तो चलिए, इस आज की बातचीत से ये तो साफ हो गया कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना हमारा शारीरिक स्वास्थ्य. इसीलिए हम इस तरह के कार्यक्रम भी आपके लिए रेडियो डॉक्टर में लेकर आते हैं. अगर आप या आपका अपना कोई इस तरह के दौर से गुजर रहा है तो कृपया छुपाएं नहीं बल्कि खुलकर मदद करें. उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम से आपको एक नई चीज जानने को मिली होगी. मानसिक स्वास्थ्य की तरफ एक नई नजरिए से आज आप देखना शुरू करेंगे. हम आज के अपने रेडियो डॉक्टर का धन्यवाद देना चाहेंगे जो समय निकालकर यहाँ आई हैं और इतनी जो जटिल सा हमारा ये एक एपिसोड था उसको आपने काफी सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की है, तो मुझे लगता है कि काफी बेनिफिशियल रहा होगा हमारे श्रोताओं के लिए. डॉक्टर चित्रा वासु हमारे साथ रही, होम्योपैथी विशेषज्ञ हैं, MD इन होम्योपैथिक फिलोसफी है, डायरेक्टोरेट ऑफ आयुष डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली में आप कार्य करती हैं. धन्यवाद आपको कि आप समय निकालकर यहाँ आई हैं. तो याद रखिए, सेहतमंद ही एक खुशहाल जीवन की कुंजी है, इसलिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए. आज के लिए बस इतना ही. अगर आप हमें कुछ लिखना चाहते हैं, हमारे कार्यक्रम का फीडबैक देना चाहते हैं, आप healthaiadelhi पर हमें @gmail.com पर मेल कर सकते हैं. अगर आप किसी विषय पर अधिक जानकारी चाहते हैं या किसी विशेष कार्यक्रम पर विषय पर आप चाहते हैं कि हम कार्यक्रम करें, वो भी आप हमें लिखकर भेज सकते हैं. इसी तरह से रेडियो डॉक्टर के साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए. स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार. नमस्कार डॉक्टर साहब.
0: थैंक यू मैम.
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे. कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल.

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह आज शाम 5:10 पर सैनिकों को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू होंगी। आज विभाषण विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्र वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने जनगणना 2027 के लिए परिवार अनुसूची से संबंधित प्रश्नावली अधिसूचित कर दी है। इसमें 40 सवाल हैं। गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा है कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भगोड़े ड्रग सरगना वीरेंद्र सिंह बसोया को संयुक्त अरब अमीरात से वापस लाने में सफलता हासिल की है। झारखंड में भर्ती प्रतियोगिताओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने कल तिरंगा यात्रा की घोषणा की। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन सुरंग में मलबा और पानी भरने से फंसे करीब 22 लोगों में से 19 को बाहर निकाला गया। हादसे में कल 7 लोगों की मौत हो गई। और अंत में मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। तो ये थे FM रेनबो पर अभी तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

My dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. पैसे बचाने के आसान तरीके आज के लम्हे प्रोग्राम में आप सुनेंगे चेतन के साथ। पहले निवेश करें, फिर खर्चा करें। ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं, सारे खर्चों के बाद जो पैसा बचता है वो पैसा निवेश करते हैं, यानी सेव करते हैं। अगर आप पैसा बचाने में परेशानी हो रही है तो आप सैलरी आते ही पैसा निवेश कर दिए, जो बचेगा उसे

आप खर्च करिए। कई बार जब बैंक में पैसा कम होते हैं, खर्च अपने आप कम हो जाते हैं। महीने के शुरुआत में ही आप रिकरिंग डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड्स के माध्यम में पैसे निवेश कर दें। बचे हुए पैसों को आराम से निवेश कर खर्च कर सकते हैं। जैसे ही आपकी सैलरी आए, उसमें से कुछ पैसे आप एक दूसरे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दीजिए, जो कि आप केवल निवेश के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। खर्च केवल अपने आम खर्चों वाले बैंक अकाउंट में करिए। वैसे तो क्रेडिट कार्ड के उपयोग करने से कुछ फायदे हैं, परंतु अगर आप अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं कर पाते तो बेहतर होगा कि आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल न करें। अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो काफी संयम होना चाहिए, अन्यथा आप काफी ज्यादा खर्च कर सकते हैं। हर महीने पहले से ही अपना बजट बना लें और फिर उस पर अमल करें। अपने खर्चों को नोट भी करें और बाद में उनकी तुलना अपने बजट से करें। बजट से आपको ये भी पता चलेगा कि किन खर्चों को कम किया जा सकता है और किन को नहीं। आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप कहाँ ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। धीरे धीरे आप उन अतिरिक्त खर्चों को कम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप हर हफ्ते बाहर खाना खाते हैं तो कोशिश करें कि 2 हफ्ते को एक बार खाएं और बाकी का जो भी है घर पर पका कर खाए, होम कुक्ड फूड। दिस इज हेल्थी एज वेल एज सेव्स मनी। जिन चीजों का इस्तेमाल न हो उन पर पैसे खर्च न करें।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।
1: अगर किसी मैगजीन या पत्रिका को सब्सक्राइब कर रखे हैं पर पढ़ते नहीं हैं तो ऐसे सब्सक्रिप्शन को बंद करें। ऐसे और भी बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं जो आप रोक सकते हैं। अपने खर्चों को प्लान करें, खासकर अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो पहले से बुकिंग करने पर हवाई जहाज, ट्रेन या होटल की बुकिंग सस्ते में हो सकती है। समय समय पर मॉल में या ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पर सेल चलती रहती है। अगर आप समझदारी से काम ले तो काफी पैसे बचा सकते हैं। बड़े त्योहारों या नए साल पर तो सेल लगती ही है। कई बार हम लोग कुछ कदम इसलिए नहीं उठाते क्योंकि हमको लगता है कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। जैसे कि अगर समझदारी से इस्तेमाल करें तो बिजली का बिल कम हो सकता है। बूंद बूंद सागर बनता है दोस्तों। अगर आपके पास मोबाइल का पोस्ट पेड कनेक्शन है और आपका बिल काफी ज्यादा आता है तो आप प्रीपेड कनेक्शन पर शिफ्ट कर सकते हैं। पोस्ट पेड कनेक्शन में कई बार अपनी यूसेज की आइडिया नहीं होता है, इसीलिए बिल ज्यादा आता है। और फिर आजकल प्रीपेड कनेक्शन में सुविधा भी काफी अच्छी और सस्ती मिल रही है। अगर आप महीने के 1000 रुपए भी बचा लेते हैं तो साल में 12000 रुपए बचा सकते हैं। दिखावे के चक्कर में न पड़े दोस्तों, ये ना तो आपकी आर्थिक सेहत के लिए अच्छा है और ना ही आपकी मानसिक सेहत के लिए। उतना ही खर्चा करें जितना आप में सामर्थ्य हो। क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन लेकर केवल दिखावे के लिए खर्चा करना बेवकूफी है। ये सारी बातें शायद सभी पर लागू नहीं होगी। आपको देखना होगा कि आपके लिए सबसे बेहतर रास्ता क्या है। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं पैसे बचाने के। इजी टिप्स टू सेव मनी, बचत करने के आसान तरीके चेतन के साथ लम्हे प्रोग्राम में सुनते रहिए दोस्तों। सभी लोगों को महीने का बजट बनाना चाहिए जिसे ये पता चले कि इनकम और एक्सपेंसेस कितनी है। ज्यादातर लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन इससे आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। इसका सीधा सा तरीका है कि आप अपने खर्चों का हिसाब रखना शुरू कर दीजिए, फिर महीने के अंत में उसमें से फालतू खर्चे हटा दीजिए और उसके आधार पर अगले महीने का बजट बना दीजिए। खर्चों का हिसाब करने के लिए आपसे कोई भी रिलेटेड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आप हर दिन के अंत में खर्च लिख सकते हैं। जिन लोगों को सही में बचत करनी है वो हमेशा अपने वेतन से कुछ पैसे निकाल दे और बचे हुए राशि से घर का बजट बनाए। सभी तरह के खर्च इस बजट में लिखना चाहिए जिसे बिना जरूरी खर्चे को

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com।
1: दोस्तों, लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG खाना बनाने का सबसे सस्ता तरीका नहीं है। रसोई गैस पर भी बचत हो सकती है यदि इंडक्शन चूल्हा इस्तेमाल किया जाए। खाना बनाते समय बहुत से व्यंजन होते हैं जिससे सीधे गैस की जरूरत नहीं होती है, उस समय इंडक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। यह चूल्हा बिजली पर चलती है पर इसमें बहुत कम बिजली का उपयोग होता है और इस तरह हम रसोई गैस पर बचत कर सकते हैं। ज्यादातर लोगों का पैसा या तो सेविंग अकाउंट में पड़ा रहता है या फिर वो FD या कोई इंश्योरेंस में निवेश करते हैं। कुछ लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और रिस्क उठाने से घबराते हैं। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स न करें और अपने फ्यूचर प्लान के अनुसार कुछ पैसे टर्म इंश्योरेंस खरीद लें और बाकी का पैसा अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्कीम्स जैसे फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, इक्विटी आदि में निवेश करके अपना एक मजबूत इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना लें। थोड़ी सी रिस्क उठाए और शेयर मार्केट की सिक्योरिटी जैसे इक्विटी, बॉन्ड आदि में भी कुछ पैसे इन्वेस्ट करें। शेयर्स या इक्विटी में रिस्क होती है लेकिन सही ज्ञान और रिसर्च के साथ लॉन्ग टर्म अप्रोच से इन्वेस्ट करने पर सबसे अधिक रिटर्न्स शेयर्स में ही मिलता है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में अधिक जानकारी ले। मोबाइल और इंटरनेट आज जरूरत बन गई है और इस पे लोग बहुत खर्चा भी करते हैं। बचत के लिए सबसे पहले इसी खर्च पे कटौती करनी चाहिए। अगर आप पोस्टपेड प्लान उपयोग कर रहे हैं तो अपने इस्तेमाल के अनुसार प्रीपेड कनेक्शन ले लेना चाहिए जिसे हम ज्यादा प्रयोग ना करें। इंटरनेट रिचार्ज हो तो बात करने के लिए सोशल मीडिया साइट्स यूज कर सकते हैं। आजकल कई जगह मुफ्त वाईफाई मिलता है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपने महीने के आवश्यकता के अनुसार बैलेंस और इंटरनेट रिचार्ज करवाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ मनी सेविंग टिप्स आपके लिए। उम्मीद है आप भी पैसे बचाएंगे और बहुत जल्द आपका बहुत सारा ढेर सारा इन्वेस्टमेंट हो। इसी आशा के साथ मैं भी आपसे इजाजत लेता हूं आज के लम्हे प्रोग्राम में। अगले कड़ी में फिर से मुलाकात होगी, तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

0: नमस्कार, आज के अल्फा जिन कार्यक्रम में मैं निशा भारद्वाज आपका स्वागत करती हूं और साथ ही स्वागत करती हूं मैं आज की अपनी विशेष मेहमान समृद्धि जैन का, जो कि 14 वर्ष की उम्र में युवा लेखिका हैं। और उन्होंने क्या लिखा है, किसके लिए लिखा है, कैसे लिखा है, कहां से प्रेरणा मिली है, ये तो आप उन्हीं से जानेंगे। नमस्कार और मैं स्वागत करती हूँ समृद्धि जैन आपका।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: तो समृद्धि, सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी सी बुक लिखने का कैसे सोचा?
1: मैं बचपन से बहुत पढ़ती हूँ और मैंने बचपन से साथ में मेरी मम्मा योजना शाह जैन, उनको देखा है, वो मेरी इंस्पिरेशन है। उन्होंने 3 किताबें पब्लिश किए हैं और उनकी वजह से मैंने लिखना शुरू किया है।
0: ठीक है, तो ये जो पब्लिशिंग का जो प्रोसेस होता है, आपने मैन्यूस्क्रिप्ट तैयार की और उसके बाद उसको पब्लिश किया, इसके बीच के सफर में आपने क्या सीखा, कैसे होती है एक बुक पब्लिश, अगर हम अपने श्रोताओं को बताना चाहें, वो आपसे मोटिवेट होना चाहें कि छोटी उम्र से लिख लें अगर, तो उसको पब्लिश कैसे करें?
1: पहले आपको मैन्यूस्क्रिप्ट भेजना होता है, आपको पब्लिशर्स देखने पड़ते हैं। पहले मैन्यूस्क्रिप्ट भेजते हो और जैसे कुछ लोग मना कर देते हैं कि मैन्यूस्क्रिप्ट हम नहीं ले सकते क्योंकि पब्लिकेशन का

0: कुछ सर्टन क्राइटेरिया होते हैं। तो हमें पब्लिकेशन मिला, उनके साथ हमने पहले मैन्यूस्क्रिप्ट भेजी, उन्होंने एक्सेप्ट किया, फिर हमने एडिटिंग फेज शुरू कर ली। तो उन्होंने एडिटिंग की, फॉर्मेटिंग की, हमारी तरफ से मुझे फीडबैक के लिए भेजा भी ये सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ऐसे आना जाना वैसे पूरा सेंडिंग पर ईमेल ये सब हुआ, और फिर एंड में ये पब्लिश हुआ। साथ में मेरा बहुत काम चला एडिटर्स, फॉर्मेटर्स, और वो बुक कवर आर्टिस्ट के साथ भी बहुत काम चला।
1: जब हम बात कर रहे हैं आपकी बुक की, तो इसका टाइटल भी बता दीजिए हमारे लिसनर्स को क्या है
0: इसका टाइटल है द कलर्स बिहाइंड द रेनबो।
1: एंड व्हाई दिस टॉपिक यू हैव चॉजन।
0: हर कोई रेनबो को सोचकर खुश हो जाता है, बिकॉज रेनबो सिग्निफाइज हैप्पीनेस एंड जॉय, बट देयर इज ऑलवेज एन अपसाइड, मतलब कोई ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन होता है। तो जैसे जॉय के लिए सैडनेस, सेम चीज रेनबो के साथ दूसरे जो कलर्स आते हैं उनको भी एक बार दिखाना चाहिए, स्पॉटलाइट में लाना चाहिए। और ये एक सिंबॉलिक, एक मेटाफोर है। तो द कलर्स बिहाइंड द रेनबो, इट शोज द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड एंड समटाइम्स इवन द सॉल्यूशंस।
1: जब सबसे पहले अपने आपने एक आइडिया अपने पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ शायद शेयर किया होगा कि आप एक बुक लिखने जा रही हैं, तो क्या रिएक्शंस मिले थे आपको?
0: मैंने सबसे पहले मेरे मम्मी पापा के साथ ये शेयर किया। एक्चुअली मेरा पहले प्लान ही नहीं था बुक बनाने का, ये तो बाद में हुआ जब मैंने सारे ड्राफ्ट्स लिखे कॉम्पिलेशन के बाद, मुझे लगा कि चलो बुक बना देते हैं। उससे पहले जब मैंने मेरे दोस्तों को दिखाया ये कहानी और मेरे पेरेंट्स को, तो मुझे बहुत अच्छा फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक मिला। इससे मोटिवेट होके मैंने डिसाइड किया कि मैं सच में बुक लिखने वाली हूँ।
1: ओके, तो अपनी बुक के बारे में आप अगर कुछ कम शब्दों में हमारे लिसनर्स को बताना चाहें तो क्या बताएंगी?
0: ये एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, इसमें 11 कहानियां हैं। ये कहानियां जीवन के बारे में है, ये सारी कहानियां सिंबॉलिक है, मेटाफोर है, और हर कोई कहानी एक चीज पे फोकस करता है। जैसे एक कहानी रेसिज्म पे फोकस करती है, एक कहानी सोसाइटल प्रेशर्स पे फोकस करती है, एक कहानी डर पे फोकस करती है। बहुत सारे डिफरेंट मॉरल्स और इमोशंस इसके अंदर
1: तो
0: है।
1: आपके दिल के नजदीक सबसे ज्यादा कौन सी कहानी है?
0: वैसे तो सारी कहानियां मेरी फेवरेट है, लेकिन एक मुझे बहुत स्पेशल लगता है और वो है स्काबोन। उसका क्वेश्चन जो मैंने अपने आप से पूछा था, इट वाज व्हाट इफ ऑल द स्कार्स इन द वर्ल्ड, ऑल द वुंड्स वर केप्ट बाय अ सिंगल पर्सन। ये जो मेन कैरेक्टर है इसका, स्कारबॉर्न, वो मेरे दिल में एक बहुत स्पेशल प्लेस होल्ड करती है, क्योंकि इस कहानी में इस कैरेक्टर ने मेरा बहुत टाइम लिया। तो इस कहानी में करीबन 5 महीने ऐसा कुछ लगा लिखने में, एडिटिंग में भी बहुत टाइम लगा, लेकिन साथ साथ में ये जो कैरेक्टर है ये मेरी सबसे फेवरेट है, क्योंकि मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि इतना टाइम लगाया, दैट्स व्हाई।
1: क्या आपको बचपन से ही कहानी पढ़ने लिखने का शौक था?
0: हाँ, मुझे जब से मैंने पढ़ना सीखा, मैं पढ़ती आ रही हूँ, 3rd ग्रेड में मेरा इतना ऑब्सेशन था कि मैं कुछ बार बाथरूम में बुक्स लेके जाती थी और पढ़ती थी। बचपन से ही बहुत है। मैं एक्चुअली अभी एक बुक पढ़ रही हूँ जिसका नाम है टू किल अ मॉकिंग बर्ड। ये बहुत क्लासिक बुक है, तो मैं पढ़ती रहती हूँ। लेकिन राइटिंग का एक्चुअली कुछ सालों पहले ही शुरू हुआ बिकॉज ऑफ माई मॉम, उन्होंने एक किताब पब्लिश की और उसकी वजह से ही मैंने राइटिंग शुरू किया।
1: दैट्स गुड। तो स्कूल की पढ़ाई के साथ में होमवर्क के साथ में किताब लिखने का वक्त कैसे निकालती हैं समृद्धि?
0: मैं एक्चुअली जर्मनी में रहती हूँ और वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला जाता है स्कूल और पढ़ाई में। ऑफ कोर्स डाला जाता है, इट्स इम्पोर्टेंट, लेकिन आपके पास टाइम होता है अलग चीज़ों को परस्यू करने में। मेरे पास और हॉबीज है, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा टाइम इस पे बिता देती हूँ, और मैंने कोशिश किया कंसिस्टेंट रहने का, मतलब मैं हर दिन कोशिश करती थी थोड़ा थोड़ा लिखने का। ये हर दिन तो हो नहीं पाया, लेकिन कोशिश जारी।
1: जी, तो कोशिश करना ही तो जरूरी होता है। कोशिश करते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो हमें वो पहला इमोशन बताइए जब बुक पब्लिश होके आई, आपने अपने हाथ में ली, तो
0: हैप्पीनेस,
1: वो कैसा था?
0: दैट वाज हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, प्राइड एज वेल।
1: आपने बताया बताया कि आपकी मदर जो हैं वो लिखती हैं, उनसे आपने मोटिवेशन लिया और अपनी बुक लिखी। बाकी किन किन लोगों का सहयोग रहा?
0: मम्मी के अलावा मेरे

0: पापा का भी बहुत सहयोग रहा, उन्होंने मुझे पूरी जर्नी में सपोर्ट किया, साथ में मेरी फैमिली और मेरे दोस्त, उन्होंने पढ़ा, फीडबैक दिया। स्पेशल थैंक्स टू माय कज़न, उन्होंने बहुत अच्छा फीडबैक दिया, कंस्ट्रक्टिव। साथ में उन्होंने थोड़ा सा एडिट भी किया, और उनके अलावा ऑफ कोर्स पब्लिकेशन एडिटर्स, फॉर्मेटर्स, बुक कवर आर्टिस्ट, वो भी बहुत बड़े
1: सबने
0: फैक्टर
1: आपका
0: थे।
1: सहयोग किया,
0: यस
1: आगे भी लिखना जारी रखेंगी, कंटिन्यू रहेगा ये?
0: हाँ, आई थिंक सो। मेरे पास अभी एक नॉवल आइडिया है, उसका मैंने प्लॉट स्केचिंग किया है, थोड़ा सा मैं शुरू करूंगी। अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था क्योंकि बुक आई थी और लॉन्च सब कुछ हो रहा था, तो अब मैं फिर से शुरू करूंगी। देखा जाएगा क्या होगा आगे जीवन में।
1: आपकी उम्र में तो हम देख रहे हैं कि बच्चे जो है सोशल मीडिया के प्रति ज्यादा अपनी रुचि रखते हैं। आपका कैसे रहता है, सोशल मीडिया के प्रति रुझान कैसा है?
0: मैं ज़्यादा सोशल मीडिया एक्चुअली यूज़ नहीं करती, वैसे चाहती भी नहीं हूँ क्योंकि उसमें बहुत अपना टाइम जाता है, तो मैं कोशिश करती हूँ उससे दूर रहने की।
1: और चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप ही की उम्र के बच्चे जो लिखना चाहते हो या अपना कोई भी सपना पूरा करना चाहते हो, उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी?
0: जो भी आप परस्यू करना चाहते हो आप वो करो, मन भर के करो। सब कुछ जो आप करना चाहते हो ट्राई करो, एटलीस्ट थोड़ा सा।
1: तो कोशिश करते रहें, कामयाबी जरूर मिलेगी। इसी के साथ हम धन्यवाद करते हैं समृद्धि का, जिन्होंने हमें इतनी लाभप्रद जानकारी से अवगत कराया। और मैं निशा भारद्वाज अब लेती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: नमस्कार, मैं

0: राजवाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

0: लोकनाल सा। न्याय सबके लिए, कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 1500 पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: टुडे इज फ्राइडे। नो, ये एक नॉर्मल डे हो ही नहीं सकता। फ्राइडे हमेशा स्पेशल रहता है, स्पेशल डे रहता है। ओह इट्स फ्राइडे, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। जी हाँ जनाब, आज है फ्राइडे जिसका इंतजार हमें शुरुआत से ही रहता है। जैसे ही मंडे हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता है तो हम यही सोचते हैं कि ये फ्राइडे कब आएगा। जी हाँ, और फ्राइडे का इंतज़ार हर किसी को रहता है, बेसब्री से रहता है। और यही फ्राइडे एक रिमाइंडर रहता है कि ज़िंदगी एक बार फिर से जीना चाहती है, अपनी पसंद से आप उसे जीना चाहते हैं। ज़िंदगी आपकी बेस्ट फ्रेंड बनकर आपके साथ चलना चाहती है वो लम्हों की तरफ जो लम्हे आप जीना चाहते हैं। वीकेंड का प्रेशर तो आप झेल ही चुके हैं, हो सकता है आपकी ज़िंदगी को सैबोटाज कर दिया हो इस प्रेशर ने, लेकिन अब सेरोटोनिन का वक्त आ चुका है। फिजाओं में, बॉडी में, माइंड में सेरोटोनिन यानी कि फील गुड केमिकल घुलना शुरू हो गया है, क्योंकि ये है फ्राइडे। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, सो वेलकम फ्राइडे, आई लव यू।

गुड म्यूजिक, मनपसंद खाना, दोस्तों का साथ और बस यूं ही इधर उधर की बातें। फ्राइडे का जायका ही कुछ अलग रहता है, अलग लेवल का रहता है। फ्राइडे का हाल वैसा ही है जैसे आप तोरी टिंडा घिया खा रहे हो और कोई कह दे पनीर खाओगे, उफ बिल्कुल फ्राइडे याद आ जाता है। जैसे इतने सारे दिनों में फ्राइडे बिल्कुल पनीर की तरह लगता है कि बस मुंह के अंदर गया और देखते ही लगा कि तो बहुत भूख लगी है, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। और मिठाइयों की बात की जाए तो मिठाइयों में गुलाब जामुन है, फ्राइडे प्लेट में रहता है तब भी मन ललचाता है और जब खा लेते हैं उसके बाद भी मन करता है काश एक और मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। जी हाँ जनाब, ये फ्राइडे है, इसमें आप वो करते हैं जो आपके मन को पसंद होता है, जिसको करने के लिए आप इस फ्राइडे का इंतज़ार करते हैं और सभी बाधाओं को आगे लांघते हुए आगे बढ़ते हुए आप पहुंचते हैं उन लम्हों की तरफ जो आपको कहते हैं कि जिंदगी को बाउंस करने दो, जिंदगी को उछलने दो, कूदने दो और बाकी चीजों को बस शराब कह दो।

0: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
1: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
0: अरे मम्मी एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
1: हैं इतनी जल्दी?
0: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुर होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
3: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
4: पता का चाय, गजब का स्वाद।
5: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है, तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
6: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे, मुझे HIV है।
5: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
7: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं,
8: इग्नोर नहीं याद करो।
9: HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
4: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
4: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
3: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सराय काली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में।
2: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में। आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
3: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।

0: जाए।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में न हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
2: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
3: वंदे मातरम। प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम 1 की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा, हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
7: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
8: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
7: म्यूजिक मस्ती।
9: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
10: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
7: म्यूजिक मस्ती।
11: जी हाँ जनाब, मौका बहुत खास है क्योंकि कल है 15 अगस्त और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारा 80वां स्वतंत्रता दिवस। आपके क्या प्लान्स हैं, क्या कुछ करने वाले हैं, बचपन की यादें, स्कूल कॉलेज की यादें, कैसे इवेंट्स होते थे, कैसे हमें दो दो लड्डू मिलते थे, कुछ तो बहुत कुछ खास आप सब शेयर करेंगे जब आप सब दोस्त मिल बैठ कर कल इंजॉय करेंगे 15 अगस्त को। और बहुत सारी सेलिब्रेशंस भी आप करेंगे, साथ ही साथ आप ये भी प्रण लीजिएगा जब आप सभी दोस्त एक साथ बैठे हों कि हम सभी अपने कर्तव्यों का वहन करते हुए आगे बढ़ेंगे, समृद्ध भारत के लिए, विकसित भारत के लिए उन सभी कार्यों को करेंगे जो हमें करने चाहिए और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में अपना अपना विशेष योगदान देंगे। इसी प्रण के साथ मैं प्रियंका मामगेन लेती हूँ विदा। अगला प्रोग्राम रहेगा जी हाँ सिटी लाइट्स और आकाशवाणी परिवार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं।

नमस्कार, प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भगोड़े ड्रग सरगना वीरेंद्र सिंह बसोया को संयुक्त अरब अमीरात से वापस लाने में सफलता हासिल की। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के कारण विरोध में प्रदर्शनकारियों ने कल तिरंगा यात्रा की घोषणा की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने उत्तराखंड के चमोली में एक जल विद्युत परियोजना स्थल पर सुरंग ढहने की घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला कल से प्रतिष्ठित गॉल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेली जाएंगी। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: नमस्कार, गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। जी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, मैं हूं आपके साथ आपका अपना म्यूजिकल हम सफर आरजे निखिल वर्मा लेकर आ गया हूं एक बार फिर से रेनबो की इन सतरंगी पटरियों पर अपनी अतरंगी यारी के साथ। म्यूजिक, मस्ती, बहुत सारी खबरें और प्रोग्राम का नाम, जी हाँ प्रोग्राम का नाम है सिटी लाइट्स, जहां हम आपको देते हैं सिटी की अपडेट्स, क्या कुछ चल रहा है सिटी में, कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, क्या रहेगा मौसम का हाल और ट्रैफिक कैसे चल रहा है, ये सब बताऊंगा मैं आपको इस प्रोग्राम में। सिटी लाइट्स सुन रहे हैं आप, मैं आपका अपना म्यूजिकल हम सफर आरजे निखिल वर्मा और शो का आगाज हमेशा की तरह एक प्यारे से गाने के साथ हम करेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ बातें आपको बतानी है, तो जाइएगा मत, सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

0: जी हाँ, हिंदुस्तान मेरी जान। और कल हम 80वां जो है अपना स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे भी मनाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा जो इवेंट्स हैं वो हो रहे हैं, उन सब के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले, सबसे पहले आपको बता दूं मौसम का हाल क्या है और क्या होने वाला है। जी हाँ, दिल्ली और एनसीआर में अगर मैं आप बताऊं तो आज जो है वो मॉनसून काफ़ी एक्टिव है और मौसम विभाग ने भारी बारिश और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। और अगर मैं बताऊं दिल्ली की बात, तो दिल्ली में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड और 34 डिग्री जो है वो न्यूनतम तापमान था, मतलब न्यूनतम 27 डिग्री था, और जो मैक्सिमम था वो 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। और कल की अगर मैं बात बताऊँ, इंडिपेंडेंस डे की बात बताऊँ, तो कल भी आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना है, क्योंकि मॉनसून एक्टिव है। तो प्लान्स अकॉर्डिंगली बनाइएगा आप, और अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा बारिश में। ट्रैफिक के अपडेट्स भी आपको देंगे थोड़ी देर में, लेकिन अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार करेंगे आपसे और भी बातें, आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।
1: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
2: वंदे मातरम प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम 1 की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

दोस्तों अब बात करते हैं हर घर तिरंगा अभियान की। और हर घर तिरंगा की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ एक अभियान नहीं है बल्कि अपने देश के प्रति प्यार, गर्व और सम्मान जताने का एक खूबसूरत अवसर है। तो इस आजादी के पर्व पर अपने घर पर पूरे सम्मान और गर्व के साथ तिरंगा फहराइए, लेकिन ये भी याद रखिए कि हमारा जो राष्ट्र ध्वज है वो हमारी शान नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। तिरंगे को फहराते समय फ्लैग कोड और सम्मान से जुड़े सभी नियमों का पालन जरूर करें, क्योंकि तिरंगा ऊंचा रहे हमारा ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि हर इंडियन, हर हिंदुस्तानी के दिल की भावना है। अगर हमारा तिरंगा क्षतिग्रस्त हो जाए, गंदा हो जाए या मैला भी हो जाए तो उसका निपटान भी पूरे सम्मान और गरिमा के साथ करना हमारी ही जिम्मेदारी है। तो आइए इस इंडिपेंडेंस डे पर घर घर तिरंगा लहराएं और दिल में हिंदुस्तान बसाएं। हर घर तिरंगा, हर दिल में हिंदुस्तान।

जी हाँ, और इस बार सिर्फ जो तिरंगा है वो भारत में ही नहीं बल्कि अक्रॉस द ग्लोब फहराएगा। अब आप सोच रहे हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एक इनिशिएटिव की, बहुत ही उम्दा इनिशिएटिव है जिसको सुन के, जिसको जानकर मुझे तो बहुत खुशी हुई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सूर्यपथ तिरंगा, जो कि हर घर तिरंगा 2026 के अंदर एक यूनिक ग्लोबल इनिशिएटिव है, जो नेशनल फ्लैग के प्राउड कनेक्शन से दुनिया भर के इंडियन डायस्पोरा, यानी कि जो विदेशों में रहने वाले इंडियंस हैं, उनको आपस में जोड़ेगा। इनिशिएटिव की अगर ओवरव्यू बताऊँ आपको, तो ये ईस्ट से वेस्ट, यानी कि पूरब से पश्चिम की तरफ निकलते हुए सूरज के पाथ को फॉलो करेगा। अलग अलग टाइम जोन की सिलेक्टेड इंडियन मिशंस और पोस्ट पर फ्लैग होस्टिंग के साथ तिरंगा का एक सिंबॉलिक ग्लोबल रिले बनेगा। ये रिले की अगर मैं बात करूं तो इंडिया की यूनिटी, पेट्रियोटिज्म और ग्लोबल प्रेजेंस को शोकेस करेगा, जिससे पूरी दुनिया के इंडियंस और इंडिया के फ्रेंड्स एक साथ आएंगे। मैं इसकी टाइमिंग की अगर आपको बात बता दूं, तो इसकी टाइमिंग जो है वो सूर्य प्रत तिरंगा की जो टाइमिंग है, ये 15 अगस्त को रात 1:30 बजे, यानी कि करीब मिडनाइट के पास शुरू होगा। और इसका स्टार्टिंग पॉइंट लॉन्गिट्यूड के जो सबसे बेस पर है वो सेलेक्ट किया गया है, जिसमें सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्टिसिपेटिंग मिशन या पोस्ट को प्रायोरिटी दी गई है, और जिसका लोकल सनराइज मिडनाइट IST के सबसे करीब होगा। जैसे जैसे ये रिले आगे बढ़ेगा, तिरंगा जो है लोकल सनराइज के टाइम के हिसाब से अलग अलग कंट्रीज और पार्टिसिपेटिंग जो हमारी लोकेशंस हैं उसमें मूव करेगा, जिससे ईस्ट टू वेस्ट का एक कंटिन्यूस रिले बनेगा। हर लोकेशन अपनी अप्रोप्रिएट लोकल टाइम पर रिले को आगे लेगी, ताकि एक सीक्वेंस जो है लॉन्गिट्यूड्स के साथ सूरज के मूवमेंट को फॉलो करे। कंट्रीज और एंड टाइमिंग जो है सूर्यपथ का पार्ट होने के वाले जो है प्रपोज कंट्रीज जो है, उसमें 54 सिटीज हैं अक्रॉस द ग्लोब। और इस डिजिटल रिले का जो लास्ट पॉइंट है वो 15 अगस्त को करीब 8:30 बजे इंडियन टाइम पर होगा। तो ये बहुत ही बेहद खूबसूरत जो डिजिटल रिले होने वाला है वो होगा, और आप भी अपनी नजरें बनाए रखिएगा, देखिएगा, इसको बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव है। मैं करूंगा आपसे और भी बातें, आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

जी हाँ, हम इंडिया वाले हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना 80th इंडिपेंडेंस डे। और 80th इंडिपेंडेंस डे के चलते चलते बहुत सारे फंक्शंस भी हो रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं अक्रॉस दिल्ली एंड NCR। तो उस सब के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। फिलहाल आपको बताना चाहता हूँ ट्रैफिक का हाल। तो आपको ये बता देता हूँ कि अभी जो ट्रैफिक है स्लो कहाँ कहाँ पर है। बाबा बंदा सिंह बहादुर सेतु पर ट्रैफिक बहुत बहुत स्लो चल रहा है। साथ ही साथ सरदार पटेल मार्ग पर भी ट्रैफिक स्लो है और तिलक मार्ग पर भी अभी ट्रैफिक स्लो चल रहा है। आपको ये भी बता देता हूँ कि इंडिपेंडेंस डे के रिस्ट्रिक्शंस के चलते हुए जो ट्रैफिक मूवमेंट है नियर रेड फोर्ट, वो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस और डाइवर्शंस वहाँ पर आपको मिलेंगे सुबह 4 बजे से 10 बजे के आसपास। तो जो है अपना प्रोग्राम, अपने प्लान्स उसी अकॉर्डिंग बनाइएगा। और आज भी जगह जगह मेट्रो स्टेशंस पर, इंपॉर्टेंट मेट्रो स्टेशंस पर, रोड्स पर भी चेकिंग हो रही है। तो एक्स्ट्रा टाइम लेकर ही घरों से निकलिएगा ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी सामने ना आए। आपके लिए एक प्यारा सा गाना मेरी तरफ से, हियर गोज, एंजॉय। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, मैं हूं आपके साथ आपका अपना म्यूजिकल हम सफर, RJ निखिल वर्मा। प्रोग्राम का नाम है सिटी लाइट्स।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

0: आशा यूनिट बाल विवाह मुक्ति के लिए नालसा की पहल। अब हर जिले में मौजूद विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़िए, हेल्पलाइन नंबर 1500 पर कॉल करें।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: नमस्कार, वेलकम बैक, और आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स, और प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ आपका अपना म्यूजिकल हम सफर आर्जी निखिल वर्मा। और आज 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस भी मनाते हैं, स्मृति दिवस, यानी कि पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। इस अवसर पर मैं आपको इस दिन के अवसर पर मैं बता देता हूं कि क्या हो रहा है कि कनॉट प्लेस में जो सेंट्रल पार्क है उसमें संस्कृति मंत्रालय की तरफ से एक कार्यक्रम रखा गया है, और साथ ही साथ वहां पे एग्जीबिशन का भी आयोजन किया गया है। ये हर साल 14 अगस्त को देशव्यापी स्तर पर मनाया जाता है, और जो कार्यक्रम की बात करूं तो वो 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है, तो अगर आप उस तरफ हैं या उस तरफ जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। तो कार्यक्रम की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो ये है कि एक तो वहां पर एक जो होता है कि एक प्रतीकात्मक साइलेंट मार्च निकाला जाता है, जो कि जो पार्टीशन का दर्द झेलने वाले और अपनी जान गंवाने वालों लाखों निर्दोष नागरिकों की याद में सेंट्रल पार्क और कनॉट प्लेस के इनर सर्कल के आसपास एक मौन या मूक मार्च है जो निकाला जाता है। साथ ही साथ एग्जीबिशन भी यहाँ लगाई जाती है, जिसमें संस्कृति मंत्रालय की तरफ से 1947 के विभाजन की दर्दनाक तस्वीरों, दस्तावेजों और विस्थापित तो के जो संघर्ष है, स्ट्रगल्स है, उनकी स्टोरीज को दर्शाती है। एक डिजिटल फिजिकल प्रदर्शनी भी होती है, और उसका उद्देश्य यही होता है कि जो नई पीढ़ी है उनको विभाजन की जो ऐतिहासिक त्रासदी है और उसके मानवीय मूल्यों से अवगत कराना रहता है, और देश की एकता, अखंडता और सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने का संकल्प भी लिया जाता है, और जो भी पीड़ित उस विभाजन के पीड़ित होते हैं उनको नमन किया जाता है। तो अगर आप इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो 14 अगस्त यानी कि आज कनॉट प्लेस सेंट्रल पार्क में पहुंच सकते हैं, और वहां पर जाकर आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। इसका उद्देश्य मैंने आपको बता ही दिया है कि संघर्ष जो थे विभाजन के, उन लोगों को जो उस के पीड़ित हैं उनके द्वारा झेली गई पीड़ा और जान गंवाने वालों को बलिदान, उनका बलिदान ही याद किया जाता है।

और इंडिपेंडेंस डे के चलते हुए मेट्रो की भी अपडेट आपको देते चलता हूँ, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन कल है और उसमें जो शामिल होने वाले गेस्ट हैं स्पेशल इनवाइट्स है, और आम जनता की सुविधा के लिए भी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन शनिवार यानी कि कल 15 अगस्त को अपने पूरे नेटवर्क के सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे से मेट्रो सर्विसेज शुरू करेंगी। रेगुलर टाइम टेबल के अनुसार नॉर्मल जो रेवेन्यू सर्विस शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइन्स हर 30 मिनट में उपलब्ध रहेंगी। और आपको ये बता देता हूँ कि जो गेस्ट है इनवाइट्स है कि उनकी यात्रा को स्मूथ और हैसल फ्री बनाने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 1,30,000 स्पेशल प्री वेंडेड QR टिकट्स उपलब्ध कराए हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। इसके अलावा अगर मैं बोलूं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा जारी किए गए वैलिड फिजिकल एडमिट कार्ड्स के साथ आने वाले इनवाइट्स हैं उनको डेजिग्नेटेड मेट्रो स्टेशंस पर भी स्पेशल प्री वेंडेड QR टिकट्स दिए जाएंगे ताकि उनकी यात्रा सुलभ रहे और आसान रहे। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशंस इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस वेन्यू के सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशंस हैं। तो अगर आप उस परेड को देखने जा रहे हैं, जो इंडिपेंडेंस डे का जो जश्न है उसको देखने जा रहे हैं, तो मेट्रो से जा रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट रहेगी। और अगर आप सुबह जल्दी उठकर टीवी पर और ये परेड देखना चाहें, ये जो इंडिपेंडेंस डे का हमारा महोत्सव है इसका पार्ट बनना चाहें तो भी आप बन सकते हैं, क्या हुआ अगर आप वहाँ नहीं जा पाए। बट ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है, इसका पार्ट, इसमें इसके जो जश्न है उसमें सम्मिलित हम सबको होना चाहिए। और भी बातें बताऊँगा आपको, अभी आपके लिए एक और बहुत ही खूबसूरत गाना।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: जी हाँ, आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम है सिटी लाइट्स और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना म्यूजिकल हम सफर आरजे निखिल वर्मा। और आपको बताता चलता हूँ कि इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष में ही आप जो है ऐतिहासिक भवन जो है हमारे दिल्ली विधानसभा का और उसके परिसर में भी जा सकते हैं। 14 और 15 अगस्त को ये आम लोगों के लिए खोला जाएगा और दोनों दिन शाम 5 से रात 8 बजे तक आप विधानसभा परिसर में प्रवेश कर सकते हैं और इसके इतिहास, विरासत और लोकतांत्रिक परंपराओं से रूबरू होने का भी आपको मौका मिलेगा। इसके लिए आपको कोई रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है, बस कैरी योर वैलिड आईडी कार्ड और वहां पर आपको CRPF और BSF जो सीमा सुरक्षा बल है हमारे, उनकी बैंड से देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी जाएगी। वहीं वहां साहित्य कला परिषद की ओर से भी कल्चरल प्रोग्राम्स आयोजित करे जाएंगे और ऐतिहासिक भवन है जो विधानसभा का, वहां पर शाम के समय में तिरंगे की रोशनी से भवन को भी सजाया जाएगा, तो एक लाइट शो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये भी बता देता हूं आपको कि जो आप विजिटर्स हैं और आप अपना आधार कार्ड या कोई भी वैलिड जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है वो ले जाना ज़रूर दिया जाएगा और ऑब्वियसली सुरक्षा जांच होगी, उसके बाद ही आप अंदर जा सकते हैं। तो अगर आपका प्लान है कि ऐतिहासिक विधानसभा भवन जो दिल्ली का है वहां पर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस में आप पार्ट लें, तो मेक श्योर कि आप अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएं और ऐसी कोई चीज़ ना लेकर जाएं साथ में जो सुरक्षा जांच में आपके लिए दिक्कत दे सके। और इसलिए जस्ट लाइट वेट अपना फ़ोन, अपना वॉलेट लेके जाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा ये अवसर है और आप लोगों के लिए, दिल्ली वासियों के लिए, कि आप दिल्ली विधानसभा में जाएं। 5 से 8 का समय रहेगा तो लेट तो बिल्कुल मत होइएगा। और आज यानी कि 14 अगस्त और कल 15 अगस्त ये 2 दिन के लिए है आयोजित किया गया है ये प्रोग्राम, तो बिल्कुल जाइए और देखिए क्या कुछ वहाँ पर होने वाला है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि देशभक्ति गानों को जो BSF CRPF है अपने बैंड के जरिए आप तक पहुँचाएंगे, तो इट विल बी यू नो सो ब्यूटिफुल आपके कानों में वो ध्वनि है देशभक्ति, तो आपके जो अंदर नेशनलिज्म है, पेट्रियोटिज्म है, वो अपने आप ही एकदम जाग जाएंगे एंड डेफिनेटली आप इसको एंजॉय करेंगे। अगर आपका कोई प्लान है वीकेंड है तो प्लीज़ जस्ट टेक सम टाइम आउट और जाइए और बोलिए भारत माता की जय।

जी हाँ, भारत की जय जयकार यूं ही होती रहे और हम अपना 80th यानी कि 80वां जो है स्वतंत्रता दिवस कल मना रहे हैं। तो बस आपसे यही कहूंगा कि अपना जो जोश है वो बरकरार रखिएगा, और आपको बहुत सारे मैंने अपडेट्स दिए हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। और ट्रैफिक की भी अभी आपको रियल टाइम अपडेट दे देता हूँ कि अभी भी बाबा बंदा सिंह बहादुर सेतु पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, रानी झांसी रोड पर भी ट्रैफिक बढ़ गया है, साथ ही साथ तिलक मार्ग पर भी ट्रैफिक बढ़ गया है। और जो भी इंडिपेंडेंस डे के रिस्ट्रिक्शंस हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया था, वो आज रात मिडनाइट से शुरू हो जाएंगे और फिर कल सुबह 10 बजे तक वो रिस्ट्रिक्शंस लगे रहेंगे। तो प्लीज़ घर से बाहर निकलेंगे तो ऑल्टरनेटिव रूट्स को देखिएगा ज़रूर, और पूरा ट्रैफिक एडवाइजरी जो दिल्ली पुलिस ने दी है उसके अकॉर्डिंग ही आप निकलिएगा, नहीं तो फिर आपको मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसलिए जस्ट एम्पल टाइम लेके निकलिए ताकि आपका जो ये राष्ट्रीय पर्व है इसको बनाने में आपको कोई दिक्कतें ना आए।

जी हाँ, भारत माँ के हम सभी रखवाले हैं और सभी जाने वाले हैं। और भारत माँ का जो राष्ट्रीय पर्व है इंडिपेंडेंस डे, इसको भी हर्षोल्लास के साथ मनाइएगा। और अभी वक्त हो रहा है कि मैं लूँ आपसे इजाज़त, लेकिन इस वादे के साथ कि मिलूंगा आपसे बहुत जल्द। और बताते चलता हूँ आपको एक लास्ट इवेंट जो कल खत्म होने वाला है, जो कि है भारतीय व्यापार महोत्सव, और ये मेक इन इंडिया का बहुक्षेत्रीय व्यापार एक्सपो है। तो अगर जनरल विजिटर्स के लिए ये दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहेगा, और कल ये लास्ट है। तो अगर कल आप यहाँ भी जाना चाहते हैं तो यहाँ भी जा सकते हैं। प्रवेश इसका निशुल्क है और आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर बस इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और यहाँ पे भारतीय संस्कृति, खान पान, विभिन्न राज्यों की संस्कृति, पर्यटन के रंग और पूरा इंडिया आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। फिलहाल मैं जाऊँगा यहाँ से, लेकिन इस वादे के साथ कि मिलूंगा आपसे बहुत जल्द। आप आपका बहुत सारा ध्यान रखिएगा। छोड़े जाऊंगा आपको बहुत ही प्यारे गाने के साथ, और मेरे बाद मैसेज मसाला मिक्स में आपके साथ रहेंगे सुनीता। तो सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।

नमस्कार, पेश है अब तक के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू होंगी। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रवर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भगोड़े ड्रग सरगना वीरेंद्र सिंह बसोया को संयुक्त अरब अमीरात से वापस लाने में सफलता हासिल की।

हो रहा है। प्रदर्शनकारी मौलिक अधिकारों, कथित हत्याओं के लिए जवाबदेही और नागरिक स्वतंत्रता पर लगाए गए कथित प्रतिबंधों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्व मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारत और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला कल से प्रतिष्ठित गोल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेली जाएगी। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: गुड इवनिंग, नमस्ते एंड सभी का स्वागत है इस शो में जिसका नाम है मैसेज मसाला मिक्स विद मी, माय नेम इज सुनीता शाबादी और ये स्टेशन ऑफ द नेशन दिल से दिल तक 102.6 एफएम आप सभी का स्वागत है इस शो में। और 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मेरा सवाल हमारे देश से ही जुड़ा है ऑब्वियसली, तो मेरा सवाल ये है कि आपकी नज़र में भारत खूबसूरत क्यों है? आपकी नज़र में आप क्या सोचते हैं, भारत इसलिए खूबसूरत है, भारत उस लिए खूबसूरत है? जो भी आप सोचते हैं वो हमें लिखिए 9868107070। शब्दों का चयन सही से हो और एक व्यक्ति एक ही मैसेज करे हमें 9868107070 पर। आपको ये बताना है कि आपकी नज़र में भारत खूबसूरत किस लिए है? आपके लिए ये गाना राष्ट्र के नाम और हम सब के नाम। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं।

और आज जी हमारे पास मैसेजेस आने शुरू हो गई हैं और सबसे पहला जो मैसेज है वो है मोहम्मद सरफराज आलम का, जो कि हरदर्शना बाजार से बिहार से कहते हैं कि मेरी नज़र में भारत इसलिए खूबसूरत है क्योंकि यहाँ विविधता में एकता सिर्फ नारा नहीं बल्कि हमारी पहचान है। यहाँ अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियां, धर्म और परंपराएं होते हुए भी दिलों में तिरंगे के लिए एक ही सम्मान और देश के लिए एक ही जज्बा है। भारत की मिट्टी, इसकी गंगा जमनी तहजीब, इसकी मोहब्बत और आपसी भाईचारा ही इसे दुनिया का सबसे खूबसूरत देश बनाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत खूबसूरत मैसेज है आपका, थैंक यू सो मच। सबसे पहले रेनबो परिवार को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे सबसे प्यारा है मेरा देश, महान भारत, हमें तो प्यारा सबसे ज्यादा हमें अपनी संस्कृति और त्योहारों के मनाने की आजादी और अपना हक मांगने की आजादी और अपने खुलकर विचारधारा बोलने की आजादी और सब त्योहार मिलकर मनाते हैं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। सोनू कहते हैं बिजनौर से, बहुत खूबसूरत मैसेज हो गए। महेंद्र सिंह जॉर्जिया मेरठ से कहते हैं भारत औरों से इसलिए अलग है क्योंकि इसमें विविधता में एकता है। बिल्कुल। और पंकज अमरावती महाराष्ट्र से कहते हैं गुड इवनिंग सुनीता, कार्यक्रम मैसेज मसाला मिक्स हम सुन रहे हैं, हैप्पी 80th इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। भारत में बहुत सी विविधता है लेकिन उस विविधता में भी एकता है, इसलिए भारत देश सबसे खूबसूरत है और सभी धर्म के लोग मिलजुल के साथ रहते हैं। भारत देश के सभी लोग स्वतंत्रता दिन का दिन बड़े उत्साह से मनाते हैं। और ये लिखा है शुभ संध्या जी, मैसेज मसाला मिक्स में एकता यही है भारत की विशेषता। हीरामणि वर्मा छत्तीसगढ़ से, ओके। एंड मेरी नजर में भारत खूबसूरत इसलिए है क्योंकि एकता में विशालता भारत है, सर्वधर्म खूबसूरती ये भारत है, तरक्की में आईटी सेक्टर में भारत आंका जाता है, गर्व है, कई भाषाओं का भारत है, जय हिंद, ऊंचा रहे तिरंगा हमारा। अनिल शर्मा वरिष्ठ जो हमारे श्रोता है सरिता विहार से, थैंक यू सो मच। एंड यस, हमारे देश पर हमें गर्व है एंड हमेशा सलामत रहे हमारा देश। दीपा बिजनौर से कहती हैं आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं, हमें तो अपने भारत देश के लिए यही कहना है कि जो आज़ादी हमें इस देश में देखने को मिलती है हमें और कंट्रीज में नहीं मिलती है। सभी धर्मों के लोग बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं और त्योहारों में भी शामिल होते हैं। बिल्कुल। एंड गाने बहुत खूबसूरत हैं, थैंक यू सो मच। और आपके सवाल का जवाब क्या है, आपकी नज़र में भारत खूबसूरत किस लिए है बताइए। मैसेज मसाला मिक्स कार्यक्रम लाजवाब चल रहा है और गीत भी बहुत अच्छे। मैं संगीता में पसंद आ रहा है नाइस प्रेजेंटेशन, माय नेम इज़ सुनीता एंड किशन मंजानिया, नीलम स्वाति और किशु रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से। आप मेरा नाम भूल गए इतनी जल्दी। ओके, आप भी मैसेज भेजिए 9868107070। आपकी नज़र में हमारा देश भारत किस लिए खूबसूरत है बताइए हमें 9868107070 पर। आपकी नज़र में आप क्या सोचते हैं कि मेरा भारत इसलिए खूबसूरत है क्योंकि यहाँ ये है, मेरा भारत इसलिए खूबसूरत है क्योंकि यहाँ ये है, बताइए हमें जल्दी से 9868107070। मैं हूँ आपके साथ सुनीता शाहपादी और ये खूबसूरत गाना भी आप ही के लिए।

0: नासा का जागृति यूनिट मुफ्त कानूनी सेवाओं के बारे में कानूनी सहायता के लिए कॉल करें 1500 पर।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग, मैं रजनी शर्मा फ्रॉम भागपत. हमारा भारत इसलिए प्यारा है क्योंकि हम भारतवासी हैं. भारतवासी होना हमारे लिए गर्व की बात है. डेफिनेटली हर घर तिरंगा. और कल आप अपने बालकनी में, अपने घर के बाहर तिरंगा ज़रूर फहराइएगा. और इसमें हमें बहुत गर्व, हम गौरवान्वित होते हैं, बहुत अच्छा लगता है. और दिनेश कुमार भंडारी कहते हैं तुलसीपुर नेपाल से, क्या अनेकता में विविधता है. और कश्मीर टू कन्याकुमारी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, अनेक वेशभूषा है, भाषा है, शैली है, बहुत सुंदर है. अनेक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं, जाति में एक रूप है, इसलिए मुझे राष्ट्र मित्र पसंद है. ओके, आप नेपाल से बोल रहे हैं, हमें भी नेपाल बहुत पसंद है. ओके, दानिश खतौली से कहते हैं कि कैसे हैं आप. मैं ठीक हूँ, वेलकम टू द शो एंड नाइस प्रेजेंटेशन. और एडवांस में शुभकामनाएं दी हैं, आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं. और आपने ये नहीं बताया कि भारत आपकी नज़र में खूबसूरत क्यों है. मैम वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप. मैं दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार. प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लग रहा है. और आपकी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी आरजीज को. और सभी के लिए लिखना है कि हमारा भारत देश बहुत सुंदर है, इसका इसके जैसा कोई नहीं है, इसीलिए भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है. थैंक यू, धन्यवाद. ओके एंड हेलो मैम, हाउ आर यू. क्योंकि यहाँ नदियों को माँ बोला जाता है, कोमल कहती है हरिनगर से. दैट्स रियली स्वीट अबाउट आवर कंट्री. मैसेज मसाला मिक्स में आपको प्यार भरा नमस्कार, आदाब. भारत देश प्यारा है हमारा, भारत देश खूबसूरत है हमारा, हर तरह का फूल गुलशन में महकता है, कितना सुंदर ये भारत देश है हमारा. गुन्नौर से आदिल कमर, तस्दीक अली, मुजफ्फर अली, थैंक यू सो मच. ये बिल्कुल सही कहा आपने. एंड और भी मैसेजेस आई हैं जो मैं पढ़ना चाहूँगी. एंड वो ये हैं कि सुदर्शन, अनीता एंड सिमरन मुखी शांतिनगर सोनीपत से कहते हैं कि हमारा और से आपको और एफएम परिवार को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं. कार्यक्रम हम सुन रहे हैं, हमारे देश की सुंदर संस्कृति और पर्वों त्योहारों का देश है ये, युवा देश है, सारे संसार से अच्छा भारतवर्ष हमारा. आपकी संध्या और जीवन बहुत शुभ और सुखद हो, कोटि कोटि धन्यवाद. ये तो आपने बहुत सही कहा, थैंक यू सो मच. और गाने की प्लेलिस्ट बहुत खूबसूरत है सुनीता जी. और भारत में लोग एकजुट होकर रहते हैं, कोला महाराष्ट्र से विजेंद्र कहते हैं. ओके एंड दिस वन इज जोया, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया. सिक इंडिया इज अ ब्यूटिफुल कंट्री बिकॉज ऑफ इट्स डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट वेदर. हाँ, मॉस्ट क्लाइमेट्स. ओके, इंडिया हैज़ कश्मीर, इंडिया हैज़ माउंट एवरेस्ट, इंडिया हैज़ ब्यूटिफुल बॉलीवुड एक्ट्रेसेस एंड एक्टर्स, एंड इंडियन पीपल आर सो टैलेंटेड दैट दे आर वर्किंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूएसए, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड मेनी मोर. एंड यहाँ पे बहुत सारे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, एक का नाम लूँगी तो बाकी सब नाराज हो जाएंगे, इसलिए सारे. ओके, दिस इज हेलो मैम, आई एम भुवनेश फ्रॉम अशोक विहार, दिल्ली. हाउ आर यू. आई एम good, and on today's topic I'd like to say that for me India is beautiful because India is not just a country, it's our mother. All the people of India live like a family. There are festivals which are beautiful, and the happiness of everyone becomes the happiness of others. There are problems everywhere, okay, but if we solve all problems together, there'll be happiness everywhere. Yes, there are problems everywhere. Aapki rozmarra ki zindagi mein bhi problem hote hain, lekin hum cheekhte chillate nahi hai na, hum unko solve karte hain aaram se, kaam dimag se. To desh mein bhi jab dikkatein aaye to miljul ke hame usko solve karna hai. नमस्कार, आपको कैसे हैं आप. मैं ठीक हूँ, मैं एकदम अच्छा हूँ. ओके गुड. रोज मैं और मेरा परिवार आपका प्रोग्राम सुनते हैं, पसंद भी आ रहा है, प्रोग्राम से अच्छी आपकी आवाज़ है, थैंक यू सो मच. जिला मुरादाबाद, ग्राम दोल्हापुर, उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तमनी, लक्ष, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवी सिंह. आपके लिए भारत देश खूबसूरत क्यों है ये बताइए हमें जल्दी से. दिनेश तायल कालका जी साउथ दिल्ली से कहते हैं, दिनेश तायल जी, अगर ज़िंदगी में हम पॉजिटिव रहें तो हमें पॉजिटिव ही दिखेगा. हम अगर खुद कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रहे हैं तो फिर हमें हमेशा दूसरों की गलतियां चिमटे से निकालना बहुत आसान होता है. जब आप सुबह उठते हैं तो आप ये सोचते हैं कि आज मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है. कोई ये नहीं सोचता कि मुझे एक और मौका मिला है, मुझे एक और दिन मिला है, एक सांस मिली है जिससे मैं ज़िंदा हूँ, और मुझे मौका मिला है कि मैं ज़िंदगी में कुछ कर सकता हूँ. ऐसे हमारे देश की बात है. तो ये आप भी याद रखिए कि
हमारा भारत महान है क्योंकि आकाशवाणी जैसा रिलायबल रेडियो नेटवर्क है. और थैंक यू सो मच. एंड दिस वन इज शुभ संध्या जी, रानी छाया रानी नाम है और नवली गाजीपुर उत्तर प्रदेश से. राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सभी को शुभकामनाएं. हमारा भारत हमें प्यारा इसलिए है क्योंकि यहाँ सभी त्यौहार आपसी भाईचारे के साथ मनाए जाते हैं. गुड इवनिंग, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल. इंडिया इज ब्यूटिफुल बिकॉज पीपल ऑफ एवरी रिलीजन लिव हियर हैप्पीली. लेट्स टेक इंडिया टू न्यू होराइजन्स. रंजीत कुमार चंदन जिरकपुर पंजाब से. बल्ले बल्ले, थैंक यू, वेल सेड. एंड आपने दो बार कहा अनेकता में विविधता, ये गलत है, अनेकता में एकता इज करेक्ट. हाँ संजय श्रीवास्तव, मैंने विविधता तो नहीं कहा. ओके सॉरी इफ आई सेड दैट. ओके भारत माता की जय. सरहदों पर वीर सैनिक दुश्मनों के सिर कुचलते जाएंगे. मेरे प्यारे ये तिरंगे हर तरफ लहराएंगे, हर तरफ लहराएंगे. प्रेमचंद प्रेमी जी, थैंक यू सो मच. एंड जरूर लहराएगा और हमेशा लहराता रहेगा टिल इटर्निटी. ओके नमस्ते, गुड इवनिंग. मैं नीता अमरावती से आप सभी एफएम टीम को मेरी तरफ से एडवांस में स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं. भारत हमको जान से प्यारा है. भारत में विविधता में एकता है. गंगा जमुना सरस्वती अपने भारत देश में ही बहती हैं, इसीलिए मुझे भारत देश बहुत पसंद है. वंदे मातरम, भारत माता की जय. भारत माता की जय. एंड वी हैव सम मोर मैसेजेस. ओके नाउ वी हैव मोर मैसेजेस कमिंग अप, लेकिन मैं एक गाना बजाऊंगी और आप मुझे भेजेंगे ढेर सारी मैसेजेस जिसमें आप ये बताएंगे कि आपकी नज़र में हमारा भारत देश खूबसूरत क्यों है. ये आपकी नज़र से मैं जानना चाहती हूँ. और 9868107070.

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
3: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
4: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
5: वंदे मातरम। प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम 1 की लॉन्चिंग, $5 trillion की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
6: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
7: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
8: ऑलराइट जी, हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं और बहुत खूबसूरत हैं। और रेशम कुमारी कहती हैं, गीता से मिला ज्ञान और रामायण से मिले राम, भाग्य से मिला हिंदू धर्म और सौभाग्य से मिला हिंदुस्तान। आई लव माय इंडिया। एंड दिस वन इज हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मैम। चित्रा कपिला फ्रॉम सिटी, ब्यूटिफुल सिटी चंडीगढ़। हमारे देश भारत अपनी अद्भुत प्राकृतिक विविधता, अनोखी संस्कृति, महान इतिहास और अनेकताओं में एकता के अनूठे भाव के कारण दुनिया का सबसे सुंदर देश कहलाता है। उत्तर में प्रहरी खड़ा हिमालय, दक्षिण में लहराता समुद्र, पवित्र नदियां और हर कोने में बसने वाले मिलनसार लोग इसे सबसे न्यारा बनाते हैं। एब्सोल्युटली। एंड दिस वन इज नमस्कार। हमारे देश के उत्तर से लेकर दक्षिण एंड पूर्व से लेकर पश्चिम तक तमाम विविधता के बावजूद हम सब तिरंगे के नीचे एक हैं, यही बात भारत को एक महान देश बनाती है। रवि जोशी मेरठ से। एब्सोल्युटली। एंड दिस वन इज मैसेज मसाला मिक्स। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हार्दिक शुभकामनाएं। अनगिनत शहीदों के बलिदान के बाद हमें आजादी मिली है। आज विभाजन विभीषिका दिवस भी है। जिन लोगों ने विभाजन के समय अपने प्राण गंवाए, उन्हें भी हमारा नमन। भैरूलाल वाक्तरिया धाकड़, उन्हेल जिला, उज्जैन, मध्य प्रदेश। यस, थैंक यू सो मच। एंड हमारा दिल से कोटि कोटि नमन है उनको। हेलो जी, भारत के वेज खाने और स्वीट्स का कोई जवाब नहीं दुनिया भर में। सनी फ्रॉम जर्मनी। वेज खाने, यहाँ तो बहुत ही अच्छे खाने मिलते हैं, तरह तरह के, और जितनी वैरायटी कहीं नहीं मिलती है, सीरियसली। एंड भारत माता की जय। वक्त पड़ा है जब भी कोई सबको साथ निभा है, स्नेह समर्पण और अपनी पलकों पर बिठाया है स्वाभिमान पर, आंच आए तो अपना खून बहा दो। तुम मेरे देश की माटी ने तुम तो मुझको ये सिखलाया है, मुझको ये सिखलाया। ओके, थैंक यू प्रेमचंद जी। एंड आप भी मैसेज कर सकते हैं, अभी आपके पास समय है। आपको ये बताना है कि आपकी नज़र में भारत देश खूबसूरत किस लिए है, ये बताइए हमें। और हमारे पास एक और मैसेज आया है जो मैं पढ़ना चाहूँगी, और बहुत लंबा मैसेज है। लेट्स रीड इट। जसपुर रोड दुल्हापुर जिला मुरादाबाद से महबूब दुकानदार, बेगम साहिबा महबूब, मोहम्मद समीर अंसारी, मोहम्मद वारिस अंसारी, बेटी अलशिफा अंसारी। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शायरी। वे जिस देश के लिए लड़े वो देश हमारा है। आज उस देश का हर बच्चा भारत का तारा है। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ यही है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। शायरी और लिखी है आपने, कतरा कतरा भी वतन के नाम हो जाए, ये जिस्म इस पावन मिट्टी के काम हो जाए। मांगे अगर खुदा मुझसे वतन के वास्ते जान, तो हंसते हंसते ये बंदा कुर्बान हो जाए। कुछ अनमोल बातें और विचार। आज़ादी सिर्फ एक अधिकार नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। आइए स्वतंत्रता दिवस पर संकल्प लें कि हम अपने देश को और अधिक सशक्त, सुंदर और सुरक्षित बनाएंगे। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, सूरज की किरण चाहिए एक दिया जलाने के लिए, एक अकेला भारतीय काफी है इस देश की शान बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच, दैट वाज अ वेरी नाइस मैसेज एंड गॉड ब्लेस यू। और हम सब के विचार ऐसी ही हों और हम अपने देश की आन बान शान हमेशा कायम रखें और इस देश के लिए प्रार्थना करें भारत माता की जय और वंदे मातरम। हमेशा हमारा देश आबाद रहे और खुशहाल रहे। मेरा हिंदुस्तान इसलिए खूबसूरत है क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैंने हिंदुस्तान में जन्म लिया है। जावेद आलम मोहम्मद, जयान रुखसार, जयपुर से। बिल्कुल, ये तो सबसे बड़ी खूबसूरत बात है और गर्व की बात है हम सब के लिए कि हमने भारत देश में जन्म लिया है, इस मिट्टी में जन्म लिया है और ये देश मेरा हमेशा कायम रहे। ये गाना आपके लिए सुना रही हूँ और आप मुझे मैसेजेस भेज सकते हैं। अभी भी आपके पास समय है, 6:41 हुए हैं। मैं हूँ आपके साथ सुनीता शाहवादी और आज मैंने आपसे पूछा है कि आपकी नजर में हमारा भारत देश खूबसूरत किस लिए है। बताइए हमें 9868107070 पर।

0: के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: अंशी शर्मा हस्तिनापुर मेरठ से कहती हैं कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और सभी लिसनर्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि आज के टॉपिक पर कि देखा जाए तो मुझे लगता है कि हमारा देश भारत सारे जहाँ से अच्छा है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और हमारे वीर जवानों को शत शत नमन, जय हिंद जय भारत। मैं अंशी शर्मा हूँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एंड ये लिखा है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, आई लव माई कंट्री, शैलजा फ्रॉम नीमराना, एस वी ऑल लव आर कंट्री। गुड्डू धाकड़ उज्जैन जिले के बिडावन गांव से कहते हैं कि रंग रूप अलग, वेशभूषा खान पान अलग, भाषा बोली अलग, धर्म अलग, फिर भी सबका सम्मान, यही हमारे देश की विशेषता है। एब्सोल्युटली। राजकुमार की संतानी कौल महाराष्ट्र से, गुड इवनिंग जी, आप कैसे हो जी? गीत संगीत आपकी बातचीत भी बहुत अच्छी है जी। जी जी थैंक यू सो मच। और आपने कहा है जी कि हमारा देश भारत बहुत महान है, वंदे मातरम। नमस्कार आपको। एंड दिव्यांशु यादव, वसुंधरा यादव कह रहे हैं कि सुनीता आप कैसे, मैं ठीक हूँ। और खिड़की जिला बिजनौर से आपने ये कहा कि आप सभी को और सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। उस दिन आपने क्रांतिकारियों को याद करने का प्रयास करें, बिल्कुल। एंड दिस वन इज, भारत इसलिए मेरे लिए अच्छा है क्योंकि यहाँ पर हर 15 से 20 किलोमीटर में भाषा का बदलाव हो जाता है, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर एक राज्य का अपना एक अनूठा कल्चर देखते ही बनता है। मनीष गौड़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से, ये तो सही है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, मैंने भारत में जन्म लिया है, भारत मेरी जन्मभूमि है, ये मुझे जान से भी प्यारी है। कैलाश शर्मा गुरुग्राम से, हम सबकी जान है ये जी। सबसे प्राचीन संस्कृति है भारत, युवा देश है भारत का, लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जनसंख्या भी नंबर वन है, भारत ऋतुओं का देश है, यहाँ लगभग सभी ऋतुओं का आनंद मिलता है। सबसे बड़ी बात, भारत के सभी लोग दिल से जीते हैं। प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से, हाँ ये तो सही है। भारत माता की जय। और अभी भी आप मैसेज कर सकते हैं, और प्लीज़ मुझे रिकॉर्डेड मैसेज मत भेजिए, मैं उसको सुन के आपका मैसेज है नहीं कर सकती। आप मुझे लिखित भेजें जो भी आपके विचार हैं। और सबसे पहले, भारत विश्व गुरु है, भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है, भारत युवा देश है, भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे, ओके ये तो मैंने भी पढ़ा था। और थैंक यू सो मच। एंड आप अभी भी मैसेज कर सकते हैं 9868107070।

ऑलराइट जी, आज मेरा टाइम होने चला है बिकॉज अभी थोड़ी देर बाद ही हमारी स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश होगा। लेकिन उससे पहले एक मैसेज जो मैं पढ़ना चाहूंगी। शुभ संध्या आदरणीय सुनीता शाहवादी जी, आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, वंदे भारत स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है, इसीलिए प्यारा है। विभिन्न कल्चर आपसी सौहार्द हमें महान बनाते हैं। देहरादून से आलोक पवार और मिनी, थैंक यू सो मच एंड मैसेज पढ़ने के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। काजल उत्तराखंड से कहते हैं, मुझे भारत इसलिए प्यारा है क्योंकि भारत में अपनापन मिलता है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। मैं जमशेदपुर से हूँ, परमेश्वर शर्मा, और भारत में हम लोग बहुत शांति से रहते हैं। मैं जापान ट्रिप किया है एक वीक से, जेल जैसा फील होता नहीं यार, तो जापान तो बहुत खूबसूरत कंट्री है और मुझे अपना देश बहुत प्यारा लगता है और मैं वापस आना चाहता हूँ। एनी वेज, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस एंड गॉड ब्लेस यू। और तिरंगा फहराइए, शान से फहराइए और शान से कहिए कि वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं। और ये गाना आपके लिए, और एंजॉय एंड आई सी यू एट 8। बाय।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नाल सा। न्याय सबके लिए कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 1500 पर।
1: दिस इज आकाशवाणी। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे वी नाउ ब्रिंग यू ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मूज एड्रेस टू द नेशन।
2: ये आकाशवाणी है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब प्रस्तुत है भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश।

मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को मैं इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई देती हूँ। आपसे कुछ ही घंटों बाद हमारे देश की स्वाधीनता के 80वें वर्षों का शुभारंभ होगा। देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीय ये पर्व उल्लास के साथ मनाते हैं। हमारा तिरंगा हमारे स्वाधीनता का प्रतीक है, इसे हम पूरी शान से फहराते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत माता पराधीनता के बेड़ियों से मुक्त हुई। सभी देशवासी स्वतंत्र भारत की नियति के निर्माता बने। हम भारत के लोग अपने सपनों को साकार करने के अवसरों का उपयोग कर सके और भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की भावना से कार्य करें, इसी में स्वतंत्रता की सार्थकता है। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान अपने प्रयासों से राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। प्रतिभावान खिलाड़ी, शिल्पकार तथा कलाकार, मार्गदर्शक बुद्धिजीवी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की टीमों के कर्मठ सदस्य, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी, कार्यनिष्ठ सिविल सेवक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक, निस्वार्थ समाजसेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता, हमारे सभी सफाई मित्र देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में सक्रिय असंख्य देशवासी तथा संविधान में निहित मूल कर्तव्यों का पालन करने वाले सभी नागरिक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदार है। मैं उन सभी के हृदय से सराहना करती हूँ। तीनों सेनाओं के जवानों, सभी सशस्त्र पुलिस बलों एवं पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा के लिए मैं उनकी विशेष सराहना करती हूँ। विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों और दूतावासों में कार्यरत देशवासियों की मैं प्रशंसा करती हूँ। प्यारे देशवासियों, स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अंत्योदय की भावना के साथ हमारा संकल्प है कि विकास के लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। अपनी समृद्ध विरासत और स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों को अपनाते हुए हम आधुनिक विकास के मार्ग पर अग्रसर हैं। वयं राष्ट्रे जागरूयाम, ये वेदवाक्य हमें प्रेरणा देता है कि हम राष्ट्र के लिए सदैव जागरूक रहे। हमारे स्वाधीनता संग्राम

में संघर्षरत अलग अलग विचारधाराओं के लोगों का लक्ष्य एक ही था, भारत की स्वतंत्रता। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम जन जन के गीत बन गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में अनगिनत देशवासी स्वाधीनता संग्राम से जुड़ गए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज सुधार तथा राष्ट्र निष्ठा के उच्च आदर्श प्रस्तुत किए। भारत माता की उन सभी महान संतानों को मैं सादर नमन करती हूँ जिनके आदर्श पर चलते हुए हमारा देश स्वतंत्र हुए और आगे बढ़ा। आज 14 अगस्त के दिन को हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। हम उन लाखों देशवासियों को याद करते हैं जो विभाजन से जुड़े हिंसा में मारे गए या विस्थापन की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए। सांप्रदायिक हिंसा की वजह से लाखों लोगों को शरणार्थी बनना पड़ा और बंटवारे की विभीषिका सहन करनी पड़ी। फिर भी उन्होंने अपनी पहचान नहीं छोड़ी। जब हमारा देश स्वतंत्र हुए उस समय देश के विभाजन के गंभीर परिणामों के साथ साथ 550 से अधिक रियासतों को नव स्वाधीन भारत के साथ जोड़ना भी एक असाधारण चुनौती थी। सरदार पटेल ने राजशाही व्यवस्थाओं को समाप्त करके हमारे स्वाधीन लोकतंत्र में उनका विलय किया। एक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से आधुनिक भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पावन स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ। प्यारे देशवासियों, भारत के लोगों द्वारा निर्मित हमारे संविधान नागरिकों की भागीदारी पर आधारित है। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि के निवासियों में जन भागीदारी की भावना सदा से विद्यमान रही है। उस भावना को नई ऊर्जा के साथ हमारे देशवासी आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय अभियानों को जन भागीदारी से आगे बढ़ाया जा रहा है, ये हमारे लोकतंत्र की प्रेरक उपलब्धि है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्रों में असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरी भी कर सकता है। हमारे संविधान में कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका के उत्तरदायित्व का स्पष्ट उल्लेख है। जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वे विधायिका में जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करें। कार्यपालिका का कर्तव्य है कि जनहित और राष्ट्रहित की नीतियों को कार्यरूप दे। न्याय व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि अभाव के कारण कोई व्यक्ति न्याय से वंचित ना रहे। हर नागरिक को, विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों को समानता के आधार पर सम्मान के साथ समय से न्याय मिलना चाहिए। प्यारे देशवासियों, पिछले एक दशक से कुछ अधिक समय में हमारे देश ने तेज गति से समावेशी विकास किया है। विरासत और विकास के समन्वय को प्राथमिकता दी है तथा विकास में बाधक दशकों पुराने अनेक अवरोधों को दूर किया है। हमारे देशवासी महात्मा ज्योतिबा फुले की 100वीं जयंती मना रहे हैं। महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उनके आदर्शों के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्यों को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है। महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के नए प्रतिमान स्थापित हुए हैं। 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाने में सफलता मिली है। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश की योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लगभग 69 करोड़ खाता धारक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुके हैं। उनमें 32 करोड़ से अधिक महिला खाता धारक शामिल है। 80 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था द्वारा उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपया तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए गए हैं। किसान सम्मान निधि तथा
किसान क्रेडिट कार्ड से खेती, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसे गतिविधियों से जुड़े किसान भाई बहनों को संबल मिला है। विश्व का इतिहास साक्षी है कि सांस्कृतिक आत्मबल पर आधारित विकास गतिमान और स्थायी होता है। आज देश में ये चेतना बलवती हो रही है कि सांस्कृतिक गौरव का भाव देश की संप्रभुता को आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। हमारे पूर्वजों ने ज्ञान विज्ञान, कला संस्कृति, अध्यात्म और सदाचार की अनमोल विरासत सौंपी है। हम विरासत और विकास के समन्वय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सरकार ने जन कल्याण की सुविधाओं को पारदर्शी तरीके से जन जन तक पहुंचाया है। हमारे देश में हाईवेज, वाटरवेज, रेलवेज और एयरवेज के रूप में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। इससे नए उद्यमों के लिए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, नए रोजगारों का सृजन हो रहा है तथा निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है। प्यारे देशवासियों, विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध एवं अस्थिरता का सभी देशों पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में आगे बढ़ रही है। आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत के विकास दर विश्व की औसत विकास दर की तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है। आधुनिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी भारत विश्व स्तर पर अग्रणी योगदान दे रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 के कुछ लक्ष्यों को हमारे देश ने समय से पहले ही प्राप्त कर लिया है। रिन्यूएबल एनर्जी के विकास को पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व गति मिली है। हमारी विदेश नीति देश हित पर आधारित है। शांति, सहयोग, संवाद तथा वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श हमारी विदेश नीति के स्तंभ है। आर्थिक सहयोग बढ़ाने तथा पारस्परिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए हमने अनेक देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। ग्लोबल साउथ के देशों में हम अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। विश्व पटल पर हमारे देश का सम्मान बढ़ा है। हम रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर में विश्वास रखते हैं। हमारे प्रयास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सहित मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस में विश्व समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व हो। हमारे इस प्रयास को अनेक देशों का प्रबल समर्थन मिल रहा है। प्यारे देशवासियों, प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारे प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें। पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी आस्था हमारी परंपरा का हिस्सा है। संताली भाषा के एक सरल गीत में हमें गहरा संदेश मिलता है। पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा रचित उस गीत के कुछ शब्द इस प्रकार है। दारे गुजुक कान नेलते मिरु चणे राग बया दाया हाया गे गुजुक कान अबुआ जति धर्म दारे चेदा बाबन राग बया आबो ओना नेलते। इस गीत में एक पेड़ के पूरी तरह सूख जाने के कारण रोते हुए एक तोते का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं, हे मेरे भाइयों, मरते हुए पेड़ को देखकर तोता पक्षी दुख भरी आवाजों में रो रहा है। हे मेरे भाइयों, मानव संस्कृति रूपी वृक्षों का विनाश होता देखकर हम मानव समाज के लोग
विलाप क्यों नहीं कर रहे? इस गीत का

बस ये है कि सभी मनुष्य को मानवीय मूल्य और प्रकृति के संरक्षण के लिए तत्पर रहना चाहिए। एक हरा भरा पेड़ मानव समाज के नैतिक और स्वस्थ रहने का प्रतीक है। एक पेड़ माँ के नाम तथा लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट यानी लाइफ जैसे अभियानों की भावना के अनुरूप सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास करना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बेटियां प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही कृषि उत्पादकता बढ़ाने में योगदान देने वाले ड्रोन दीदी से लेकर वायुसेना में फाइटर कॉम्बैट लीडर बनने तक विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। हाल ही में ग्लासगो में संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के कुल 13 स्वर्ण पदकों में 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। स्वयं सहायता समूह की 10 करोड़ से अधिक महिला सदस्य है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया था। इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है। अब हमारे देश 3 करोड़ महिलाओं को नई लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मुद्रा योजना के तहत सहायता प्राप्त करने वाले उद्यमियों में लगभग 2/3 लाभार्थी महिलाएं हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रयासों के साथ साथ हम देख रहे हैं कि वे विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। मतदान में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी हमारी गणतंत्र की विशेष सफलता है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का 33% प्रतिनिधित्व आरक्षित करने के लिए वर्ष 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया जा चुका है। इस अधिनियम के लक्ष्य को प्राप्त करने से महिलाओं का नेतृत्व बढ़ेगा तथा हमारे लोकतंत्र और अधिक समावेशी बनेगा। देश की कुल आबादी में 65% लोगों की आयु 35 वर्ष से कम है। ये युवा आबादी हमारी सबसे मूल्यवान संपदा है। हमारे देश के युवा टैलेंटेड है, कमिटेड है और स्किल्ड है। जमीनी स्तर पर युवाओं द्वारा किए गए विभिन्न समस्याओं के इनोवेटिव और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को देखकर मुझे समाज और देश के लिए उनकी प्रतिबद्धता का परिचय मिलता है। केवल 28 वर्षों की औसत आयु वाली युवा टीम द्वारा हाल ही में रॉकेट का सफल प्रक्षेपण करके अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए चरण का शुभारंभ किया गया है। हमारे अनेक युवा स्वरोजगार के मार्ग पर चलते हुए रोजगार प्रदान करने की संस्कृति को अपना रहे हैं। युवा उद्यमियों की भागीदारी से हमारे देश में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित हुआ है। विश्व के बड़े बड़े उद्यम भारत के युवाओं की प्रतिभा और लगन से प्रभावित रहते हैं तथा उन्हें नेतृत्व की भूमिकाओं में नियुक्त करते हैं। ऐसे युवाओं ने विश्व समुदाय में भारत की युवा शक्ति की साख बढ़ाए हैं। हमारी युवा पीढ़ी भारत के स्वर्णिम भविष्य के प्रति मेरी आस्था को और प्रबल बनाती है। हमारे विद्यार्थी भारत के भविष्य निर्माता है। जिस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार और समाज का एकजुट रहना जरूरी है, उसी तरह विद्यार्थियों के वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा के लिए भी सभी के सम्मिलित प्रयास जरूरी है। सार्वजनिक परीक्षाएं विद्यार्थियों के लिए अवसर के द्वार खोलती है, इसीलिए सरकार इन परीक्षाओं में सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है। इन सुधारों का उद्देश्य है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर पूरी तरह से अंकुश लगे, परीक्षा प्रणाली और अधिक पारदर्शी तथा युवाओं के लिए सुरक्षित एवं भरोसेमंद हो। सरकार के प्रयासों तथा नई आर्थिक गतिविधियों से युवाओं के लिए अनेक प्रकार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करके हमारे युवा सफलता के नए मार्ग चुन सकते हैं। हमारे युवाओं का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य देश के भविष्य का आधार है। परिवार और समाज की भी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहे। खेल कूद को युवाओं के विकास और राष्ट्र निर्माण के माध्यम के रूप में अपनाया जा रहा है।
खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक देश के सभी क्षेत्र के लिए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम उपलब्ध कराया जा रहा है। खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। इन प्रयासों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में हमारे खिलाड़ी प्रदर्शन और उपलब्धियां के उच्च शिखरों तक पहुंच रहे हैं। एक ओर हमारे देश में सबसे बड़ी युवा आबादी है तो दूसरी ओर वरिष्ठ नागरिकों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। 70 साल और उससे अधिक आयु के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध है। वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपनेपन की भावना तथा उनके आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए पूरे समाज को संवेदनशील रहना चाहिए। प्यारे देशवासियों, सत्य और न्याय के पक्ष में मानवता विरोधी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने की भारतीय परंपरा पर हम गर्व करते हैं। 26 जुलाई को हमने कारगिल विजय दिवस मनाया है। उसके पहले 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के आरंभ का 1 वर्ष पूरा होने पर हमने अपनी सेनाओं के अतुल्य पराक्रमों को स्मरण किया। आतंकवाद के विरुद्ध ओ ऐतिहासिक ऑपरेशन भारतीय सेनाओं की अचूक क्षमता का प्रमाण है। आतंकियों और उनके समर्थकों को एक कठोर संदेश दिया गया कि वे चाहे कहीं भी जाकर छुप जाए, लेकिन उन्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। आतंकवाद को संरक्षण देने वाले देश के साथ अतीत में की गई सिंधु जल संधि का निलंबन करना हमारे देश के विशेषकर किसानों के हित में एक निर्णायक कदम है। दशकों से नक्सलवाद देश के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ था। भारत को नक्सल मुक्त बनाना एक बड़ी उपलब्धि है। आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उत्साह का वातावरण है तथा विकास की सर्वस्पर्शी धारा प्रवाहित हो रही है। बस्तर ओलंपिक्स में खिलाड़ियों ने, बस्तर पंडुम में कलाकारों ने तथा इन आयोजनों में दर्शकों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। राष्ट्र गौरव की रक्षा हेतु निर्मित मराठा सैन्य परंपरा से जुड़े 12 दुर्गों को पिछले वर्ष यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में स्थान दिया गया है और इस वर्ष भगवान बुद्ध के प्रथम प्रवचन के स्थल सारनाथ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। भारत भूमि में एक और भगवान बुद्ध से जुड़े आध्यात्मिक स्मारक है तो दूसरी ओर आत्मसम्मान तथा अपनी गौरवशाली परंपराओं की रक्षा हेतु युद्ध करने की हमारी प्रभावशाली क्षमता के प्रतीक भी विद्यमान है। मेरे प्यारे देशवासियों, सभी भारतवासियों का विकास और कल्याण ही विकसित भारत के निर्माण का वास्तविक लक्ष्य है। तेलुगु भाषा में रचना करने वाले महान राष्ट्रवादी साहित्यकार गुर्जाड़ा अप्पा राव ने अपने एक गीत में सभी भारतवासियों को देश प्रेम का अमूल्य संदेश दिया है। उन्होंने कहा है, देश मुन्नु प्रेमिंचु मन्ना, मंची अन्नदे पेंचु मन्ना, देश मंटे मट्टी का दोई, देश मंटे मनुष्य लोए। इन पंक्तियों का भाव है, देश से प्रेम करो, भलाई को बढ़ाओ। देश का अर्थ केवल मिट्टी ही नहीं है, देश का अर्थ समस्त जन समुदाय है। मुझे विश्वास है कि समाज की भागीदारी और सरकार के प्रयासों से गांव-गांव में, नगर-नगर में, भारत के घर-घर में रहने वाले सभी लोग स्वस्थ, सुखी और समृद्ध बनेंगे। आइए देश प्रेम की इसी सर्वसमावेशी भावना के साथ हम सब स्वतंत्र भारत को विकसित भारत बनाने की राष्ट्रीय साधना में स्वयं को समर्पित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माय डियर फेलो सिटीजन्स, नमस्कार। ऑन द ईव ऑफ आवर इंडिपेंडेंस डे आई कन्वे माय वार्म ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस नेशनल फेस्टिवल। इन ए फ्यू आवर्स फ्रॉम नाउ our country will witness the auspicious beginning of the 80th year since its independence.
ऑल इंडियंस लिविंग इन द कंट्री एंड

0: On the eve of Independence Day, you were listening to Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu's address to the nation.
1: स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अभी आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश सुन रहे थे।
2: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

नमस्कार, पेश हैं अब तक के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान से देश की आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में लाल किले के आसपास आने जाने वाले यात्रियों के लिए यातायात संबंधी परामर्श जारी किया है। दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू होंगी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा डिजिटल रुपया शुरू किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जीएस पाटिल को कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। आज विभाषण विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्र वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भगोड़े ड्रग सरगना वीरेंद्र सिंह बसोया को संयुक्त अरब अमीरात से वापस लाने में सफलता हासिल की। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने कल तिरंगा यात्रा की घोषणा की। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला कल से प्रतिष्ठित गॉल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेली जाएंगी। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

वंस अगेन 8 बज चुके हैं और हमारा शो शुरू हो गया, जिसका नाम है म्यूजिक मस्ती। मैं हूँ आपके साथ फिर से सुनीता शाहबादी। वेलकम टू द शो। अस्सीवें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और आज तो हमारा नाचना गाना और खुश होना अपने देश के लिए बनता ही है।

0: फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
1: वंदे मातरम प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम 1 की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में

0: 40 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: करनाल साहब। न्याय सबके लिए कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 1500 पर।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

ऑलराइट जी, मेरे जाने का टाइम हो चला है. आई विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. आप सभी को शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं. हमारा देश आबाद रहे, खुशहाल रहे और सारे जहां में चमकता रहे. गॉड ब्लेस अस ऑल एंड गॉड ब्लेस भारत देश. आई विल टेक लीव ऑफ यू, यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स. बाय बाय.

0: वाणी आकाशवाणी, ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं द आकाशवाणी पॉडकास्ट।
1: तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। जी हाँ, यही वो भाव थे जिसने हमारे देश की आजादी के आंदोलन को प्रबल बनाया था और यही वो भाव हैं जो कि आज भी हमारे देश की सीमाओं को अक्षुण रखे हुए हैं। और जब बात होती है देश प्रेम की और मौका है स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर का और देश मना रहा है वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ, तो ऐसे में वंदे मातरम को और करीब से जानने के लिए मैं रुचि जोशी आपके लिए लेकर आई हूं हमारा स्पेशल पॉडकास्ट, जो कि रक्षा मंत्रालय और ऑल इंडिया रेडियो के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। और वंदे मातरम को और करीब से जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर भुवन झा, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। स्वागत है सर।
2: नमस्कार
1: सर। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि वंदे मातरम का क्या संदर्भ है, क्योंकि इसकी महत्ता बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि हमारे देश की आजादी का एक विजय घोष रहा है, तो इसका हमें थोड़ा इतिहास के बारे में बताइए और आनंद मठ में इस गीत को लेने का क्या उद्देश्य था सर?
2: देखिए, यह विजय घोष भी है और मंत्र भी है
1: जी।
2: यह एक परतंत्र देश की आजादी का मंत्र है और एक अपनी धरातल तलाशने का मंत्र है। जिस युग में बंकिम जी रहे थे, लिख रहे थे, वह भारतीय बौद्धिक जगत के उत्कर्ष का समय था। लोग अलग अलग धुरी ढूंढ रहे थे। एक जो पाश्चात्य दर्शन का प्रभाव था, उसके विरोध में भी एक सांस्कृतिक जागरण हो रहा है। और आप देखेंगे कि जो ब्रह्मों का प्रभाव है, जो एक मोनोथिज्म की बात हो रही थी और जो बार बार उपनिषदों की बात हो रही थी, वेदांत की बात हो रही थी, उससे आगे बढ़कर बंकिम पुराणों की बात कह रहे हैं, भागवत की बात कह रहे हैं, कृष्ण की बात कह रहे हैं, गीता की बात कह रहे हैं, और जो सगुण जो ईश्वर है उसको निराकार ब्रह्म से जोड़ करके एक जनमानस को संचालित करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आनंद मठ की रचना करते हैं, तब तक वह इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि जो भारत का शोषण हुआ पिछले 100-150-200 वर्षों में, उससे कैसे निजात दिलाई जाए। और जो आर्थिक राष्ट्रवादी थे वो पहले से इन बातों को लिख रहे थे कि बहुत ज्यादा शोषण हुआ है, लेकिन इनका एक अलग तरह का दृष्टिकोण था। इनका दृष्टिकोण यह था कि जिस तरह से यहां पर एक स्व का नाश हुआ, जो लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म हुआ, संस्कृति का ह्रास हुआ, हमने पाश्चात्य मापदंडों को अपनी प्रगति का सूचक मान लिया, जो हमारे नैतिक मूल्य थे उसको हमने उतनी तवज्जो नहीं दी, उतना मूल्य प्रदान नहीं किया नैतिकता।

0: विद्रोह करा, जो जिस तरह से बंगाल में शोषण हुआ उसके विरोध में उठ खड़ा हुआ है। और जंगल में एक आनंद मठ बनाते हैं, एक मठ बनाते हैं जहां जो लोग रह रहे हैं सत्यानंद के नेतृत्व में, वह सब अपने को संतान मानते हैं। वहीं उनको सत्यानंद उनको इंस्पायर करने के लिए, उन लोगों को इंस्पायर करने के लिए वंदे मातरम गीत गाते हैं। यह इसका संदर्भ है। और इसको 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने भी गाया, धुन भी दिया और इसको गाया भी राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। लेकिन जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ 1905 में तो इसको एक बहुत बड़ा राजनीतिक आधार मिल गया, वहीं से यह स्वतंत्रता का गीत बनता गया।
1: तो सर, जैसे आपने बताया कि हमारे देश में जो आज़ादी का दौर था, कहीं ना कहीं लोग स्व को भूल चुके थे, स्वदेशी को भूल चुके थे, और वंदे मातरम ने उनको याद दिलाया कि स्व क्या होता है। तो सर, हम आपसे थोड़ा विस्तार में जानना चाहेंगे कि स्वदेशी आंदोलन जब चल रहा था और जब बंगाल विभाजन का दौर था 1905 का, तो उस समय वंदे मातरम ने किस तरीके से लोगों के मन में देश के लिए, स्वदेश के लिए एक भाव उत्पन्न किए, उसका क्या रोल था सर?
0: देखिए, यदि आप थोड़ा और पृष्ठभूमि में जाएंगे
1: जी,
0: और जो कांग्रेस पार्टी बनी, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना, वहाँ वह अंग्रेजों का विरोध उस हिसाब से नहीं कर रहे हैं जैसा कि लोगों की इच्छा थी। वह भारतीयों के मुद्दों को पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो मॉडरेट फेज है इंडियन नेशनल कांग्रेस का
1: जी,
0: वह ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की तरफ देख रहा है, वह ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस की बात भी कह रहा है, उससे इतर होकर के एक अलग तरह का भाव उत्पन्न हो रहा है। इसमें शिवाजी, कृष्ण और शक्ति, इन तीनों को फिर से उठाने की, उभारने की कोशिश हो रही है। कृष्ण चरित लिखा बंकिम चंद्र ने भी, और अरबिंदो ने भी बाद में लिखा, गीता रहस्य तिलक ने लिखा, ब्रह्म बांधव उपाध्याय थे जो कि क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट कर गए थे, उन्होंने भी कृष्ण तत्व लिखा, रोमेश चंद्र दत्त ने महाराष्ट्र जीवन प्रभात लिखा, टैगोर ने 1904 में शिवाजी पर एक छोटा सा पैम्फलेट लिखा, एक निबंध लिखा, और शिवाजी उत्सव इन्होंने मनाया, तिलक ने मनाया। और शक्ति और तंत्र जो पूर्वी भारत में बहुत पुराने समय से चला आ रहा, उसको बंकिम ने पुनर्जीवित किया एक बड़े जनसमूह, जनसामूहिक स्तर पर। इसलिए आप देखेंगे कि शक्ति की आराधना हो रही। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, जब बंगाल का विभाजन होता है और वह सांप्रदायिक आधार पर हो रहा है, हिंदू मुसलमानों को विभाजित करने के लिए हो रहा है, तो एक बड़ा बड़ा विद्रोह शुरू होता है बंगाल, और लोगों को लगता है कि हमें इमैस्कुलेट कर दिया गया, हमें तो पूछा ही नहीं जो इतना बड़ा कदम उठाया, जो जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर इतना पड़ना है, उसका निर्णय अंग्रेजों ने खुद ही खुद ले लिया। तो उसके विरोध में बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, और वह आंदोलन जो पार्टीशन विरोधी आंदोलन है, वह धीरे धीरे स्वदेशी आंदोलन में परिवर्तित हो गया, उसका सकारात्मक पक्ष भी आ गया। जब वह स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, जब पार्टीशन का विरोध शुरू हुआ, वहां वंदे मातरम एक मंत्र के रूप में उभर करके आया, और उसी ने इंस्पिरेशन, द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग ऑफ द स्वदेशी आंदोलन वॉज वंदे मातरम। उसी प्रभात फेरी में भी वही गाया जा रहा है, जो कॉन्फ्रेंसेज हो रहे हैं वहीं पर गाया जा रहा है, कुछ इस हद तक कि 1905 से 8 के बीच में लोकल कमिटीज ने, लोकल इंटेलिजेंस एजेंसीज ने वंदे मातरम गाने पर कई जगहों पर रोक भी लगा दी। और 1906 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन था कलकत्ता में, वहां टैगोर के परिवार की सरला देवी चौधरानी को गोखले ने बुलाया गाने के लिए, उन्होंने गाया, लेकिन इशारा यह था कि इतना स्पष्ट मत गाइए कि लोगों को पता चल जाए, अंग्रेजों को पता चल जाए कि ये वंदे मातरम का ही गायन हो रहा है। तो जहां 7 करोड़ का फिगर था, उसको उन्होंने 30 करोड़ का फिगर बना दिया।
1: अच्छा।
0: तो उस तरह से थोड़ा बहुत एब्रीविएट करके उसको सरला देवी चौधरानी ने गाया
1: जी।
0: और 1906 में ही बारिसाल में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, अप्रैल 1906 में। आप मान सकते हैं कि जनमानस के, मतलब एक बड़े समूह में पहली बार इसको गाया गया, जिस पर कि लाठी चार्ज हुआ, इसको बैन किया गया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी लीड कर रहे थे, इन सबको अरेस्ट किया गया, अश्विनी दत्त वहां के लोकल लीडर थे, और वहां से यह और भी विस्तार हुआ। बिपिन चंद्र पाल ने वंदे मातरम अखबार शुरू किया, और कुछ ही महीनों में उसका एडिटरशिप अरबिंदो ने ली। तो अरबिंदो ने बंकिम को राष्ट्रीय ऋषि की संज्ञा दी, और एक और अखबार वह संपादित करते थे, सांध्य। तो सांध्य में उन्होंने लिखा कि हर शहर में, हर गांव में आनंद मठ बनना चाहिए। यदि हर शहर में, हर गांव में आनंद मठ बनेगा, तो जो 7 करोड़ लोग है जिसकी चर्चा वंदे मातरम में हो रहा है, और 1872 के सेंसस पर आधारित था वो फिगर, और जो 14 करोड़ भुजाएं हैं, वह अवतरित हो जाएंगी, वह

0: आगे आ जाएंगी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए। वह जो इंस्पिरेशन है वह आगे बढ़ाने का काम अरविंदो ने किया। अरविंदो की भाषा बहुत प्रखर थी। अरविंदो वॉज ए वेरी जीनियस, वॉज ए वेरी एक्सेप्शनल माइंड, तो उनकी लिखनी का असर बहुत ज्यादा हो रहा था। और वंदे मातरम सिर्फ वही नहीं रुका, आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में, पंजाब में, उत्तरी भारत में, दक्षिणी भारत में, हर जगह वंदे मातरम गाया जा रहा है और विदेश में भी। 1906 में जब यह आंदोलन जोर पकड़ रहा है तो बंगाल में वंदे मातरम की का झंडा भी फहराया जा रहा है, जहां बीच में वंदे और तीन रंग का है, बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ है, उसी तरह का झंडा, एग्जैक्टली सेम नहीं, कलर पैटर्न वही है लेकिन फोटोग्राफ्स कुछ अलग हैं, उसी तरह का झंडा मैडम भिकाजी कामा ने स्टुगर्ट में 1907 में जब इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उन्होंने उस झंडा को वहां फहराया, जिसको हम इतिहासकार यह भी मानते हैं कि पहली बार भारतीय झंडा को फहराया गया वहां पर फहराया गया। और मैडम भिकाजी कामा ने वंदे मातरम अखबार भी शुरू करवाया, सपोर्ट किया वहां पर, पहले जिनीवा में और बाद में बर्लिन में, और उसके हरदयाल, जो लाला हरदयाल जो वहां से आए थे अमेरिका से, उन्होंने उसको संपादित करना शुरू किया, यहीं दिल्ली से गए थे पहले
1: जी जी।
0: और वीवीएस अय्यर ने भी किया, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने भी किया। उस वंदे मातरम की जब प्रति महाराष्ट्र में आ रही थी तो यहां पर उसको बैन लगा दिया गया। तो वंदे मातरम जो एक्सपैट्रिएट इंडियंस है, रिवोल्यूशनरीज हैं, जो विदेशों में रह रहे हैं, उसको भी इंस्पायर करने का काम कर रहा है। देश में तो है ही, जैसे आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहां भी वंदे मातरम गाया जा रहा है। और इस अवधि में 1908 के बीच में कई भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। जो बहुत बड़े राष्ट्रवादी कवि थे सुब्रमण्यम अय्यर तमिलनाडु के, उन्होंने दो बार इसका अनुवाद किया, दो अलग अलग संदर्भों में, 1905 में, 1908 में। गुजराती में भी इसका अनुवाद हुआ, मराठी में हुआ, तेलुगु में हुआ, मलयालम में हुआ, उर्दू में हुआ, हिंदी में हुआ, कई भाषाओं में दर्जनों से ज्यादा ट्यून बने। आज के समय में देखेंगे तो 100 से ज्यादा ट्यून आपको मिलेंगे वंदे मातरम का। और कुछ जो संस्कृति विभाग ने एक वेबसाइट डिजाइन करके उसमें बहुत सारे ट्यून रखे भी हैं, जो अलग अलग ट्यून में कब कब गाए गए गाना को। तो यह अद्भुत है, इसमें इंस्पिरेशन है और इसके शब्द और इसका धुन, वह दोनों ही कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित करता है आगे बढ़ने के लिए।
1: तो सर, जैसे आपने मेंशन किया कि वंदे मातरम को उस समय काफी जगह बैन कर दिया गया था, तो क्या हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्वाधीनता संग्राम था उसमें वो बैन करना वंदे मातरम एक कैटलिस्ट के रूप में उभर के आए?
0: बिल्कुल बिल्कुल, जब आप किसी चीज को बैन करते हैं तो लोग और उसको गाना चाहते हैं। और कोई ऐसा नहीं है कि कोई अखिल भारतीय स्तर पर कोई कानून बन गया इसको बैन करने का, लोकल लेवल पर डिसीजन लेते थे कि ये सेडिशस सॉन्ग्स है, ये अंग्रेज विरोधी गाना है, ये साम्राज्य विरोधी गाना है, तो लोकल लेवल पर इसको बैन करते थे। उससे लोग और अलग अलग ढंग से, जैसे कभी गा नहीं रहे लेकिन बैच लगा लिया, झंडा उठा लिया, क्योंकि झंडा को आपने बैन नहीं किया तो झंडा उठा लिया, कभी बैच लगा लिया, कभी गा रहे हैं तो उसमें कुछ शब्द बदल दिए, और इस तरह से वंदे मातरम। और देखिए, जो क्रांतिकारी वर्ग है
1: जी,
0: 1905 से 6 से ईस्वी से क्रांतिकारी वर्ग बड़े स्तर पर उभरता है, उससे पहले थोड़ा सा सीमित है, महाराष्ट्र में है, चापेकर ब्रदर्स हैं, सावरकर ने अभिनव भारत की रचना की है, बनाया है, निर्माण किया, और शिफ्ट थोड़ा सा इंग्लैंड में इंडिया हाउस बनाया श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, वहां कई सारे क्रांतिकारी, जिसमें कि सावरकर भी 1906 में शामिल होते हैं, वो इकट्ठा होते हैं। लेकिन बंगाल के भीतर जो अनुशीलन और जुगांतर, दो सबसे बड़े सीक्रेट सोसाइटीज हैं, इसी समय में आगे बढ़ते हैं। जितने क्रांतिकारी देखेंगे वो कहीं ना कहीं इन चीजों से इंस्पायर हो रहे हैं।
1: तो इसीलिए वंदे मातरम एक कैटलिस्ट के रूप में उभरा। और जैसे आपने मेंशन किया कि सर विदेशों में भी वंदे मातरम गाया गया था, तो विदेशों में इसका क्या इम्पैक्ट था और उसका हमारे देश की जो आजादी की लड़ाई थी उसमें क्या प्रभाव पड़ा?
0: देखिए, जो एक्सपैट्रिएट इंडियंस हैं, जो रिवोल्यूशनरीज हैं, वो अमेरिका में भी हैं, कनाडा में भी हैं, इंग्लैंड में भी हैं, और जो मिडिल ईस्ट है उसके कुछ देशों में भी हैं, वहां जहां पर इनको यह लग रहा है कि कानूनी रूप से इसका विरोध नहीं है, वहां उसको लिखने का, गाने का इस तरह की परंपरा है। और श्यामजी कृष्ण वर्मा तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट अखबार निकाल रहे थे इंग्लैंड में, उसमें काफी लिख रहे थे, और वो फिर यहां पर भी इंपोर्ट होते थे, यहां पर भी आता था, यहां कई बार उसको बैन भी किया गया। अर्थ यह है कि जो वंदे मातरम का एक कांग्रेस के अधिवेशनों में गाया जा रहा है, जो गांधी द्वारा आंदोलन चलाए जा रहे हैं उसमें गाया जा रहा है, लेकिन जो सीक्रेट सोसाइटीज, जो क्रांतिकारियों का समाज है, जहां छुप करके बहुत तरह का काम करते हैं, वहां इसकी लोकप्रियता बनी हुई। जो नौजवान भारत सभा, जो

0: शुरू किया भगत सिंह ने, उसमें गाया जाता था, उसके उसमें उसके दस्तावेज में लिखा हुआ है। और कई सारे क्रांतिकारी जो जो शहादत में जा रहे हैं, जो जो जो अपने को आहूत कर रहे हैं, वह वंदे मातरम उस समय भी गा रहे हैं जब उनको दंड के लिए ले जाया जा रहा है, जब वो शहादत के लिए जो अपनी आहुति देने जा रहे हैं उस समय भी। रामप्रसाद बिस्मिल का नाम है, सूर्य सेन का नाम है, खुदीराम बोस, खुदीराम बोस के प्रोसेशन में जो उनकी शव यात्रा हो रही है, उनका जब प्रोसेशन हो रहा है तो उसमें लोग गा रहे हैं वंदे मातरम को, और वो बहुत कम उम्र के थे। तो इस तरह से, और सरदार उधम सिंह जब वह भी जा रहे हैं, और उनके जो स्टेटमेंट्स हैं, जब वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कोर्ट में, तो वहां पर भी वंदे मातरम लिख करके उसको खत्म करते हैं, शुरू करते हैं, खत्म करते हैं। वंदे मातरम एक सैल्यूटेशन हो गया कि एक दूसरे को क्रांतिकारी एड्रेस कर रहे हैं वंदे मातरम कह करके। और जब उनको लग रहा है कि हम अल्टीमेट सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो कौन सा शब्द सबसे उपयोगी होगा, सबसे अप्रोप्रिएट होगा, तो वह है
1: वंदे मातरम। सर, जैसे आपने कहा कि क्रांतिकारियों के लिए एक ये सैल्यूटेशन बन गया था वंदे मातरम, तो जो वंदे मातरम की अगर हम लिरिक्स पे जाते हैं तो उसमें है, त्वम ही भक्ति, त्वम ही शक्ति, त्वम ही प्राणा शरीरे, तो कहीं ना कहीं ये लाइन ही दर्शाती है उनके समर्पण को।
0: बिल्कुल बिल्कुल, यदि आप इसके लिरिक्स को देखेंगे, वंदे मातरम के शब्दों को देखेंगे, तो ये अद्भुत है
1: जी।
0: यह किसी युग में, किसी दौर में एक ही बार लिखा जा सकता है, ये बार बार यह अवतरित नहीं हो सकता है।
1: बिल्कुल सर,
0: जिस भाव में बंकिम ने लिखा होगा, जिस मन स्थिति में, वह अद्भुत रहा होगा, वह इतिहास के एक मील का पत्थर है। इसमें देखेंगे कि प्रकृति की चर्चा भी है, भारत के भूगोल की चर्चा भी है, और उस भूगोल में मातृत्व को, जो मदर इंडिया है, जो जो भारत को शक्ति के रूप में अवतरित करने की बात है, दिखाने की बात है, वो अलग तरह की है, वह अत्यंत अन्यत्र दुर्लभ है। जैसे हवाओं की बात कह रहे हैं कि जो दक्षिण से जो शीतल हवाएं आ रही हैं, और खेत खलिहानों की बात है, ग्रीन ग्रीन कलर की बात है, जल की बात है, सुजलाम सुफलाम, फल मतलब कोई भी चीज जो प्रोड्यूस हो रही है, जल जो मतलब एक सेक्रेटनेस है जल के प्रति हमारे हिंदुस्तानियों का, उसको मैं प्रणाम करता हूं। और देखिए 1872 के सेंसस से 7 करोड़ का फिगर लिया बंकिम ने, क्योंकि 1875 में इसकी रचना हो रही है, और यह कह रहे हैं कि माता, क्योंकि यह बार बार स्पष्ट हो रहा है कि इतने सारे हमारे देश में इतने लोग हैं, फिर भी भारत माता परतंत्र क्यों है, हम शक्तिहीन क्यों हैं। तो कह रहे हैं कि 7 करोड़ संतानें हैं, और आनंद मठ में सत्यानंद लोगों को बार बार संतान कह के बोलते हैं कि हम लोग सब संतान हैं, तो 7 करोड़ संतान हैं और 14 करोड़ भुजाएं हैं, उन 14 करोड़ भुजाओं में जो तलवारें हैं, इतनी शक्ति है, तो यह माता अबला कैसे हो सकती है। कहते हैं माता को कि आप ऐसे, इतनी शक्ति है तो आप अबला कैसे हो सकती है। उसके बाद विद्या की बात कह रहे हैं, सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा, इन तीनों का बार बार जिक्र आ रहा है प्रतीक के रूप में, विद्या का जिक्र आ रहा है, शक्ति का जिक्र आ रहा है, दुर्गा का जिक्र आ रहा है, उसके 10 आयुधों का जिक्र आ रहा है, जो इंस्पायर करता है लोगों को युद्ध में जाने के लिए, प्रेरित करता है कि आप किसी भी तरह का परतंत्रता अधीनता स्वीकार न करें। और फिर वह आनंद मठ में एड्रेस करते हैं कि आप ही भक्ति हैं, आपके हृदय में ही मर्म है, जितने शरीर हैं संतानों के सबके प्राण आप ही हैं, तो वहीं से उद्गम स्थल है, जो उद्गम स्थल है जिसको आप मातृत्व कहते हैं, वही असली शक्ति का स्रोत है, उसको बार बार नमामि कह रहे हैं, प्रणाम कह रहे हैं। इससे अच्छा इंस्पिरेशनल सॉन्ग क्रांतिकारियों को मिल नहीं सकता।
1: बिल्कुल सच बात है सर, कि इससे ज्यादा इंस्पिरेशनल सॉन्ग न तब मिल सकता था, और आज के परिपेक्ष में सर अगर हम देखें तब भी मुझे लगता है कि इसके भाव उतने ही सार्थक हैं। आपका क्या विचार है?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो देखिए, जो अधीनता है, परतंत्रता है, सशक्तिकरण है, विकास है, यह हमेशा चलता रहा। ठीक है कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे और उससे, उस गुलामी से हमें निजात मिला, हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन यात्रा वहां स्वतंत्रता के साथ ही खत्म नहीं होती, यात्रा लगातार चलती रहती है। हम एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के हिस्सा हैं, एक कॉम्पिटिशन का दौर है, और यह मान करके चलिए कि हमेशा आप सुरक्षित नहीं हो सकते, तो आपको सजग भी रहना। जब आप सजग रहते हैं तभी आप सुदृढ़ हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जब आप अपने बॉर्डर्स को सुरक्षित कर रहे हैं, आप अंदरूनी कुछ मान

0: जो विद्रोह हो रहा है उसको, उससे देश को सुरक्षित कर रहे हैं। तो आपको हमेशा कुछ इंस्पिरेशन चाहिए, वह इंस्पिरेशन वंदे मातरम देता है। क्योंकि हम जब भी लड़ते हैं, जब हमारा सैनिक लड़ता है या हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज लड़ते हैं, तो उसके दिमाग में हमेशा यही होता है कि हम अपने मदरलैंड की सुरक्षा कर रहे हैं, हम भारत माता की सुरक्षा कर रहे हैं। और देखिए, जब वंदे मातरम पॉपुलर हुआ 1905-6 में, उसी समय में भारत माता की तस्वीर भी बनती, उसके उसके उसकी चार भुजाएं हैं, उसमें वस्त्र है, अन्न है, शिक्षा है, दीक्षा है, ये चार चार अंग हैं उसके। और जो वंदे मातरम का मंत्र है वह इस भारत माता की तस्वीर से जुड़ जाता है, जो मैप है उसको एक विजुअल शेप मिल जाता है, जिससे कि आप अटैच हो सके। एक सैक्रेडनेस है कि देश सैक्रेड है, दिस हैज टू बी प्रोटेक्टेड, द कंट्री हैज टू बी प्रोटेक्टेड। इसी इंस्पिरेशन से फौज लड़ती है, देश की सुरक्षा करती है, इसलिए यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि स्वदेशी आंदोलन के समय में था।
1: बिल्कुल सही आपने कहा कि जब भी हमारे सैनिक लड़ते हैं तो वो इसी भाव से लड़ते हैं। सर, चाहे सियाचिन की दुर्गम पहाड़ियां हों या फिर इंडियन ओशन का विशाल समंदर, तो दोनों ही जगह जो हमारे सैनिक तैनात होते हैं उनके अंदर यही भाव होते हैं वंदे मातरम के। और सर, यही है जो उनके मोराल को अपलिफ्ट करता है। तो सर, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो उन सैनिकों के लिए आपका क्या संदेश है?
0: उन सैनिकों के लिए यही संदेश है कि जितने तरह के लोग इस देश में सेवा कर रहे हैं, वह सेवा सबसे बड़ी है। जो देश के चौहद्दी की सुरक्षा कर रहे हैं और अपने जान पर खेल करके सुरक्षा कर रहे हैं, उससे बड़ा पुण्य का कार्य हो नहीं सकता है, उससे बड़ा धर्म हो नहीं सकता है, उससे बड़ा समर्पण हो नहीं सकता, वह अतुलनीय है।
1: सर, हमारे सैनिक जो अभी लड़ रहे हैं उसमें जैसे हमने देखा कि विमेन एम्पावरमेंट भी काफ़ी हो रहा है, चाहे महिलाएं हैं वो लड़ाकू विमान भी उड़ा रही हैं। और जब हम वंदे मातरम के परिप्रेक्ष्य में ये चीज़ देखते हैं तो उसमें एक बहुत सुंदर लाइन आती है कि त्वम ही दुर्गा दश प्रहर धारिणी। तो सर, विमेन एम्पावरमेंट इन आर्म फोर्सेस, अगर हम इस लाइन का परिप्रेक्ष्य वंदे मातरम में खोजें तो वो कैसे आप देखते हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सीधा प्रत्यक्ष या परोक्ष दोनों रूपों से हम इसको देख सकते हैं। और हमने पहले भी बोला कि हर युग की कुछ संस्कृति होती है, हर युग में कुछ जोर होता है
1: जी।
0: तो हमारे युग का 21वीं शताब्दी का जोर है कि नारी सशक्तिकरण हो, और यह आर्म्ड फोर्सेज में भी, CAPF में भी, पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी, और आप देखेंगे कई तरह की नौकरियों में भी ये चीज़ दिख रहा है। और आप ग्रॉस इनरोलमेंट देखेंगे हायर एजुकेशन में, तो महिलाएं बहुत अच्छी स्थिति में आ रही हैं। इस गीत में यदि हम देखेंगे तो शक्ति के रूप में दुर्गा को लिया गया है और उसके 10 आयुध की बात कही जा रही है। तो और उसके अलावा सिर्फ दुर्गा ही नहीं है, सरस्वती भी है, लक्ष्मी भी है, जो तीन प्रोमिनेंट भगवानों की चर्चा हो रही है वो तीनों ही नारी हैं, तीनों ही महिलाएं हैं। और यह तंत्र से आ रहा है, जो हमारे इतिहास में जो तंत्र का विकास हुआ वहां नारी को काफी प्राथमिकता दी गई, वहां शक्ति का आह्वान हुआ। और यह कहा गया कि जितने भी भगवान हैं, जितने भी ईश्वर हैं, सबको शक्ति पर आधारित होना है, शक्ति अल्टीमेट है। दुर्गा का भी उसी प्रकरण में जिक्र आता है पुराणों में, और वंदे मातरम में बंकिम ने उनको काफी प्राथमिकता दी, दुर्गा को, सरस्वती को, क्योंकि सिर्फ शक्ति से काम नहीं चलेगा, विवेक भी जरूरी है, बुद्धि भी जरूरी है। तो सब चीजों को मिला करके एक सशक्तिकरण का भाव है। और आर्म्ड फोर्सेज में पिछले दिनों की अपेक्षा अब वर्तमान में महिलाओं को काफी जगह पर प्राथमिकताएं मिल रही हैं, वो आगे बढ़ रही हैं। और लड़ाकू विमान का आपने जिक्र किया, इट्स वेरी गुड टू नो कि इस तरह से आगे आ रहे हैं। इससे जो महिलाएं पीछे रह रही हैं, जो लड़कियां पीछे हैं, वो भी इंस्पायर होती हैं।
1: बिल्कुल,
0: उनको भी एक मिलता है कि नहीं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। अभी आपने देखा कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग में
1: जी।
0: और मैं तो लगातार देख रहा था कि जो बॉक्सिंग में जो जिन लड़कियों ने मेडल्स जीता, गोल्ड मेडल्स जीता, अद्भुत कार्य किए। यदि भारत की इज्जत को सुरक्षित रखा वहां पर कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो महिलाओं ने रखा।
1: तो कहीं ना कहीं त्वम ही दुर्गा दश प्रहर धारिणी, ये वर्तमान परिपेक्ष में भी सर चरितार्थ हो रहा है।
0: एकदम चरितार्थ
1: जी। सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगी कि जो हमारे एनडीए के कैडेट्स हैं, आर्मी के कैडेट्स हैं, जो यंग एकदम सोल्जर्स होते हैं, अगर उनको आप वंदे मातरम के ऊपर कुछ संदेश

0: चाहेंगे तो वो क्या होगा सर?
1: एक तो उसको नियमित गाना चाहिए और उसको आत्मसात करना चाहिए। जो देश सेवा है, जो जब आप देश के लिए लड़ते हैं, उससे बड़ी सेवा हो नहीं सकती। और इसी समर्पण भाव से लोग आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन भी करते हैं और उसमें आगे भी बढ़ते हैं। ये सिर्फ एक रूटीन जॉब नहीं है, ये रूटीन जॉब से थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आप अपने जान माल की चिंता किए बगैर, अपने परिवार की चिंता किए बगैर, अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर फ्रंट पे लड़ते हैं। और डिसिप्लिन, जो अनुशासन है आर्म फोर्सेज में, वह अनुशासन अन्यत्र मिलना मुश्किल है, क्योंकि वह अनुशासन अलग ढंग का है और वह कमांड रिलेशनशिप अलग ढंग का होता है। बिना अनुशासन के आप देश की सुरक्षा कर भी नहीं सकते हैं। तो जिस अनुशासन से एनडीए के कैडेट्स, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स आगे बढ़ रहे हैं, उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि आप इतिहास को भी थोड़ा पढ़ें, वहां भी बलिदान हुए हैं, आप उसी श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। तो इस देश को बनाने में, निर्मित करने में, आगे बढ़ाने में हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं और हमारा आर्म्ड फोर्सेज उसमें बहुत आगे है।
0: तो सर, जब बात आती है देश के निर्माण की और देश की सुरक्षा की, तो सिर्फ जो सैनिक हैं उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर एक आम नागरिक की ये जिम्मेदारी है देश के निर्माण में अपना योगदान दे। तो वंदे मातरम को लेकर हम चाहते हैं कि हमारे जो श्रोता और हमारे जो दर्शक हैं, उनको आपका क्या संदेश है, वो भी हम सुनना
1: जो चाहेंगे। श्रोता यहाँ है, दर्शक है, उनको यह कहना जरूरी है कि जो राष्ट्रभक्ति है वह सेल्फलेसनेस से आती है। यदि हम अपने स्वार्थ को, छोटे स्वार्थ को आगे रखेंगे, फिर हम राष्ट्र धर्म नहीं निभा पाते। छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसमें कि हम अपनी चिंता करने लगते हैं, देश की चिंता नहीं करते हैं, समुदाय की चिंता नहीं करते हैं। इसलिए हर नौजवान का, हर व्यक्ति का यह कर्तव्य होना चाहिए, यह सोचना चाहिए कि जो आपका जीवन है सिर्फ आपके लिए नहीं है, उससे आपके समूह को कितना फायदा हुआ, आपके समुदाय को कितना फायदा हुआ, आपके क्षेत्र को कितना फायदा हुआ, आपके परिवार को कितना फायदा हुआ, आपके वृहत समूह को कितना फायदा हुआ। यदि आप एक सेल्फलेसनेस के साथ काम करेंगे, स्वार्थहीनता के साथ काम करेंगे, तभी राष्ट्र धर्म की परिधि में आप आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरह से वंदे मातरम इंस्पायर कर रहा है, वह यही कह रहा है कि आपका जीवन सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपकी मातृभूमि के लिए भी है, भारत माता के लिए भी है। इसीलिए उस भाव का यदि ध्यान में रखेंगे तो आप एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ेंगे। हम लोग उपयोगितावादी सिद्धांत में या व्यक्तिवादी सिद्धांत वाला देश नहीं है, यह समूह के, राष्ट्र के एक साथ आगे बढ़ने का सिद्धांत को लेकर के। और इसी संदर्भ में रुचि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक हरिवंश राय बच्चन ने 1948 में लेख लिखा राष्ट्रीय गीत पे, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो आपको सुनाना चाहूंगा उसके कुछ अंश। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, जो नगपति के उच्च शिखर से राजकुमारी के पदनख तक, गिरी गह्वर में, वन प्रांतर में, मरुस्थलों में, मैदानों में, खेतों में और खलिहानों में, गांव गांव में, नगर नगर में, डगर डगर में, बाहर घर में, स्वतंत्रता का महामंत्र बन कंठ कंठ से हुआ निनादित, कंठ कंठ से हुआ प्रतिध्वनित, जपकर जिसको आजादी के दीवानों ने, कितने ही दी मिला जवानी मिट्टी में काले पानी में, कितनों ने हथकड़ी बेड़ियों की झन झन झन पर जिसको गाया और सुनाया मन बहलाया, जबकि डाल वे दिए गए थे देश प्रेम का मूल्य चुकाने, कठिन कठोर घोर कारागारों में, कितने ही जिसको जिह्वा पर लाकर बिना हिचक के हंसते हंसते झूल गए फांसी वाले तख्ते पर, या खोल छातियां खड़े हुए गोली की बौछारों में।
0: बहुत सुंदर पंक्ति आपने कही, और इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आज का ये स्पेशल पॉडकास्ट, जो कि वंदे मातरम पर आधारित था, आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। और इसके साथ अपनी होस्ट रुचि को दीजिए अनुमति। नमस्ते, वंदे मातरम।
2: अभी आप सुन रहे थे द आकाशवाणी पॉडकास्ट। इस कार्यक्रम का विजुअल वर्जन आप देख सकते हैं द आकाशवाणी पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में रिकॉर्ड किया गया

गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल जी। हाँ, सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जानती हूँ आज आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि आज का प्रोग्राम कैसे रहने वाला है, और जो आपको अभी सुनने को मिला वो भी काफी ज्ञानवर्धक रहा होगा आपके लिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि प्रोग्राम शुरू हो चुका है आपकी याद आती रही, और आपकी याद आती रही के सफर में मैं हूं आपके साथ, आपकी वही पुरानी दोस्त आरसी यानी रेखा चौधरी। तो चलिए अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, और ये गीत आज तो सुनना बनता ही है। सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल।

जी हाँ, वेलकम बैक दोस्तों। यादों का सफ़र शुरू हो चुका है और जहाँ तक इस सॉन्ग की बात है, वाकई जितने भी हमारे फौजी भाई हैं ना, वो इस देश की धड़कन है। और जो हमारी धड़कनें चल रही हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वजह से चल रही हैं। और आप वैसे तो सुबह से आपको काफ़ी सुनने को मिल गया होगा, लेकिन एक बार फिर भी मैं भी कह देती हूँ कि जितना हो सके आप कल कोशिश कीजिए कि अपनी छत पर या ऑफिस की छत पर झंडा ज़रूर लगाएं। और क्या कहूँ आपसे, यही कहूँगी कि यादों का कारवा जब निकलता है तो आसपास न तो कुछ देखता है और न ही सुनता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी बात हुई, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि यादों का सफर आपका है, और इन यादों के सफर में आप अपने साथ किसको रखते हैं या यादों में शामिल होने का हक आपने किसको दिया है, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ आपका है ना? बात तो सही है। और रही बात किसको शामिल रखना है और किसको नहीं, ये आप तय करेंगे, ना कि कोई थर्ड पर्सन। और जब ये फैसला आपको ही करना है तो आप उसमें अपनी खुशी देखेंगे, है ना?

0: तो वक्त का पता ही नहीं चलता। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर लौटते हैं आपके साथ, आपके पास। बने रहिए हमारे साथ।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: बचाए।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में न हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
2: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
3: वंदे मातरम। प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम वन की लॉन्चिंग, $5 trillion की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा, हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
4: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
5: अरे सर, फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
4: इम्पॉसिबल
5: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
6: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सरायकाले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
8: वेलकम बैक दोस्तों, और मेरे जो कहने का मतलब था कि जो चीज़ें सिर्फ आपकी हैं, जो चीज़ें सिर्फ आप चाहते हैं, तो वो आपकी ही है ना, किसी तीसरे पर्सन को उसमें दखल देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसा होता भी है तो आप तीसरे इंसान को मना कर सकते हैं। मेरे कहना यही है कि कुछ चीज़ें आपकी और सिर्फ आपकी ही होती हैं, जिसे ना तो कोई छीन सकता है और ना ही कोई बदल सकता है। सोच क्या रहे हैं, सही तो कह रही हूं। अब देखिए ना, आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी यादों का सफर, तो भला इसमें कोई थर्ड पर्सन, जी हाँ, क्यों दखल दे और दखल देने भी क्यों दिया जाए, जब ये सब चीजें आपकी हैं। और मैंने कई बार कहा है और आज फिर कहती हूँ, आपको कोई भी फिजिकली आपको कहीं बंद कर सकता है, आपसे काम करवा सकता है, आपको कहीं भेज सकता है, लेकिन मन के, दिल के, दिमाग के मालिक आप खुद हैं। सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप हैं इस वक्त दिल्ली और एनसीआर में, और पूरे भारत में हम जुड़े हैं आपसे अलग अलग जगहों पर, अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर, और अब ऐप के जरिए भी आप हमें सुन सकते हैं कभी भी, कहीं भी। और एक बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग मुझे याद आ रहा है, तो सोच रही हूं कि आपको सुनवा ही दूं। सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल।

जी हाँ दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा भी होता है कि हम जब भी किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद शायद सामने वाला बहुत बोलता है या हम उससे बोर हो जाते हैं और चाहते हैं कि कुछ टाइम दिया जाए आपस में मिलने के लिए, और या फिर ये भी कह सकते हैं कि कुछ वक्त हमें चाहिए होता है कि हम उससे ना मिलें। और जब जब ये वक्त हम लेते हैं या किसी वजह से, किसी और की वजह से, चाहे वो कुछ भी वजह रही हो, कोई इंसान रहा हो या ऑफिशियल वजह रही हो, जब हम उससे दूर हो जाते हैं उसकी अहमियत का हमें तब पता चलता है। और जब जब आपका ज़ोरों से दिल धड़कता है उससे मिलने के लिए, तब तब समझ में आता है कि आप जो बोरियत महसूस कर रहे थे उसके मिलने पर, हकीकत में वो बोरियत नहीं थी। आपको उसको शायद बहुत अच्छा लगता है आपस में मिलना, बात करना, या फिर एक दूसरे की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन आप वो चीज़ें समझ नहीं पाते हैं और ये समझने में आपको वक्त लग जाता है, और वक्त भी इतना जब वक्त हाथ से निकल जाता है, तो वो वक्त आने ही ना दिया जाए तो कितना अच्छा रहेगा। तो सोचिए, समझिए और चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यादों में रह जाती हैं। अब आज का मौसम ही ले लीजिए शायद शायद इस बरसात के मौसम में आप कभी किसी से मिले हों, किसी दोस्त से या किसी भी ऐसे शख्स से जो आपके दिल के बहुत करीब रहा हो, लेकिन इस वक्त वो शायद आपसे बहुत दूर है या आप मिल नहीं पा रहे हैं। हाँ, मिलने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं लेकिन फिर भी मिल नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, आप उन्हें मैसेज कीजिए, लेटर लिखिए या फिर कॉल कीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें कहना बहुत ज़रूरी होता है, वरना ये सारी चीज़ें यादों की किताब में एक पन्ने में हमेशा के लिए दर्ज हो जाती हैं और फिर सिर्फ और सिर्फ वो यादों में ही शामिल रह जाती हैं। सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल।

और इसी प्यारे से सॉन्ग के साथ अपनी दोस्त आरसी यानी रेखा चौधरी को दीजिए इजाजत। ठीक 11 बजे फिर मुलाकात जरूर होगी। जानती हूँ आज आपके मैसेजेस शामिल नहीं हो पाए हैं, लेकिन किंतु परंतु ठीक 11 बजे फिर मुलाकात होगी और उनमें आपके मैसेजेस भी लिए जाएंगे।

0: there we go. That song did have that 1950s retro touch. As a matter of fact, I was actually thinking, is it from the 1950s or not? There we go. That was the vintage pop 1950s inspired retro pop song called Sweetness by English singer-songwriter Elliot James Ray. There we go. And this track was not released in 1950s. Again, right? This was released last year in the month of June. There we go. Alrighty. Time right now is exactly 10:30. We are at the halfway mark and we'll be right back after these messages. Don't go anywhere. We'll be right back.
1: Dil ke tarane, gaane naye purane. Non-stop film music, rozana subah 9 se 10 baje tak. Rainbow 102.6 per.
2: कोयल सी तेरी बोली
3: आए हाय
2: तेरी तेरी छी नजर में है जादू.
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था.
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो. अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है.
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर.
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी. फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन. कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल. जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल.
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री.
7: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान. इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी. सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर. जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे. प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय.

0: नमस्कार। फिलहाल वक्त हुआ है रेनबो इंडिया पर इस घंटे के मुख्य समाचारों का। राष्ट्रपति ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा है कि विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना हमारा संकल्प है। राष्ट्रपति मुर्मू ने नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक समुदाय के समक्ष उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला प्राचीर से ध्वजारोपण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान को अपार समर्थन मिल रहा है। पूरे देश में तिरंगा रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की गई है। यह सेवा सुबह 4 बजे से शुरू होगी। यात्री लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पर उतरकर लाल किले तक पहुंच सकते हैं। रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा की। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए अत्याचारों और सीमा पार आतंकवाद के लिए कब्जे वाले क्षेत्र के उपयोग पर चिंता जताई है। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। बांग्लादेश में शिप ब्रेकिंग यार्ड में गैस रिसाव के कारण 8 लोगों की मृत्यु हुई। ओडिशा में लगातार मूसलाधार वर्षा के बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। केरलम में BSNL ने पलक्कड़ और कोच्चि में सैटेलाइट फोन सेवा शुरू की है। इससे दूर दराज के इलाकों और मछुआरों को फायदा होगा। और भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला टेस्ट मैच कल से खेला जाएगा। तो ये थे रेनबो इंडिया पर इस घंटे के मुख्य समाचार। सुनते रहिए रेनबो इंडिया।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: जी हाँ, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रोग्राम बदला है, आप बदले हैं ना, मैं बदली हूँ, यानी कि प्रोग्राम शुरू हो चुका है रंगे महफिल। और रंगे महफिल के सफर में भी आप रहने वाले हैं अपनी दोस्त, जी हाँ, RC यानी रेखा चौधरी के साथ। तो चलिए, रंगे महफिल नाम क्यों रखा गया, इस प्रोग्राम का क्या मतलब है रंगे महफिल का, तो ये सारी बातें हम और आप करेंगे, साथ साथ लेंगे आप सबके मैसेजेस, लेकिन इस खूबसूरत, जी हाँ, खूबसूरत आवाज के बाद, क्योंकि ये आवाज आप सभी जानते हैं, पहचानते हैं, और अगर कोई नहीं जानता है या पहचानता है तो हम किस बात के लिए बैठे हैं जनाब यहाँ पर। तो चलिए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं इस खूबसूरत आवाज के साथ।

जी हाँ दोस्तों, मेरे पास जो पहला मैसेज आया है वो आया है सौरभ का महाराष्ट्र से। वो लिखते हैं, बचपन की ख्वाहिश आज भी खत लिखती है, बचपन की ख्वाहिश आज भी खत लिखती है मुझे, शायद बेखबर ये नहीं जानती कि वो जिंदगी अब इस पते पर नहीं रहती। जी हाँ, अब देखिए ना, कभी कभी डायरेक्ट बात ना करके इनडायरेक्ट की जाए तो वो भी अच्छी लगती है, बस समझने वाला होना चाहिए। और लास्ट में लिखते हैं, लाजवाब प्रस्तुति, तो थैंक यू सो मच। एक और मेरे पास मैसेज आया है लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिखा है, तो प्लीज नाम लिखकर जरूर भेजें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दोस्त जब आपस में बात करते हैं और पुरानी बातें याद आ जाती हैं आपको, खतों की और चिट्ठियों की जब बात चलती है तो अलग ही एक चेहरे पर नूर आ जाता है, अलग ही रंग आंखों का हो जाता है। जी हाँ, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि इस प्रोग्राम का नाम रंगे महफिल ही क्यों रखा गया, वो इसलिए दोस्तों ताकि जब गीत और गजलों की महफिल सजे तो आप और हम मिलकर इस रंग से एक नया रंग तैयार करें। जी हाँ, वो रंग जो इश्क का हो, प्यार का हो, मोहब्बत का हो, जो रंग न तो कभी मिटाने से मिटता है और न ही किसी के हटाने से हट सकता है। जी हाँ, गजलों और गीतों का दौर यूं ही चलता रहेगा। अभी हमारे पास बहुत वक्त है और आपके मैसेजेस लगातार पहुंच रहे हैं, थोड़े से मैसेजेस और इकट्ठे हो जाएं तो सोच रही हूँ तभी पढ़ा जाए, है ना। तो चलिए, तब तक घर से निकलिए, थोड़ा सा दूर तक चलिए, टहलिए, क्योंकि बरसात रुक चुकी है।

जी हाँ दोस्तों, मेरे पास जो नेक्स्ट मैसेज आया है वो आया है राजकुमार के संतानी अकोला महाराष्ट्र जी से। तो वो लिखते हैं, गुड इवनिंग आरजे रेखा जी, वेलकम जी, आप कैसे हो जी? तो मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आपको दिल से याद करते हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच। इसीलिए तो मैं जल्दी जल्दी आ जाती हूँ जब आप इतना याद करते हैं। और पंकज उदास जी का गीत नाम चिट्ठी आई है, इमोशनल बेहतरीन गीत है जी। आप हैं तो कार्यक्रम में चार चांद लग जाते हैं। देखिए, अब एक नहीं चार चांद लगवा दिए आपने और कार्यक्रम बहुत ही अच्छा जा रहा है, मजा आ रहा है जी। तो थैंक यू सो मच, वंदे मातरम, वंदे मातरम जी। एक और मेरे पास मैसेज आया है, ये मैसेज आया है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी फ्रॉम शांति नगर सोनीपत से। वो लिखते हैं, आदरणीय आरसी रेखा चौधरी जी, सादर प्रणाम, कार्यक्रम सुन रहे हैं जी। और उच्च कोटि की प्रस्तुति, सदाबहार गीत, गजलें बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है, दिल से बड़े वाला धन्यवाद। आपकी रात्रि जो जीवन बहुत मंगलमय हो, बहुत बहुत धन्यवाद जी। इतनी ब्लेसिंग्स आप देती हैं ना, तो मुझ सच में पढ़कर और देख कर ना मुझे बहुत बहुत बहुत अच्छा लगता है। एक और मेरे पास मैसेज आया है और ये मैसेज इन्होंने पूरा अभी नहीं लिखा है, तो भाई देखिए इतनी जल्दी भी नहीं है, अभी तो हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो आप अपने मैसेज को ना पूरा ज़रूर लिखिए। जब हाले दिल जुबान से कहा ना जाए, दोस्तों जब हाले दिल जुबान से कहा ना जाए और कोई आंखों के जरिए उसे समझ भी ना पाए, तो जनाब तरीका एक ही है। जी हाँ, अपने दिल की बात को दूसरे के दिल तक पहुंचाने का तरीका वो है खत, यानी लेटर। उतार दीजिए कागज और कलम के जरिए अपने दिल की सारी बातें, पर ध्यान रखिए कि कागज भीगने न पाए। क्योंकि बरसात का मौसम जो चल रहा है, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आपका खत बिल्कुल सही सलामत दूसरे तक पहुंच जाए। और यही कहूंगी कि अपने जो भी अरमान है वो भी कभी कभी अपनी डायरी में उतार देने चाहिए, क्योंकि कुछ बातें, कुछ चीज़ें हम दूसरे से शेयर नहीं कर सकते, लेकिन अंदर अंदर वो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। इसलिए डायरी लिखने का एक शौक पैदा कीजिए अपने अंदर, सच मानिए ये बहुत ही बेहतरीन शौक है। तो चलिए अपने एक गाने को सुनवाती हूँ, क्योंकि कभी कभी जब दिल की बात कही नहीं जाती तो संगीत के जरिए, खत के जरिए और मोबाइल के जरिए दूसरे तक पहुँचाई जा सकती है ना।

जी हाँ दोस्तों, आपके लगातार मैसेजेस आ रहे हैं और समझ में आ रहा है कि आपको प्रोग्राम कितना पसंद आ रहा है। एक मेरे पास मैसेज आया है, लिखते हैं, गुड इवनिंग आर जे आर सी जी, ग्लैड टू कैच यू ऑन रंगे महफिल। और ये लिखा है एम राजकुमार ने त्रिची से, और ये ऐप के जरिए हमें सुन रहे हैं। तो मैंने तो पहले भी कहा था कि अब आप ऐप के जरिए हमें कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। एक मैसेज आया मेरे पास, मैं उत्तर प्रदेश से कैफ मैम, आप बहुत अच्छे सॉन्ग्स सुना रही हैं, तो थैंक यू सो मच। एक मेरे पास मैसेज है, रेखा जी नमस्कार, इन्होंने बहुत बड़ा मैसेज लिख दिया, तो दोस्तों आप हो सके तो छोटा मैसेज भेजें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपका मैसेज मैं लूँगी लेकिन इसको शॉर्ट करके पढ़ूंगी। एक और मेरे पास मैसेज आया शर्मा जी का मैसेज, तो उनको भी प्रोग्राम पसंद आ रहा है। वो लिखते हैं कि अरे मैंने देर कर दी सुनने में तो कोई बात नहीं दोस्त, देर आए दुरुस्त आए। और

0: एक और मैसेज मेरे पास है रेडियो की मीठी धुन में, जब रात उतरती है एफएम रेनबो की आवाज दिल में उतरती है। दिन भर की थकान लेकर जब खिड़की पास बैठते हैं तो गजल की नर्म लहरों में कुछ ख्वाब नए सजते हैं। अमित अंचल सासाराम बिहार से लिखते हैं। तो भाई बहुत अच्छा लिखा है आपने। एक और मेरे पास मैसेज आया है, वो लिखते हैं, मासूमियत भरा बचपन होता था, बड़ा सुहाना वो दोस्तों के साथ खेलना, हंसना, मुस्कुराना। आज सभी दोस्तों का बदल गया ठिकाना, मुश्किल हो गया है अब इनसे मिल पाना। तो सौरभ लिखते हैं महाराष्ट्र से, दोस्तों की याद में कोई गीत संभव हो तो प्रस्तुत करें, बड़ी मेहरबानी होगी। तो भाई कोशिश करती हूँ। और रही बात दोस्तों से बिछड़ने की, तो दोस्त ये तो आप सभी जानते हैं कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें कुछ और काम तो होता नहीं है, पढ़ना होता है और खेलना होता है, तो इसलिए दोस्त भी साथ ही रहते हैं। और जब हम अपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगते हैं तो फिर बिछड़ना तो होता ही है। लेकिन हाँ, अब तो कॉल के जरिए भी आप उनसे बात कर सकते हैं, और अगर मुमकिन हो तो मिलिएगा जरूर, क्योंकि मिलना बहुत जरूरी है। एक और मेरे पास मैसेज है, लेकिन किंतु परंतु मैं सोचूं एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद मैं आप सभी के मैसेजेस लेती हूं। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल, और एक छोटा सा ब्रेक।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
2: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
3: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
4: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
5: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
4: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
5: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
6: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
7: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप, और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
6: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
7: अल्फा जेन,
6: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: वेलकम बैक दोस्तों, कहा था ना एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे, तो लौट आए ना हम भी और आप भी। एक और मेरे पास मैसेज आया है, आज कैसे लेट हो गई मुझे समझ में नहीं आया। वैसे हमेशा इनका जो मैसेज होता है सबसे पहले आता है, तो कोई बात नहीं। ये लिखते हैं सौरभ अनेजा गाजियाबाद से, वो लिखते हैं गुड इवनिंग वेलकम बैक दोस्त। तो थैंक यू सो मच सौरभ। और भी आप सभी के बहुत से मैसेजेस हैं, लेकिन उन मैसेजेस को आज मैं बिल्कुल नहीं लेने वाली जो नाम लिखकर नहीं भेज रहे हैं। तो चलिए दिल की धड़कनें और भी तेज हो सकती हैं, संभालिए संभालिए संभालिए, क्योंकि ये गीत और गजलों का दौर है दोस्तों। कभी कभी कुछ मखमली आवाजें दिल को इस तरह से छू जाती हैं कि बस जी चाहता है इन आवाजों को इस तरह से ही म्यूजिक में, धुनों में सुनते रहें सुनते रहें सुनते रहें।

जी दोस्तों, एक और मेरे पास मैसेज आया है। बहुत ही सुंदर, आपने कहा कि डायरी लिखनी चाहिए। तो भाई, ये तो मैं सही कह रही हूँ। अगर किसी के पास वक्त है और वो इस तरह से शब्दों में अपनी बात को कह सकता है, तो वो डायरी में ज़रूर लिखनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी जब हम अपनी डायरी को लेकर बैठते हैं ना, उसको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। और आगे लिखते हैं, वो लड़की जब घर से निकलती है, वो इनको गज़ल बहुत पसंद आई है, ये गीत पसंद आया है, और आगे लिखते हैं, तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है ये सॉन्ग, उनको बहुत ही अच्छा लगा, दिल को छुआ। इसलिए थैंक यू सो मच रेनबो एफएम इस तरह की प्रेजेंटेशन के लिए लिखते हैं। और ये मेरे पास आया है अरुण कुमार रावत का, और ये मैसेज उन्होंने भेजा है हैदराबाद से। अब देखिए ना, कितना छोटा और अच्छा मैसेज है। इसी तरह से अगर आप अपने मैसेजेस भेजेंगे तो बहुत बहुत सही रहेगा। दूसरे का नंबर भी तो आना चाहिए, वरना दूसरे तो नाराज़ ही हो जाएंगे क्योंकि उनका मैसेज तो लिया ही नहीं जाएगा। थैंक यू मैम, हार्ट टचिंग, ब्यूटीफुल टॉकिंग, प्लीज कन्वे माय विश विशेस टू माय हार्ट आकाश। ओ माय गॉड, आपका शॉर्ट आउट हुआ ही नहीं ये मामला। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप मैसेजेस के जरिए बात करते हैं। आप ही करती हैं, तुम्बा मैसेज कर रही हैं और ये कर रही हैं रेलवे कॉलोनी न्यू दिल्ली से आकाश जी को। तो आकाश जी भाई, जाइए इनसे मिलिए, और अगर मिल नहीं सकते हैं तो फोन पर बात तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि भाई ये सच में आपको तहे दिल से चाहती हैं और हमेशा आपके लिए विशेष करती हैं, और साथ में हम लोगों के लिए भी प्रे करती हैं और हमें ब्लेसिंग्स देती हैं कि हमने उनका मैसेज पढ़ा और आप तक पहुंचाया। तो प्लीज़ उनसे बात ज़रूर कीजिए। क्या मजाल जो मुश्किलें मेरे कदम को रोक पाएं, वो मंजिल हम एक बार जो सोच लेते हैं हासिल कर ही लेते हैं। तो सौरभ लिखते हैं महाराष्ट्र से। इस पंक्ति को मैंने खुद लिखा है, बस आपके स्वर की जरूरत है। तो लीजिए, हमने अपना स्वर दे दिया। एक और मेरे पास मैसेज है, लेकिन किंतु परंतु सारे मैसेजेस एक साथ पढ़ लिए जाएंगे तो फिर हम प्रोग्राम को आगे कैसे कैसे बढ़ाएंगे। तो चलिए एक और खूबसूरत सा सॉन्ग सुन लिया जाए, क्योंकि ये सॉन्ग भी ना सच में बहुत बहुत बहुत प्यारा सॉन्ग है।

0: जी हाँ दोस्तों, कभी कभी दिल बहुत कुछ कहना चाहता है और हमारे पास शब्द नहीं होते, और जब शब्द होते हैं तो हमारे पास वक्त नहीं होता। ठीक उसी तरह से एक जुबला है जो बिल्कुल फिट बैठता है कि जब दांत थे तो चने नहीं थे और चने थे तो दांत नहीं होते। जी हाँ, हमारे जो घर के बुजुर्ग हैं ना, वो यही कहते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और फिर लौटते हैं आपके साथ, आपके पास।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: वेलकम दोस्तों। कोई हालात नहीं समझता तो कोई जज्बात नहीं समझता, कोई हालात नहीं समझता तो कोई जज्बात नहीं समझता, ये तो बस अपनी अपनी समझ है यारों। कोई कोरा कागज भी पढ़ लेता है तो कोई पूरी किताब भी नहीं समझता। और ये खूबसूरत गजल आप सबकी नजर।

शफक कहते हैं किरणों को, रेस और धनुक रेनबो, महताब चंद्रमा, घटाएं तो आपको मालूम है। शफक धनुक महताब घटाएं, तारे नगमे बिजली फूल।

अब अपने दोस्त आरजीआरसी को दीजिए इजाजत। जी हाँ, परसों 6 बजे यानी 16 तारीख को हमारी मुलाकात होगी शाम 6 बजे। तो फिलहाल अपने दोस्त आरजीआरसी को दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह से दिन

12 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा संकल्प है। राष्ट्रपति ने नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक समुदाय के समक्ष उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को एक प्रेरणादायक और प्रभावशाली संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला की प्राचीर से ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान को अपार समर्थन मिल रहा है। पूरे देश में तिरंगा रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की गई है। ये सेवा सुबह 4 बजे से शुरू होगी। यात्री लाल किला, जामा मस्जिद, दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किले तक पहुंच सकते हैं। रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा हुई। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए अत्याचारों और सीमा पर आतंकवाद के लिए कब्जे वाले क्षेत्र के उपयोग पर चिंता जताई। जल शक्ति मंत्रालय ने केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित परिवारों को मुआवजा और पुनर्वास नहीं मिलने के आरोपों को गलत और भ्रामक बताया। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए 20 मेट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। और भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला टेस्ट मैच आज से खेला जाएगा।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 12:02 और 57 सेकंड हुए हैं। दोस्तों, आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए अब शुरुआत करते हैं हमारे जीरो आवर शो की इस खूबसूरत देशभक्ति गीत के साथ।

दोस्तों, महेंद्र कपूर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म पूरब और पश्चिम में। और आइए अब थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं और अब आपको सुनवाते हैं शक्ति फिल्म का गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: और दोस्तों, अब आपको सुनवाते हैं एक खूबसूरत सा गीत। फिल्म का नाम है शोर इन द सिटी और आवाजें हैं श्रेया घोषाल और तोशी रैना की।

और दोस्तों आइए अब आपको सुनवाते हैं कुछ ना कहो फिल्म का गीत, जिसे गाया है उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अलीशा चिनॉय की आवाज में आइए अब आपको सुनवाते हैं मर्डर फिल्म का ये गीत।

दोस्तों 12:30 होने को है और आप इस समय रेनबो पर सुन रहे हैं प्रोग्राम जीरो आवर शो और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। तो कार्यक्रम का अगला गीत है बचना ए हसीनों फिल्म से, आवाजें के और शिल्पा राव की।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

गैंगस्टर गीत का फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाज़ थी जेम्स की। और अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसे गाया है सुनिधि चौहान ने, फिल्म का नाम है परिणीता।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

ये था एयरलिफ्ट का गीत जिसे गाया था तुलसी कुमार और अरिजीत सिंह ने। और दोस्तों जीरो आर शो में अब आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है दिल है तुम्हारा और आवाजें अलका याग्निक और कुमार सानू की।

एक बजे हैं, आइए सुनते हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा संकल्प है। राष्ट्रपति ने नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक समुदाय के समक्ष उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को एक प्रेरणादायक और प्रभावशाली संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला की प्राचीर से ध्वजा फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान को अपार समर्थन मिल रहा है। पूरे देश में तिरंगा रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की गई है। सेवा सुबह 4 बजे से शुरू होगी। यात्री जामा मस्जिद, लाल किला और डेलीगेट मेट्रो स्टेशन पर उतरकर लाल किले तक पहुंच सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सरकार ने टीवी चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटा दी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि यह फैसला केवल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना जारी होने के बाद लागू होगा। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए अत्याचारों और सीमा पार आतंकवाद के लिए कब्जे वाले क्षेत्र के उपयोग पर चिंता जताई और भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला टेस्ट मैच आज से खेला जाएगा।

0: की वाणी आकाशवाणी।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। श्रोताओं, 1:02 हुए हैं और अब वक्त है हमारे कार्यक्रम सुहानी रात का, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरती।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: शुद्ध आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम सुहानी रात। और देखिए स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त समय हुआ है 1:17:24। और इसी खामोश सी रात में हमारे एक श्रोता ने हमें प्यारा सा संदेश भेजा है और उन्होंने फरमाइश की है फिल्म पत्थर के फूल से, और ये खूबसूरत गीत उन्होंने फरमाइश की है। तो लीजिए, आपकी फरमाइश हम तक पहुंची है और अब ये गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुनिए पत्थर के फूल से ये खूबसूरत सा नगमा।

तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत। तो देखिए, अब एक और फरमाइश जो है हम तक पहुंची है, ये फरमाइश हमें भेजी है जयंत, जो कि पटना से हमें मैसेज कर रहे हैं और ये सुनना चाहते हैं फिर तेरी कहानी याद आई फिल्म से गीत। तो आइए, इन्हीं की पसंद पर हम सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

तो दोस्तों देखिए, मैसेज का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और देखिए, इस वक्त भी भाई हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तो देखिए, अगला जो मैसेज ये हमें भेजा है, ये मोहम्मद शहनवाज़ जी हमें मैसेज कर रहे हैं न्यू दिल्ली से। इनके साथ साथ हमें फरमाइश कर रहे हैं तईम अभी और नैश भाई, और ये सुनना चाहते हैं फिल्म हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम से गीत। तो आइए आप ही की पसंद पर सुनवाते हैं आपको ये खूबसूरत सा गीत।

तो दोस्तों इस वक्त एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं और ये फरमाइश की है रिंकू जी ने, जो कि बुलंदशहर से हमें मैसेज कर रहे हैं और इन्होंने भी एक गीत सुनना चाहा है। तो चलिए अब आप ही की पसंद में हम अगला गीत अपने श्रोताओं को सुनाते हैं। तो ये गीत जो है आपके साथ जो सुनने वाले तमाम श्रोता हैं उनको भी ज़रूर पसंद आएगा।

एक और मैसेज जो है हम तक पहुंचा है, ये हर्षदा जी है जो कि जर्मनी से हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो चलिए आप ही की फरमाइश पर अगला गीत आपको सुनवाते हैं उदित नारायण की आवाज़ में।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: यह आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है, आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा संकल्प है। राष्ट्रपति ने नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई, संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक समुदाय के समक्ष उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को एक प्रेरणादायक और प्रभावशाली संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला की प्राचीर से ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान को अपार समर्थन मिल रहा है। पूरे देश में तिरंगा रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की गई है। सेवा सुबह 4 बजे से शुरू होगी। यात्री जामा मस्जिद, लाल किला और

दिल्ली गेट, मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किले तक पहुंच सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए लोइटर म्यूनिशन प्रणाली खरीदने के लिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और निबे प्राइवेट लिमिटेड के साथ 1,500 करोड़ रुपये से अधिक के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नई दिल्ली में कौशल विकास पर भारत जापान हितधारक परामर्श का आयोजन किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए अत्याचारों और सीमा पर आतंकवाद के लिए कब्जे वाले क्षेत्र के उपयोग पर चिंता जताई। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए 20 मेट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला टेस्ट मैच आज से खेला जाएगा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: 2:03 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम भुलाए ना बने। इसमें आप सुनेंगे नॉन स्टॉप म्यूजिक और प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
1: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।

0: Amore mio, dove sei tu? Hey, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

बागों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

श्वेता, स्टूडियो की घड़ी में 3:10 हुए हैं और अब वक्त है मुख्य समाचार का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना हमारा संकल्प है। राष्ट्रपति ने नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक समुदाय के समक्ष उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को एक प्रेरणादायक और प्रभावशाली संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला की प्राचीर से ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान को अपार समर्थन मिल रहा है। पूरे देश में तिरंगा रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की। सुबह 4 बजे से ये सेवा शुरू होगी और राज्यमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर पर उनकी टिप्पणी को लेकर शुरू की गई आपराधिक मानहानि की कार्रवाई रद्द की। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। क्षेत्र में जारी अशांति के दौरान

पाकिस्तानी सेना ने 100 से अधिक प्रदर्शनकारियों की हत्या कर दी है। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद पुनः निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, विदर्भ, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। भारत और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला टेस्ट मैच आज से खेला जाएगा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल, ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। और दोस्तों, अब वक्त है कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज का, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरती।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दीवानी सी एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।
5: Hey, hey.

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। आइए अब सुनते हैं समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना हमारा संकल्प है। राष्ट्रपति ने नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक समुदाय के समक्ष उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को एक प्रेरणादायक और प्रभावशाली संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला की प्राचीर से ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान को अपार समर्थन मिल रहा है। पूरे देश में तिरंगा रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली में विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा, आज सेवा सुबह 4 बजे से शुरू हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। क्षेत्र में जारी अशांति के दौरान पाकिस्तानी सेना ने 100 से अधिक प्रदर्शनकारियों की हत्या की। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद पुनः निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, विदर्भ, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला टेस्ट मैच आज से खेला जाएगा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेडियो चैनल है और दोस्तों अब वक्त है हमारे कार्यक्रम सारेगामा का, और इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरती।

0: जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
6: ठीक है,
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
4: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
4: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
4: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: कोयल सी तेरी बोली, कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु,
1: आए हाय,
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों

0: तक खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
0: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे FM रेनबो पर

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

तभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम सारेगामा। अब प्रस्तुत है समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला की प्राचीर से ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा संकल्प है। राष्ट्रपति ने देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को एक प्रेरणादायक और प्रभावशाली संदेश दिया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान को अपार समर्थन मिल रहा है। पूरे देश में तिरंगा रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली में विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा, आज सेवा सुबह 4 बजे से शुरू हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों को आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। क्षेत्र में जारी अशांति के दौरान पाकिस्तानी सेना ने 100 से अधिक प्रदर्शनकारियों की हत्या की। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्य में सहयोग के लिए 20 मेट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, विदर्भ, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला टेस्ट मैच आज से गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, वक्त है भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना का।

0: खाता कॉल जरूरी ना हो।
1: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
2: ठीक है,
1: आपको बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। कैसे डिपॉजिट करेंगे? डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
3: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
3: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
3: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
3: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
3: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।